प्रस्त चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बिमल मुखर्जी का सितार वादन, आपने प्रस्तुत किया है राग भटियार।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसमें श्री विमल मुखर्जी का सितार पर बजाया राग भटियार आपने सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की

लता मंगेशकर में, लता मंगेशकर के स्वर में ये पहली प्रस्तुति वंदना कार्यक्रम भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आपने सुनी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं श्रोताओं, ईश्वर भाव का भूखा है। ईश्वर की वंदना, ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें सांसारिक और भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जब हम ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, जब मन निर्मल होता है, जब मन ईश्वर से जुड़ पाता है, तो किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। बस सच्चे मन से जब हम उस शक्ति से, उस चिरंतन सत्य से जुड़ पाते हैं, तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता ही है। अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं, वाणी जयराम।

प्रातःकाल की बेला और ऐसे सुमधुर संगीत और भजन भक्ति गीत जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पर, और इस बेला में इस सुहावनी हवाओं के बीच, इस चारों ओर शांत वातावरण के बीच प्रकृति का एक संगीत और ईश्वर की आराधना, मन निर्मल रखें, ईश्वर के उस स्वरूप का ध्यान करते रहें जो आपके मन के बिल्कुल पास है। वो ईश्वर का स्वरूप जिसे हम ईष्ट देव कहते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं और हमें लगता है कि किसी एक ऐसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता है, उस समय जिस भी ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हो मन के भीतर से, वही है हमारा ईष्ट।

बिल्कुल सही बात है। जब हम ईश्वर को सौंप कर कोई भी कार्य करते हैं और हम उस डर से निकल जाते हैं कि ये काम सफल होगा या नहीं, तो निश्चित तौर पर हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा हमें मिलती है और हमारा वो काम, हमारा वो अभियान सफल जरूर होता है, अवश्य होता है, जब ईश्वर की कृपा होती है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल पर। अगली प्रस्तुति

सुपर प्रस्तुति के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 6:40 हुए हैं। ये समय है चिंतन कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों पर आधारित ये चिंतन।

यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास स्कूल के छात्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बालपन से ही बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। उनकी कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा, अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर, धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना, यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है, वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की

बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधा कृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक की बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधा कृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

चिंतन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से प्रेरित ये प्रसंग। और इस प्रसंग में कितना सुंदर वर्णन था किस प्रकार से हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने आसपास के समाज में जिन्हें भी किसी की आवश्यकता है, अगर हम कुछ थोड़ा सा भी योगदान कर पाएं तो निश्चित तौर पर समाज के हर व्यक्ति को ये आभास होगा, ये एहसास होगा कि उसके आसपास एक जीवंत समाज है जिस समाज का वो हिस्सा है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। 6:45 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कांड का संगीतमय पाठ। आज इसमें हम बाल कांड का भाग 114 सुनेंगे।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिचन गीत।

0: अभी आप श्री रामचरित मानस कांड का पाठ सुन रहे थे। अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वीयां ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगत चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरं एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभय देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनं नगरे भारत

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ज्योति जगवन।
1: भूषण त्रिपाठी और साथियों के साथ, साथियों जो तबले पर संगति कर रहे हैं और साथ ही सितार हारमोनियम पर, आप सभी के साथ आइए सुनते हैं अगली प्रस्तुति। ये रचना भी भक्त कवि तुलसीदास की है।

कबीरदास की इस रचना के साथ ही संगीति का कार्यक्रम अब संपन्न हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भूषण त्रिपाठी के गाए भजन। आपके साथ तबले पर ऋतु मिश्रा थी और सितार पर रईस अहमद, हारमोनियम पर संगति कर रहे थे दामोदर लाल घोष। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं और इस समय आप सुनते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी सुनने वाले, सभी श्रोताओं का, सभी प्रिय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, एक प्रश्न मेरे मन में आया कि गुड से तात्पर्य हम क्या समझते हैं? अच्छा, अच्छा वही जो सिर्फ दिखता है, या अच्छा वो जो हम अनुभव कर पाते हैं, जो हम महसूस कर पाते हैं, जिसका हमें एहसास होता है। कई बार हमने ये अनुभव किया होगा, आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी खुशियां हमारे सामने हो या बहुत बड़ा अचीवमेंट हो हमारे सामने, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है, या बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे सामने हो लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है। तो मन को जब खुशी मिले तब वो अच्छा है। और मन को खुश करने के लिए पूरे जो हमारे आसपास की सुख सुविधाएं, हमारे आसपास का जो ऐशो आराम है, उसका होना बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है कि हम अपने मन को समझा लें कि हमने जो हासिल किया, हमने जो पाया, या हम जो पा रहे हैं, हम जिसकी पात्रता रखते हैं, वो हमें मिल रहा है तो भी, नहीं मिल रहा है तो भी, हम प्रयास उसी में खुश रहने का करें। हाँ, आगे और पाने, आगे अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमारा जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसमें कोई कमी न रहे, उसमें एक एक कह सकते हैं कि समर्पण हो, उसमें एक हमारी जो लगन है वो निरंतर हो, लेकिन कह सकते हैं कि अतृप्ति न हो, तो आनंद उसी में है। और यही है गुड मॉर्निंग या गुड जीवन के किसी भी दिन के किसी भी हिस्से के गुड होने का मेरी नजर में मोल। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। ये भी एक संदेश देता हुआ गीत है जिसे हमने लिया है फिल्म बंटी और बबली से। बहुत ही प्यारा सा गीत है श्रोताओं, और इस गीत के माध्यम से ये जो संदेश है ये भी सुनिए। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और निहिरा जोशी के स्वर में ये गीत है। धड़क धड़क बोल गुलजार के शब्द, शंकर एहसान और लॉय का संगीत। आइए सुनते हैं।

एक ट्रेन के बहाने एक संदेश जो इस गीत के रचनाकार ने देने का प्रयास किया और कुछ संदेश देने का प्रयास मैंने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले किया। और गीतों भरी गुड मॉर्निंग का जो अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे लिया है हमने, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है वो और गुरु फिल्म से लिया है, बहुत ही प्यारा नगमा है, आइए सुनते हैं। और इस समय जब कहीं पर बादल बरस रहे हैं और कहीं पर बादलों की ओर प्रकृति, पशु पक्षी और इंसान हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, और कहीं पर पिपासा जो धरती है उसकी बुझी है, कहीं पर अभी बाकी है। तो क्या कहता है ये गीत, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार के स्वर में ये गीत आप सुन रहे हैं और इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत तैयार किया एआर रहमान ने। गुड मॉर्निंग जो गीतों भरी हो रही है, इसमें मैं कहूंगा ये संगीतों भरी गुड मॉर्निंग भी है, क्योंकि बेहद खूबसूरत संगीतों से सजे ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये गीतों के साथ साथ संगीतों भरी गुड मॉर्निंग, तो ये गीत आपको ले गया ना प्रकृति के करीब। प्रकृति इस समय जिस स्वरूप में है, बादल और बरसात, वो ठंडी हवाएं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जो इस मौसम से ठीक पहले प्रकृति का संगीत हमें कोयल सुनाती है, वो भी हमें करीब ले जाता है प्रकृति के। तो कार्यक्रम में अगला गाना एक और खूबसूरत संगीत और गीतों से सजा हुआ गीत के बोल, समीर के नदीम श्रवण का संगीत, कुमार सानू की आवाज, साजन फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं।

साजन फिल्म जिसमें सलमान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित अभिनीत फिल्म में खूबसूरत नगमे और खूबसूरत संगीत ने सबको सबके बीच जगह बनाई थी और उसकी पॉपुलैरिटी आज भी कायम है। गीतों भरी गुड मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं अब प्रेम की। और दोस्तों, जीवन में हम जितने भावों के साथ गुजरते हैं उनमें प्रेम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र भाव है। प्रेम किसी व्यक्ति और किसी काम से हो सकता है। किसी को देश से प्रेम है, किसी को समाज से प्रेम है, किसी को ईश्वर से प्रेम है। तो ये जो प्रेम है, हमारी जो कह सकते हैं इंद्रियां हैं, हमारी जो शक्ति है मन की, हमारे जो मनोभाव हैं उनको अपने चरम पर पहुंचाती है। और हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक अलग ही शक्ति, अलग ही जुनून देती है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा ताल फिल्म से और बहुत ही प्यारा गीत है। आइए सुनते हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे किन कलाकारों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे हैं।

ताल फिल्म का ये गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और एआर रहमान ने संगीत तैयार किया था। इसमें आवाज हैं कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह, अनुराधा श्रीराम, सुजाता मोहन, सोनू निगम और एआर रहमान की है।

और दोस्तों, इश्क प्रेम ये भाव, ये जो मन के भाव है, मन का अनुराग है, ये होना जरूरी है किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, जो जीवन के उद्देश्यों को और अर्थपूर्ण बना देता है। कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग में अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म पापा कहते हैं से। 1996 में आई थी ये फिल्म, जावेद अख्तर ने इसके लिए ये गीत लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है, और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण ने।

0: श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है।

0: पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड एक एक गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है।

0: दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defense, tourism, sports, disaster management, and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi's 3-country visit delivered significant outcomes, advancing cooperation across several sectors, including trade, technology, security, education, innovation, and people-to-people exchange.

0: built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत करने के बाद तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनद और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे की एक नुमाया तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दोतरफा तिजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वजीर आजम मोदी की कयादत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम लक्सन की बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के वजीर आजम के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
3: ये मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
2: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे से तिजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तालीम, इख्तरा और अवामी रवाबित समेत मुतादिद शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुन ने फू क्वा जजीरे के करीब पेश आने वाले उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसिल खाने की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तायुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद, जिनमें अमले के 4 अरकान भी शामिल थे, को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रत्नगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुक्काम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहल खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट अमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा के शाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाह पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखल अंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाह पासदारा ने इनकलाब की जानिब से एक इंतबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने आबनाए हुरमुज से जहाजों के गुजरने के लिए 2 अलहदा रास्ते तजवीज किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा एक मुल्क एक इंतखाब बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की 2 रोजा मुशावरत गोवा में इंतखाबी इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: آئین کے 129 ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قانون ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز پر گوا میں دو روزہ مشاورت مکمل کی. پہلے دن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، معروف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں، آئینی ماہرین، ریاستی چناؤ کمیشن اور گوا یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی. دوسرے دن یعنی کل کمیٹی نے گوا قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، اپوزیشن کے لیڈر

0: 5-6, 7-6, 3 से शिकस्त देकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। और ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे न्यूजीलैंड से मुतालिक खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड के दरमियान दफा तजारत टेक्नोलॉजी समेत 18 अहम माहदे तजारत को 38,000 करोड़ रूपए से जायद तक पहुँचाने का हदफ।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पाजारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। 810 किलोहर्ट्ज DRM पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। साथ ही आप हमसे जुड़े हुए हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है AIR लाइव न्यूज 24x7। और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 8:45 बजने को हैं, बज चुके हैं कह सकते हैं, 8:45 और 30 सेकंड हुए हैं और ये समय है हमारे कार्यक्रम साहित्यिकी का। आज के इस कार्यक्रम में हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, ये परिचर्चा है। और इस परिचर्चा में प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूर्ण चंद्र टंडन, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, डॉक्टर चंदन कुमार वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक, और श्री अशोक कुमार गुप्ता आप प्रकाशक और समाज सेवी हैं। डॉक्टर पल्लव जो कि युवा साहित्यकार हैं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम में साहित्यिक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। श्रीमती सुमन इस पर बात करेंगी, श्रीमती सुमन महलावत जो कि युवा पत्रकार हैं।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, आज जब हम और आप इस वक्त एक दूसरे से जुड़े हैं तो माध्यम चाहे जो भी हो, रेडियो की तरंगे हो या इंटरनेट का कोई डिजिटल कोना, हम सब एक बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां सुबह की शुरुआत किसी के चेहरे को देखकर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक करके होती है। कभी ठहर कर सोचिएगा कि यह जो इंटरनेट का संसार है, जिसे हम अदृश्य जाल या अंतरजाल कहते हैं, यह किसी हवाओं की बस्ती से कम नहीं है। इन्हीं सबको समेटे लीजिए सुनिए परिचर्चा हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर परिचर्चा। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पूरन चंद टंडन, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर चंदन कुमार, प्रकाशक और समाजसेवी श्री अशोक गुप्ता, साहित्यकार और प्राध्यापक डॉक्टर पल्लव। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर पल्लव।
3: श्रोताओं, ये बात अक्सर सुनी जाती है, लोग कहते हैं कि जब से इंटरनेट आया है तब से किताबों को पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है। लेकिन थोड़ी सी पुरानी बात मैं आपके सामने रखूं, हम सब लोगों ने स्कूली शिक्षा के दौरान हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध पढ़ा है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। उस निबंध में भीष्म पितामह के बारे में बताते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि भीष्म पितामह हर बात का उदाहरण इतिहास से ढूंढ कर लाते थे। तो ये जो परिघटना है इंटरनेट के आगमन की, और इंटरनेट के आगमन की वजह से पुस्तकों के संकट में होने की बात, ये नई नहीं है। आज के करीब 30-35 साल पहले जब हमारे देश में टेलीविजन आया था, लोग दूरदर्शन पर तरह तरह के सीरियल देखते थे, पसंद करते थे, तब भी ये चिंता बड़ी की जाती थी कि अब जब टीवी आ गया है तो किताबों का भविष्य संकट में है, अब कौन पढ़ेगा। लेकिन हमने पिछले 30-40 सालों में देखा कि टीवी के रहने के बावजूद पुस्तकों को पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हुई, पुस्तकों को पढ़ने वाले बल्कि बढ़ते गए। हमारे देश में खासतौर पर टीवी के आने के बाद ही साक्षरता का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद लोगों की पढ़ने पढ़ाने में रुचियां और बढ़ती गई। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो इस विषय पर और हमें बताएंगे, अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर टंडन साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपने अनुभव

0: के साथ हमें कुछ बताएं कि क्या सचमुच इंटरनेट के आगमन से और इंटरनेट के हमारे जीवन में व्याप्त हो जाने के बाद किताबों का अब वैसा स्थान नहीं बचा है जैसा कि किताबों का स्थान हम सबके जीवन में होना चाहिए।
1: धन्यवाद। मुझे पल्लव जी ऐसा लगता है कि विगत 50 वर्षों का अनुभव जो मुझे बताता है
0: जी
1: कि पुस्तकों के प्रति जो रुझान था
0: जी,
1: और पुस्तकों से मेरा अभिप्राय पाठ्य पुस्तक से नहीं है।
0: जी जी जी,
1: जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो तो एक बाध्यता होती है कि आपको पढ़नी है, हालांकि पाठ्य पुस्तक खरीदने के प्रति और पढ़ने के प्रति भी रुझान मुझे कम लगता है।
0: जी जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: अब विद्यार्थी कक्षा में मोबाइल लेकर टेक्स्ट लेकर बैठता है
0: जी,
1: और घर में कोश का ना होना, घर में फिक्शन का कथात्मक साहित्य का ना होना
0: जी,
1: कविताओं के प्रति रुचि और रुझान का कम होना, ये एक चिंता का विषय तो है। उसका कारण है क्योंकि युवा वर्ग ने ये मान लिया है
0: जी
1: कि रोजगार महत्वपूर्ण है, और जो रोजगार उन्मुख जितने भी आयाम और पक्ष हैं हमें उस पर ज्यादा बल देना चाहिए। तो जो नैतिक शिक्षा है, जो जीवन मूल्य है, इनकी तरफ जो रुझान हुआ करता था वो रुझान तुलना में कम हुआ है और लगातार कम हो रहा है
0: जी।
1: इसका एक प्रमाण मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से जुड़ा रहा हूँ, लाइब्रेरी की कमिटीज में रहा हूँ, मैंने देखा कि पठनीयता किताबों की
0: जी,
1: उसका प्रतिशत लगातार गिर रहा है। ये ठीक है कि किताबें छप रही हैं, पुस्तक मेले लग रहे हैं, लेकिन एक पुस्तक मेले में एक चर्चा परिचर्चा के दौरान एक प्रकाशक महोदय ने कहा कि ये मैं नहीं मानता कि किताब बिकती नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना यह है कि किताब बिकती नहीं है, किताब बेची जाती है
0: जी।
1: तो इन दोनों में अंतर है।
0: ठीक बात है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडेबिलिटी या पठनीयता है या नहीं है
0: जी,
1: लेकिन पुस्तक को लाइब्रेरीज में या बल्क परचेज में उसको कैसे उपस्थित कराना है, ये एक अलग तरीका है
0: जी जी जी।
1: लेकिन वास्तविक चिंता ये है कि घरों में पुस्तकों की अलमीरा हुआ करती थी, शेल्फ हुआ करती थी, वो गायब हो गई है। डीवीडी आ गई है, सीडी आ गई है, पेन ड्राइव आ गए हैं, और अद्यतन अधुनातन उपकरण भी आ गए हैं। तो उससे किताब की जो भीनी गंध हुआ करती थी वो तो जीवन से विलुप्त होती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि किताब में सुदीर्घ जीवन अनुभव होते हैं। एक व्यक्ति अगर कोई ठीक सारगर्भित उपयोगी पुस्तक तैयार करता है तो उसके भी 15-20 साल का जीवन अनुभव उस किताब में समाहित होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि हर अनुशासन की दृष्टि से किताब को संजोकर रखना, किताब को एक मित्र की तरह अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना, ये अत्यंत आवश्यक है, और नई पीढ़ी के बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी माता पिता की और शिक्षकों की विशेष रूप से है कि किताब को अपनी दैनिकचर्या का हिस्सा वो लगातार बनाते रहें।
0: जी जी, धन्यवाद सर, आपने उपयोगी बातें बताई। अब मैं प्रोफेसर चंदन चौबे जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य हैं और जो युवा पीढ़ी के साथ लगातार सक्रिय रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि मैं जब जाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में तो पांव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ अभी जैसा कि आदरणीय टंडन साहब ने बताया कि भले ही किताबों की संख्या, प्रकाशनों की संख्या, पुस्तकों की संख्या बढ़ती गई हो, लेकिन सचमुच उनको पढ़ने वाले और उनको आत्मसात करने वाली पीढ़ी या ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है। तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, आपके अनुभव जानना चाहूंगा।
2: पल्लव जी धन्यवाद। हवाओं की बस्ती और भरोसे के लोग
0: जी,
2: ये पुस्तकों की दुनिया पर चर्चा हो रही है, पुस्तकों का विश्व कैसा हो, और आपने बड़ा ही दिगर सा प्रश्न उठाया कि लिखित शब्दों की दुनिया में तकनीकी और शब्द के संबंध कैसे हो
0: जी।
2: यह शिकायत कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं, और यह यथार्थ कि पढ़ने के स्थानों पर भीड़ लगी हुई है। अब इन दोनों के बीच का संबंध क्या है और इन संबंधों को हम कैसे परखें, इसका एक उदाहरण मैं देता हुआ चलूंगा
0: जी।
2: विश्व के तकनीकी संपन्न समाजों में लिखित शब्दों की दुनिया क्या है? जिन समाजों को हम तकनीकी रूप से संपन्न और तकनीकी रूप से समृद्ध मानते हैं, जहाँ की जनसंख्या हमसे कम है
0: जी,
2: क्या उन समाजों में पुस्तकों की दुनिया खत्म हो गई क्या?
0: हाँ।
2: एक मेरे लिए प्रश्न, मेरे लिए भी एक जिज्ञासा का विषय है कि हिंदी का लेखक और हिंदी का प्रकाशक, अक्सर लेखकों की शिकायत को हम लोग ये मान लेते हैं कि शायद उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती होंगी
0: जी।
2: हिंदी का एक बहुत बड़ा समाज है, और चूंकि हम लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं और विश्वविद्यालय के तंत्र से जुड़े हुए हैं, आप भरोसा रखिए विश्वविद्यालय और समाज में हिंदी पढ़ने वाले और हिंदी के साथ अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने वाली एक बड़ी युवा पीढ़ी।
0: जी जी जी।
2: और उस पीढ़ी ने पुस्तकों के साथ एक संवाद विकसित किया है। तो पढ़ने लिखने की दुनिया की सकारात्मकता बनी हुई है, हमारी कुछ शिकायतें भी बनी हुई हैं।
0: जी।
2: और उन शिकायतों के साथ एक कुछ जंपनी जिज्ञासाएं भी हैं कि शब्दों की अमरता कैसे सुनिश्चित हो।
0: जी।
2: और शब्दों के मानकीकरण का आधार क्या हो। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, लिखित शब्द।
0: जी।
2: अगर शब्दों की सातत्यता और शब्दों की अमरता को सुनिश्चित करना है और दूसरा उनके एक मानकीकृत रूप को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करना है, तो उसके पुस्तकीय रूप के अलावा कोई रास्ता अपने पास है नहीं।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
2: एक और बड़ी रोचक सी और थोड़ा सा मैं उसको हास्य के प्रसंग में कहना चाहूंगा, हम लोग अक्सर विश्वविद्यालयों में कहते हैं कि हिंदी का प्रकाशक धनी है और लेखक निर्धन है। पर एक चीज सोचिएगा कि हिंदी का कोई प्रकाशक कभी घाटे में है क्या?
0: जी।
2: और मैं किसी पुस्तक की गुणवत्ता पर बिना टिप्पणी किए हुए एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि हिंदी की उन पुस्तकों की गुणवत्ता जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध है उनकी भी 200 प्रतियां बिक जाती हैं।
0: जी जी जी जी।
2: आखिर कोई ना कोई पाठक वर्ग तो है ही ना। एक बड़ा हिंदी समुदाय और साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाला एक बड़ा समुदाय उपलब्ध है शोध और मानकीकरण, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो और समाज विज्ञान के संस्थान हो, इनमें पुस्तकीय ज्ञान के बिना और ज्ञान के पुस्तकीय रूप के बिना शोध संभव नहीं है।
0: बिल्कुल ठीक बात है।
2: इसलिए यह जो भरोसे का प्रश्न है
0: जी,
2: मेरे लिए हवाओं की बस्ती में कम है, लिखित शब्दों की दुनिया में ज्यादा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा चौबे साहब। मैं अशोक जी के पास जाऊंगा जो कि पुस्तकों के प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है कि अब लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अभी हमारे सामने दो विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसा नहीं है, लोग पढ़ते हैं, नई पीढ़ी भी पढ़ने में रुचि ले रही है। तो आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर केवल आपके अनुभवों की शक्ल में मैं जानना चाहूंगा, इस पूरे प्रसंग को आप किस तरह देखते हैं?
3: देखिए, जहां तक सवाल है पुस्तकों का इंटरनेट के आने के साथ क्या प्रभाव पड़ा।
0: जी,
3: पुस्तकें कल भी बिकती थी, आज भी बिकती हैं, आगे भी बिकती रहेंगी, क्योंकि पुस्तकें हमारा भविष्य है। हम रहे ना रहे पुस्तकें रहेंगी। आज हम किसी से चर्चा कर लेते हैं लेकिन हमारे जाने के बाद पुस्तकें ही बोलेंगी। आज भी मुंशी प्रेमचंद जी को और जो प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं उनको आज भी पढ़ा जाता है।
0: जी जी।
3: तो इंटरनेट के आने से कुछ सुविधाएं जरूर बढ़ी होंगी लेकिन पाठक खत्म नहीं हुआ, ना कभी खत्म होगा।
0: बढ़िया।
3: क्योंकि जो रिसर्च है वो सब पुस्तकों के बेस पे है। दूसरी चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम जब पुस्तक को पढ़ते हैं, जैसे कि पहले के लोग कहते थे और हमने भी देखा है इस चीज को, बाहर बारिश की बूंदे होती है तो एक भीनी भीनी खुशबू आती है।
0: जी।
3: इसी तरीके से कागज की भी खुशबू होती है जो कि हमारे को प्रभावित करती है। हम किताब कहती है मुझे पढ़, और जब हम पुस्तक को पढ़ने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक रीड में ही पुस्तक को खत्म कर देते हैं। पुस्तकों का भविष्य तो उज्जवल है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस चीज में हमने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं, देखा भी है, बुक फेयर्स में भी गए हैं, पाठकों से भी मिलते हैं और खुद काउंटर पे खड़े होकर भी देखते हैं पाठक की रुचि क्या है, और जो पाठक की रुचि है उस रुचि के मुताबिक अगर हम प्रकाशित करते हैं पुस्तकों को, वो पुस्तकें चलती है, बिकती है। जहां तक सवाल रहा सरकारी संस्थानों का, सरकारी संस्थानों की किताबें इसलिए ज्यादा बिकती है क्योंकि उनके पास साधन ज्यादा है। एनबीटी 26 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करता है, साहित्य अकेडमी भी 26 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है कि उनके पास संसाधन है, उनके पास एरिया बहुत बड़ा है। एक चीज और भी उदाहरण दूंगा कि हमने कुछ किताबें ऐसी छापी जो कि लाइन लग के बिकी और वो आज भी अच्छी सेलिंग पे है। बड़े संगीतकारों की किताबें हैं, आनंद बख्शी जी की किताबें हमारे यहाँ से आई हैं, वो बहुत संख्या में आज भी बिकती हैं। पाठक खत्म ना तो हुए ना हो सकते।
0: ठीक कहा आपने गुप्ता साहब कि पाठक कभी खत्म नहीं होंगे। ये जरूर हो सकता है कि माध्यम कुछ बदल जाए, और इस माध्यम बदलने की बात पर ही मैं दोबारा से अभी टंडन साहब के पास जाऊंगा। टंडन साहब, मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है इस सारी बातचीत को सुनने के साथ ही, और वो सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो साहित्य हमारे सामने आ रहा है, ऐसी आप अनेक इंटरनेट की पत्रिकाएं देखते हैं जिन पर कविताएं, कहानियां, आलोचना, साक्षात्कार, तमाम विधाओं में सामग्री आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा ने हिंदी समय नाम की एक वेबसाइट बनाई है जिस पर हिंदी साहित्य का बहुत सारा अच्छा साहित्य, बहुत सारी अच्छी सामग्री वहां हम निःशुल्क देख पढ़ सकते हैं। इसी तरह से भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग है उन्होंने एक तरीके से पूरा आर्काइव बना दिया है, जिसमें आजकल जो साहित्य की पत्रिका है उसके पिछले 40-50 साल के तमाम अंक आप उनकी वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल तो ये आता है कि इंटरनेट के आने से एक तरफ तो ये संकट हमको कभी कभी दिखाई देता है कि पाठक कम हो जाएंगे, अब

0: इंटरनेट पर चूंकि मनोरंजन सहज ढंग से मिल जाता है तो उसको युवा पीढ़ी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि पहले ये कहां संभव था कि अगर मुझे आजकल का 1988 का या 1975 का कोई अंक देखना है तो मैं अपने घर बैठे एक सेकंड में इंटरनेट की मदद से देख लेता हूँ। इसी तरीके से जो भारत सरकार का आर्काइव है इंटरनेट पर, उसमें आप तमाम पुरानी किताबें पीडीएफ फॉर्म में वहां उपलब्ध है, उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे एक सवाल है और एक जिज्ञासा है। सवाल तो यह है कि ये जो माध्यम बदल गए हैं, इन बदले हुए माध्यम को भी हम किताब का ही एक दूसरा रूप मानने में हमें क्या कोई झिझक होनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए आप नई पीढ़ी के लिए क्या सलाह देंगे, आप नई पीढ़ी को पुस्तकों तक जाने के लिए क्या मार्गदर्शन करेंगे?
1: अभी भी थोड़ी सी असहमति के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि लाइब्रेरीज में जो भीड़ दिख रही है
0: जी जी,
1: वो केवल उन्हीं बच्चों की, उन्हीं शोधार्थियों की भीड़ है जिनको अपना शोध प्रबंध लिखना है या जिनको अपनी परीक्षा देनी है, और जो टेक्सचुअल मटेरियल है या तो वो लेकर उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं और या अपना शोध प्रबंध लिखने के लिए जो अपेक्षित सामग्री है वो जुटा ली और उसके बाद वो प्रबंध लिख लिया। मूल बात यह है कि पाठ्य पुस्तकों या वो पुस्तकें जो जीवन की राह को प्रशस्त करती हैं
0: जी,
1: हम चाहते हैं अभिभावक के रूप में, शिक्षक के रूप में, कि भारतीय समाज को, युवा पीढ़ी को वो किताबें पढ़नी चाहिए
0: जी,
1: जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे समाज सुधारक थे, जो हमारे चिंतक विचारक थे, उनके प्रति जो अभिरुचि है पठनीयता की वो नहीं दिख रही
0: जी।
1: अब ये अलग बात है कि अगर आपको इंटरनेट पर जाकर किसी तथ्य की खोज करनी है, किसी सूचना की जानकारी अर्जित करनी है, तो आप गए और वहां से अर्जित कर ली। लेकिन वो जो गुप्ता जी कह रहे थे, किताबों की जो खुशबू है वो खुशबू तो जीवन से गायब हो गई। हम तकिए के पास किताब रख कर सोते थे कि भाई जब मन करेगा उठाएंगे और पढ़ लेंगे। हम अपनी एक घरेलू लाइब्रेरी थी, वहां से कोई किताब निकाल कर पढ़ने का मन करता था। पहले हम जो किताब पढ़ते थे या खरीदते थे वो 10 लोगों को बताते थे कि ये किताब नई आई है, ये पढ़िए, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या मुझसे ले जाओ आप पढ़ लो। ये भावना विलुप्त हो गई है। अब अद्यतन उपकरणों ने, स्वाभाविक है, ये भी आधुनिकीकरण का एक लक्षण है और आधुनिकीकरण की तरफ हम सबको बढ़ना ही चाहिए। हम एक आर्काइव की तरह किताबों को वर्चुअल बना रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो शोध आदि हो रही हैं वो ऑनलाइन फैक्ट्स को, तथ्यों को लेकर के किताबों में, शोध प्रबंधों में जो जा रहा है वो विश्वसनीय है कि नहीं, ये संकट है
0: जी।
1: क्योंकि बच्चे ऑनलाइन चीजों को ले लेकर कोट कर रहे हैं, तो जब तक पुस्तक देखी नहीं, मूल ग्रंथ देखा नहीं, संदर्भ ग्रंथ देखा नहीं, और आप सेकंड थर्ड सोर्स से, दूसरे तीसरे चौथे सोर्स से काम कर रहे हैं,
0: वो ठीक नहीं।
1: और जो ऑनलाइन डला हुआ है वो कितना प्रामाणिक है ये हमें भी नहीं पता।
0: ठीक बात है।
1: और हम केवल हिंदी की पुस्तकों की पठनीयता की बात नहीं कर रहे
0: जी,
1: जो विज्ञान का विद्यार्थी है वो विज्ञान की किताब नहीं पढ़ रहा, जो अंग्रेजी का विद्यार्थी है वो केवल उतना पढ़ रहा है जितना उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित है,
0: चल जाए।
1: उसको जो भविष्य के जो आजीविका साधन हैं उनकी चिंता ज्यादा है
0: जी।
1: उसको लगता है कि साहित्य पढ़ने से क्या होगा, उसको लगता है कि प्रेरक पुस्तक पढ़ने से क्या होगा। अभी तो मेरे सामने ये, तो मुझे लग रहा है हमें अपनी विद्यालयी और महाविद्यालयी या विश्वविद्यालयी शिक्षा में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो पुनर्जीवित हो। तो जब तक आपने प्रेमचंद की एक कहानी को समझना है तो उसकी 10 कहानियां तो पढ़नी पड़ेंगी ना
0: जी,
1: तब
0: जी।
1: तो प्रेमचंद समझ में आएगा ना। तो ये थोड़ा सा एक अंतराल मुझे लग रहा है समाज में खड़ा हुआ है और इसके लिए हम सबको कुछ प्रयत्न तो करने पड़ेंगे।
0: तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं चौबे साहब के पास जाऊंगा, पूरी बातचीत आप सुन ही रहे हैं जो अभी टंडन साहब ने अपने अनुभव बताए और कुछ जिसको कहना चाहिए कि अप्रिय सत्य का उद्घाटन भी किया, लेकिन इस स्थिति को बेहतर बनाने में, पुस्तकों को जीवन में फिर से लौटाने में, और ये कहना चाहिए मुझे कि इंटरनेट के बावजूद पुस्तकों की जीवन में विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हम सब लोग जो कि शिक्षक हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, या तमाम जो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि समाज के प्रति, देश के प्रति एक थोड़ी सी अपने दायित्व की भावना को महसूस करते हैं, वो इस स्थिति को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा।
2: पल्लव जी, सबसे पहले तो बहुत विनम्रता पूर्वक मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा
0: जी,
2: कभी भी पूरा समाज नहीं पढ़ता है।
0: ठीक बात है।
2: अगर आप उसको एक खास शब्दावली में कहें तो एक खास किस्म की एक अभिजात्य कला है
0: पढ़ना। हाँ, हाँ, हाँ, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते सब लोग।
2: तो किसी समाज के पूरे वर्ग से अपेक्षा करना कि सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग पुस्तकों के दुनिया में होंगे, ऐसा कुछ ज्यादा आशावादी हो जाना है
0: जी। जी,
2: तकनीकी को लेकर एक अविश्वास का भाव समाजों में रहता है। और स्थिर समाजों में ज्यादा रहता है
0: जी।
2: आपको ध्यान होगा हम सभी 90 के दशक का वो दिन याद करें जब कंप्यूटरीकरण हो रहा था भारतीय कार्यालयों का, तो कितना है तौबा मचा।
0: जी जी जी।
2: उसी ढंग से जब इंडोनेशिया में टीवी आया तो उसे शैतान की आवाज कहा गया।
0: हाँ, हमारे यहाँ बुद्धू बक्सा कहा गया जी।
2: पर तकनीकी के साथ इंटरनेट के साथ मैं पुस्तकों की दुनिया का एक सकारात्मक संबंध भी देखता हूँ
0: जी जी।
2: तकनीकी ने इंटरनेट ने ज्ञान की दुनिया को लोकतांत्रिक बनाया।
0: हाँ।
2: आज सूचना ज्ञान नहीं है
0: जी।
2: हम लोग जब विश्वविद्यालयों में पढ़ने आए उस समय हमारे आचार्य जी लोग सूचना देते थे और सूचना को ज्ञान बताते थे। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि आज विद्यार्थी के पास आचार्य से अधिक सूचना उपलब्ध है। समाज में हर व्यक्ति के पास सूचनाओं का जाल उपलब्ध है। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान व्याख्या है और पुस्तकें व्याख्या का एक मानक माध्यम है
0: जी।
2: इंटरनेट उन पुस्तकों को लोकप्रिय बनाता है और पुस्तक उनकी एक व्याख्या उपलब्ध कराती है। एक और तथ्य मैं रखना चाहूंगा कि इंटरनेट की दुनिया ने रचनाकार को यानी पुस्तक के रचनाकार को अधिक बौद्धिक परिश्रम करने के लिए उत्साहित किया है।
0: ठीक बात है।
2: ऑथर की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई है। अब महानता की, महान पुस्तकों की और महान रचनाकारों की घोषणा मात्र से काम नहीं चलेगा
0: जी।
2: अब उसे इंटरनेट ने ऐसा उपलब्ध कर दिया है कि उन पुस्तकों को अपनी पठनीय महानता सिद्ध करनी हो। आसानी से ज्ञान जनता तक पहुंच रहा है। ज्ञान की उपलब्धता सुनिश्चित करके पुस्तक ने एक मानकीकरण का माध्यम तय किया है। एक और जो मैं अपने जीवन से एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर विद्यार्थी पुस्तकालय में जाता है
0: जी,
2: या समाज का कोई भी वर्ग पुस्तक मेले में जाता है
0: जी जी,
2: तो और कुछ नहीं तो वो 10 टाइटल से तो परिचित होता है।
0: ठीक बात है, ठीक बात है।
2: पुस्तकों की दुनिया से परिचय का उसका इश्क शुरू होने का एक शुरुआत।
0: हाँ, हाँ, एक, एक, एक प्रारंभ।
2: और मुझे लगता है कि इंटरनेट ने पुस्तकीय इश्क की एक दुनिया बनाई है और तकनीकी को पुस्तकीय इश्क के प्राथमिक चरण के रूप में देखा जाना चाहिए।
0: सुंदर बात कही।
2: धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर बात कही। आपकी बातों से असहमति का तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बातें कही और ये बात सही है कि इंटरनेट ने सुलभ तो किया है चीजों को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप ही की बात को दोहरा दूं कि अपरिचय समाप्त होगा तभी परिचय से ही तो प्रेम होगा। जब परिचय ही नहीं है तो प्रेम कहाँ से होगा। अब ये कि इंटरनेट की वजह से हमारे पास ये सुविधा तो हो गई है कि घर बैठे हम किताब भी मंगवा सकते हैं। इंटरनेट पर जो बहुत अच्छे मंच हैं उन मंचों के माध्यम से हम जान भी सकते हैं कि इन दिनों कहानी में, कविता में, उपन्यास में, नॉन फिक्शन में कौन सी अच्छी किताबें आई हैं। उनके बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो वो एक तरीका है जिससे मैं उन किताबों के बारे में, उन विधाओं के बारे में मैं जान सकता हूँ और जानकर मैं उन किताबों को अपने पास मंगवा लूं, सहेज लूं। और इंटरनेट तो ये सुविधा भी देता है कि मैं अगर किसी जो पुस्तकों का विक्रय करने वाली वेबसाइट्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर आप जाएं तो आप जैसे मान लीजिए कोई एक किताब नई आई है तो उसके प्रारंभ के 4-5 पृष्ठ वो वेबसाइट पर होते हैं तो मैं देखकर किस तरह का कंटेंट है, मेरे काम का है या नहीं है, मैं देखकर फिर मंगवाऊं। तो जो काम मुझे दुकान पर जाकर समय खराब करके पैसा खर्च करके करना होता था वो अब मैं घर बैठे मोबाइल पर कर सकता हूं। तो आप सही कहा आपने कि एक रास्ता तो बना है, तो इस रास्ते को और सुगम बनाएं, और बेहतर बनाएं, इस पर सरपट हम दौड़ें, हमारा समाज बेहतर बने, हमारा समाज जागरूक बने, शिक्षित बने और देश के प्रति हम और ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, कंसर्न फील करें, हम और ज्यादा अपना भाव व्यक्त करें। इसके लिए कुछ संक्षेप में गुप्ता जी आप कहना चाहे तो आपका स्वागत है।
3: लेकिन जब आदमी किताब पढ़ता है किसी भी वरिष्ठ नेता की या किसी की, तो उसकी बायोग्राफी पढ़ता है तो उसको पता लगता है कि ये सच है और आगे भी चलता रहेगा, इसके अंदर कोई दोहरा नहीं है। इंटरनेट का पाठक अगर है तो कोई एक वर्ग है, सारे नहीं है। मैं कहूंगा 40-60 तक के अभी भी लोग या 70 तक के अभी भी लोग किताब ही पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे नहीं जाते।
0: ठीक बात।
3: ना इंटरनेट पढ़ते तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक जिस तरीके से आजादी से लेकर अब तक जो भी उपलब्धियां हुई हैं वो चल रही हैं और चलती रहेंगी। सामाजिक बदलाव भी होगा और समाज के अंदर कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे।
0: ठीक बात है।
3: इंटरनेट शुरू हुआ था तो लोगों ने बड़ा हंगामा किया था, होगा। आज हम आईटी के अंदर वर्ल्ड में नंबर एक पे हैं, तो ये चीजें एकदम चलती रहेंगी। और मेरा एक अनुरोध और भी है कि हमें भी चाहिए कि अपने आसपास कोई भी जगह अगर खाली है तो वो कुछ किताबें,
0: ठीक बात है,
3: होनी चाहिए, बच्चे पढ़े उसको।
0: ठीक बात कही आपने गुप्ता साहब। तो मैं निष्कर्ष के रूप में जी जी जी
3: एक चीज और मैं कहना चाहूंगा
0: जी
3: कि अभी सरकार की एक योजना आई है जिसमें हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, हर गांव में

0: जितनी भी पंचायत है उसमें एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश का तो मुझे मालूम है, और सरकारी फंड से किताबें खरीदी जा रही हैं
1: जी,
0: और वो जो है उसके अंदर जो किताबें उपलब्ध होंगी, जब उपलब्ध होंगी तो पाठक भी होंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो वो सरकार की एक योजना है और योजना के लिए मैं सराहना करूंगा सरकार की, इस तरीके की योजनाएं और भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी हैं और अच्छी योजनाएं भी हैं। ये एक तरह से हमारी ही विफलता है कि हम उन योजनाओं के बारे में नहीं जानते या उनका लाभ जनता तक पहुंचाने में हम कई बार असफल हो जाते हैं, लेकिन जहां कहीं इस तरह की जानकारियां हैं उन जानकारियों को हमको अधिकाधिक पाठकों तक और उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो उन योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा सके। आज की इस परिचर्चा के अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं ये कह के बात खत्म करना चाहता हूं कि इंटरनेट के आगमन के बावजूद, इंटरनेट के जीवन में व्याप्त हो जाने के बावजूद, छपे हुए शब्द की प्रतिष्ठा, छपे हुए शब्द की महत्ता कभी कम नहीं होगी, छपे हुए शब्द की विश्वसनीयता हमेशा बनी रहेगी, और जो हमारे विशेषज्ञों ने अपने बहुत सारे उदाहरणों से, अपने बहुत सारे विवेचन के साथ हमको बताया कि पुस्तक अभी भी हमारे जीवन को प्रकाशित करने का सबसे सुंदर उपाय है। कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आसपास के युवा लोगों को, नए बच्चों को, विद्यार्थियों को इस बात के लिए उत्साहित करें कि वे केवल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई ना करें, बल्कि किताबों को जीवन को बेहतर बनाने वाले उपकरण के रूप में देखें, तो संभव है कि हम एक बहुत सुंदर समाज बना पाएं, ऐसा समाज बना पाएंगे जो कि सच्चे अर्थों में एक स्वस्थ और सफल समाज होगा। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए मैं फिर से प्रोफेसर पूरनचंद टंडन, प्रोफेसर चंदन चौबे जी और हमारे प्रकाशक अशोक गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार। नमस्कार।
3: हवाओं की बस्ती, भरोसे के लोग, अंतरजाल की दुनिया में किताबों की महत्ता पर अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. पूरनचंद टंडन, वरिष्ठ साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ. चंदन कुमार, प्रकाशक और समाजसेवी श्री अशोक गुप्ता और साहित्यकार और प्राध्यापक डॉ. पल्लव। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉ. पल्लव। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार श्रीमती सुमन महलावत।
4: राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा 5 जुलाई 2026 को मासिम काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं स्वस्ति मंत्रों के साथ हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले मुख्य अतिथि थी। गोष्ठी का संचालन मंजू साक्य ने किया। काव्य गोष्ठी में सर्वश्री पंडित नमन, संदीप सजर, शैल भदावरी, सावित्री मलिक, कल्पना शुक्ला, मनीषा सक्सेना, नेहा नमन, रोहित गुप्ता, रोशन रोशु, मनोज मिश्रा कप्तान, नितेश चहल सहित 50 कवियों की उपस्थिति रही। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में BAPS स्वामीनारायण शोध संस्थान द्वारा राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन केशव काव्य कलरव 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। शब्द सुमन बिखरे तो वातावरण साहित्य रस में डूब गया। कवि सम्मेलन में देश भर से रचनाकारों से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में मौलिक कविताएं, मुक्तक और गजलें आमंत्रित की गई थी। सम्मेलन का मुख्य विषय गुरु, भगवान, सांख्य विचार और अक्षय आनंद जैसे आध्यात्मिक विषयों पर आधारित थे। चयन समिति द्वारा देश भर से प्राप्त प्रतिष्ठियों में से सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को चुना गया और इन रचनाकारों को अक्षरधाम परिसर में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री अभिलाषा कुमारी, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र, श्री स्वामी विवेकानंद, सुभारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट शुभम सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कृत कवियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साहित्यिक संस्था काव्य कोना और डॉक्टर कुंवर बेचैन की 84वीं जयंती के अवसर पर 8 जुलाई को दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक कविराज कौशिक ने बताया कि श्री महंत नारायण गिरी महाराज की उपस्थिति में प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर की अध्यक्षता में हुए कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध शायर विजेंद्र सिंह प्रवाज, राजेश त्रिपाठी, कोमल रस्तोगी, कर्नल संजय चतुर्वेदी, प्रतीक सक्सेना, वीणा मित्तल, डॉक्टर तारा गुप्ता और डॉक्टर तुलिका सेठ का काव्य पाठ होगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन कोरोना काल में हो गया था, तभी से उनके परिजन और अन्य लोग उनकी याद में साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित मावलंकर सभागार इंस्टीट्यूशनल क्लब में आयोजित साझी सादत साझी विरासत कवि सम्मेलन एवं मुशायरा प्रेम भाईचारे मानवता और गंगा जमुनी तहजीब का एक यादगार उत्सव बन गया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों बुद्धिजीवियों जनप्रतिनिधियों और श्रोताओं ने यह संदेश दिया कि साहित्य सदैव समाज को जोड़ने

0: इन रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्वश्री संपत सरल, चरण सिंह बसर, कुंवर जावेद, अमीर इमाम, तबरेज हाशमी, हिमांशी बावरा, इब्राहिम जिशान, मनिका दुबे और अब्बास कमर ने अपने प्रभावशाली काव्य पाठ से कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित साहित्यकारों ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7 जुलाई का सुप्रसिद्ध कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी द्वारा रचित पुस्तक कवि के मन से पुस्तक पर फेसबुक पेज पर लाइव परिचर्चा की गई। संचालन डॉक्टर अल्पना सुहासिनी ने किया। इस अवसर पर कवि कथाकार सर्वश्री त्रिलोक कौशिक, कवित्री कथाकार ममता किरण, समीक्षक डॉक्टर तबस्सुम झा, कवि आनंद शर्मा और अग्रसर की संपादक इंदु मिश्र ने पुस्तक पर विस्तार से प्रकाश डाला। 8 जुलाई को हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा कमानी सभागार कोपरनिकस मार्ग नई दिल्ली में श्री अनिल गोयल के उपन्यास नया सवेरा पर आधारित आपातनामा का नाट्य मंचन किया गया। नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन श्री सुनील रावत का था। 10 जुलाई को डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नोएडा द्वारा उपेंद्र पांडे के संयोजन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जाने माने कवि दिनेश रघुवंशी, अनिल अग्रवंशी और खुशबू शर्मा ने अपनी प्रेरणादायी रचनाओं से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रही थी। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार श्रीमती सुमन महलावत। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले सप्ताह हमारे अतिथि कार्यक्रम में हम पूर्व उच्चायुक्त और राजनयिक राधा वेंकट रमन जी से बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातचीत कर रहे थे। हमारी बातें चलती रही लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने कहा कि कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, इसलिए हमने उस समय आपसे अनुमति ली, लेकिन अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
3: जो अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना चाहिए, बोलचाल की हिंदी को
2: जी,
3: हम इस पर कोई एग्जाम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, आपको टेस्ट नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली चाहते हैं कि आप
2: कैसे सीखते हैं उस वेबसाइट से।
3: तो ये इसका नाम है एडुटेनमेंट। हमने एडुटेनमेंट इसलिए नाम रखा है उस वेबसाइट का, एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट
2: जी।
3: तो क्योंकि मैंने ये श्रीलंका में देखा कि लोगों का प्यार हिंदी फिल्मों के ऊपर इतना है, और वो जो आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जहाँ भी रहता है
2: जी,
3: या इंडियन डायस्पोरा नहीं भी रहता हो, जैसे रशिया फॉर एग्जाम्पल है, जो राज कपूर को प्यार करता है, राज कपूर नरगिस फिल्में या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में इतनी पॉपुलर है वहाँ आज के दिन तक,
2: बिल्कुल
3: वो हिंदी को प्यार करते हैं, वो हिंदी फिल्मों को देख के हिंदी सीखा है उन्होंने, तो वो हमने कहा है कि वो अट्रैक्ट होंगे इससे, और हमने हिंदी फिल्म गानों को चुना। तो हमने कहा ऐसे ऐसे गाने हम चूज करेंगे, उस गाने को लेके हम ग्रामेटिकली उसमें टीचिंग पॉइंट्स जो है वो निकाल के वो मेरे एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया। मैंने तो मेरा ये मन में जो इंस्पिरेशन आ रहा था कि इसको लेके हम बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं
2: जी,
3: तो हमने entertainment.in नाम का वेबसाइट, और ये फ्री है, करीब 100 से अधिक गानों पे टीचिंग पॉइंट्स निकाल के उन्होंने उस पे डाल दिया गया है
2: जी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये होगा। राधा जी, अभी हमने यही बात की कि जब आप सर्विस में थी तब अलग तरह की जिम्मेदारियां थी, सेवानिवृत्त होते हुए आपने अब ये हिंदी सिखाने की जिम्मेदारी ली है, आप सोलो ट्रैवलर हैं और बहुत घूमती हैं आप, तो मैं जानना चाहूंगी कि एक तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या आपका अनुभव है।
3: जैसे मैंने कहा ये पूरी लंबी कहानी, इसमें ये पता चला कि आपको कि मैं सोलो रही
2: जी,
3: सिंगल रही
2: बिल्कुल।
3: तो जब मैं इंडिया से बाहर गई तो मेरे को सेम बॉस जिन्होंने मेरे को बेलग्रेड जाने का प्रोत्साहित किया था और मैं गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है दुनिया देखने की
2: जी,
3: तुम एक जगह जा रही हो वहां नौकरी करोगी, अफकोर्स नौकरी पे तो कंसंट्रेट करना ही है मगर बीच बीच में तुम्हें छुट्टियां भी मिलेंगी
2: जी,
3: तो छुट्टियों को वेस्ट मत करो और आस पड़ोस में जहां भी तुम देख सको वो देखो। तो ये वाला सोलो ट्रैवलर का ये एक्सपीरियंस है कि भाई तुम सीखते हो बहुत कुछ, सीखते हो कंट्री के बारे में, और किसी भी कंट्री को आपने अच्छी तरह समझना है तो पैदल चलो। पैदल चलो, एक्सप्लोर करो, गली गली कूचा कूचा देखो, लोगों से मिलो, बात करो, और तब जाके आप एक देश को अच्छी तरह पहचान पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे।
2: दलाई लामा जी के साथ काम करने का

0: कैसा अनुभव आपका रहा?
1: सबसे बढ़िया रहा मैं कहूंगी अभी
0: जी।
1: आजकल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको बुलाया जाता है, बच्चों के साथ बात करते हैं
0: जी।
1: स्कूल लेवल में उनके माइंडफुलनेस थिंकिंग के बारे में बचपन से सिखाने की बात चल रही है, तो वो इंडिया, पूरा इंडिया जा रहे थे। तो मेरा रोल ही था प्रोटोकॉल ऑफिसर का, उनका उनके साथ जाना। तो मैं गई और जहाँ वो गए मैं भी गई, और मैंने पूरा जहां जहां वो इंडिया गए वहां वहां मैंने इंडिया देखा, अपने देश को देखा। तो ये मौका मुझे वहां मिला तो मुझे लगा फिर भी छोटा रहा, अभी मुझे बहुत देखना है इंडिया में।
0: बहुत इंस्पायरिंग है ये सब जो स्टोरी आप बता रही हैं, और यही आपसे जानने का मकसद भी था कि हमारे जो युवा साथी हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, अक्सर क्या होता है कि बहुत चकाचौंध की दुनिया लगती है जब हम फॉरेन सर्विस की बात करते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल हम देखते हैं महसूस करते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन उसके पीछे की जो दुनिया है, कितनी मेहनत उसमें है और कितना स्ट्रगल है, वो सब भी आपकी बातों से हमें पता चला, और बहुत प्रेरणा भी मिली है कि आप काम करते करते कैसे हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो राधा जी, चलते चलते हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: मैं तो युवा साथियों के लिए एक ही संदेश देना चाहूंगी, जो आपने मन में ठान लिया कुछ करना है
0: जी,
1: तो आपको करना है। तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत है और बहुत डिटर्मिनेशन की जरूरत है। ये तीनों चीजें आप में होनी चाहिए। आपने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है तो आपको उसमें वो इजीली नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी मिलेगा
0: जी।
1: एक तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका माइंड ब्रॉड होगा। सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है, कल्चरल डेवलपमेंट भी देखना है, लैंग्वेजेस सीखनी है, भाषा ही सीखनी बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी। सेम तो भाषाएं जोड़ती हैं हमें,
1: भाषाएं छोड़ती हैं। तो एक एवरी चाइल्ड इन इंडिया शुड डिसाइड कि भाई वॉलंटरली मैं एक और भाषा सीखूंगा। तो यंगस्टर्स को ये प्रेरणा देना चाहूंगी कि वो भाषा सीखें, कोई भी भाषा सीखें, और इस वो दिमाग में ये रखें कि मैं कोई एग्जाम नहीं दे रहा इसमें, मुझे मगर भाषा सीखनी है, तो मैं और कहीं स्टेट में जाऊंगा तो उस भाषा में बोलना भी चाहूंगा
0: जी।
1: तो भाषा सीखना एक इम्पोर्टेंट ये है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और वो अपना अपना वो एक बार ठान लिया तो बहुत काम भी करना चाहिए
0: जी। मतलब अपने गोल्स जो है वो सेट करें और फिर उसके लिए प्रयास करें,
1: उसके लिए वो तैयार रहो कि आपने
0: अब जुट जाना है, पूरी मेहनत से अचीव करना है।
1: एब्सोल्युटली
0: जी।
1: ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, और कुछ कुछ सीख हमें ऑल इंडिया रेडियो से मिली है
0: जी।
1: वो छोटा सा एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी
0: जी।
1: मेरी माँ को क्लासिकल म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, कर्नाटिक म्यूजिक उन्होंने बचपन में ही सीखा था, तो उन्होंने हमें भी सिखाने की कोशिश करी थी, और हमने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी की थी, मगर वो डिटर्मिनेशन नहीं था जो मैं अभी बता रही थी उस काम में। आई नो क्लासिकल म्यूजिक सीखने में डिटर्मिनेशन नहीं था, इसीलिए मैं पीछे रह गई, मगर म्यूजिक में मेरा रुचि बढ़ा उससे। तो सबसे इजीली राग को आइडेंटिफाई करने का तरीका मेरी माँ ने मेरे को आपके ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम से ही सिखाया
0: जी।
1: तो संगीत सरिता नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम सुबह मेरे ख्याल से 7 से 7:15 बजे हर दिन ऑल इंडिया रेडियो में प्रस्तुत होता था। उसमें कभी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल राग और एक कर्नाटिक क्लासिकल राग का कंपेरिजन होता था
0: जी।
1: फाइनली कौन सा हिंदी फिल्म गाना उस राग में बना है उससे वो कंक्लूड होता था प्रोग्राम। तो ये मेरी माँ ने हमें, काम कर रहे थे उस टाइम, उस टाइम में मम्मी तो काम कर रही होती थी किचन का, और हम लोग स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, बट वो रेडियो ऑन होता था ऑल इंडिया रेडियो, और हम ये संगीत सरिता प्रोग्राम सुनते थे, और उसमें से वो क्लासिकल राग का ट्यून पिकअप करते थे
0: जी।
1: और मेरी माँ ने कहा कि ये तुम्हें हिंदी फिल्म में तो बहुत दिलचस्पी है, क्लासिकल सीखना नहीं चाह रही हो, हिंदी फिल्म सॉन्ग तुमने ये सुन लिया, इस राग को जब भी सुनोगे तुम आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा राग है
0: जी।
1: ऐसे हमने सीखा था, जिसके लिए हम ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये स्मृति हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: मेरे हिसाब से इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव आकाशवाणी से नहीं पड़ा हो, क्योंकि एक जमाना था जब हमारे पास टीवी वगैरह

0: नहीं था, उस पीरियड की हूँ मैं, उस विंटेज की हूँ। तो रेडियो के बगैर तो मगर हमारी जिंदगी कभी नहीं रही है। बचपन में मेरे पिताजी भी मुझे चिढ़ाया करते थे कि इसको दूध मिला मिला, खाना मिला नहीं मिला कोई नहीं, पर रेडियो ऑन रहेगा तभी ये कुछ करेगी। इसको चुप करवाना है तो रेडियो बजना चाहिए, इसको सोना है तो पीछे वो होना चाहिए। तो वो होता रहा, तो हम आकाशवाणी से तो बचपन से ही जुड़े रहे, और आकाशवाणी से हमने बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो हम एक जमाने में, एक ऑडियो बुक्स भी होते थे आपके। आकाशवाणी पहला इंस्टीट्यूशन होगा इंडिया में जिसने एक स्टोरी को जो है ऑडियो तौर से ऑडियंस तक पहुंचाया। तो हम वो भी बड़े चाव से वेट करके सीरियलाइज करा हुआ वो स्टोरीज सुनते थे। संगीत सरिता नाम के प्रोग्राम से हमने राग को आइडेंटिफाई करने के बारे में सीखा था, और गाने, फिल्मी गाने उससे सुन के एक म्यूजिक डायरेक्टर, किसी भी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के स्टाइल को पहचानने का मौका हमें मिला कि कौन से म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म में कौन से गाने का स्टाइल क्या होता है, उनकी म्यूजिक क्या होती है। ये सब मौका हमें, अगर वो आकाशवाणी सुनने का मौका नहीं मिलता तो हमें सीखने का भी मौका नहीं मिलता। तो इस कारण मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऑल इंडिया रेडियो को। मैं अपना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे समझ में, मेरे ख्याल से आज के दिन में भी ऑल इंडिया रेडियो का जो नेटवर्किंग और रीच जो है पूरे इंडिया में, वो कभी और किसी भी मीडियम का नहीं रहा होगा। ये एक मीडियम है जिसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। और वो उनकी सरल भाषा भी ऐसी होती है, और मेरे ख्याल से उनके रीजनल सर्विसेज भी इतने हैं, फैले हुए हैं पूरे इंडिया में। तो इनको तो मैं तो जितने बोलोगे आप वो कम है आकाशवाणी के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एट द सेम टाइम उनको बहुत कंग्रेचुलेशंस भी देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि वो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे मरते दम तक उनका साथ, जो हमारा जोड़ है, वो बना रहे।
1: तो बहुत ही रोचक ये पूरी बातचीत रही। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, राधा वेंकट रमन जी, आप पूर्व राजनयिक हैं, उच्चायुक्त आप रही हैं, और इतने सारे देशों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, और भारत में रहते हुए भी विभिन्न पदों पर आप रही, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस पूरी बातचीत से बहुत लाभ होगा। बेहद रोचक ये पूरी बातचीत रही, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद तो मुझे देना कि आपने ये मौका दिया मुझे, धन्यवाद।
1: अपने सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी के साथ मैं नीलम मलकानिया हमारे अतिथि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

अभी आपने सुना हमारे अतिथि में राधा वेंकट रमन भाग दो, भारत की उच्चायुक्त व पूर्व राजनयिक, भेंटकर्ता थी नीलम मलकानी, प्रस्तुति काजल सूरी की थी। और लीजिए अब से कुछ ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक, कंपेयर जसपाल कौर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि 10:10 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। जी हाँ, जिसमें आप भेजेंगे अपने संदेश और हम करेंगे उनको शामिल। और आज आपके साथ रहूंगी मैं आपकी पसंद में, आपकी दोस्त कुसुमलता। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

फिल्म जिंदड़ी यार दी दा ए गीत तुसी मोहम्मद रफी दी आवाज विच सुन रहे सी। आस ए कि अज दा मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा समा खत्म हुंदा ए। हुण जसपाल कौर नू इजाजत दियो।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवम्बर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फूक वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूक वोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल है। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह

अली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In the FIFA World Cup, Argentina and England have advanced to the semi-finals. England beat Norway 2-1 in today's quarter-final match at Miami Stadium, Florida. Defending champion Argentina beat Switzerland 3-1 in the last quarter-final match at Kansas City, Missouri this morning. And that's the end of this news bulletin.
1: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, और समय हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:10, और ये समय है बहुत ही खास कार्यक्रम का, और वो है आपकी पसंद। जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त कुसुमलता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और इस प्यार भरे नमस्कार के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत और फिर लेते हैं आपके संदेश।

0: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
0: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी बिल्कुल, समझदार बनिए और समझ जाइए कि हम क्या कहने वाले हैं। ये संदेश आपको बहुत कुछ बताता है और आपके संदेश भी बहुत कुछ बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सुनना चाहते हैं और क्या आपकी मंशा है, सभी कुछ लिख भेजा है आप सभी ने। लेकिन जो 10:10 से पहले के संदेश हैं, क्षमा कीजिएगा, उनको हम नहीं ले सकते क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत होती है 10:10 से। तो हम उन्हीं संदेश को ले सकते हैं जो 10:10 से शुरू हुए आने, और इसमें जो हमें पहला संदेश मिला वो है नारायण खर्चे जी का। जी हाँ, ये है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी जी, हमें कोई फिल्म का गीत सुना दीजिए। बिल्कुल, गीतों का तो आपकी पसंद के गीतों का ही कार्यक्रम है। और अभी अजीत भावसर जी का संदेश मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आपके साथ हूं मैं आज कुसुमलता। आपका संदेश, एक पट्टी नजर आ रही है, कुछ क्या लिखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर अगर हम पढ़े तो लिखा है प्रिय आरजे होस्ट नमस्कार। नमस्कार जी। और ये है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, भिट्टा बजाज। और ये संदेश आया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और ये है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई, ये है पांडा पलारी छत्तीसगढ़ से। और तनुजा देवांगन जी ने ये संदेश भेजा है। तुलसी मस्किन जी संदेश भेज रहे हैं, नमस्कार जी, कहते हैं प्रिय होस्ट मैडम जी सप्रेम नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपने ही पसंद के किसी भी रोमांटिक गीत में संदेश पढ़े जी। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, होस्ट का नाम है कुसुमलता, स्वीकार कीजिएगा फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और तुलसी मस्किन जी हैं, वीना मस्किन जी हैं, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु निधान खुराना। अगला संदेश मिला है अनिल वर्मा जी का, कहते हैं कि सदर बाजार कुरावली से, इनके साथ है माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा। सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। बोधराज खोरवाल जी भी संदेश भेज रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से, इनके साथ है कमला रानी, गीतिका भानु। अगला संदेश है सतीश अनेजा जी का, कहते हैं नमस्कार जी, प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम भी आपका अभिनंदन करते हैं सतीश जी। आपने लिखा है हर सुख और दुख हमारे परिवार सदस्य नहीं मेहमान है। वाकई बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से आएंगे, कुछ दिन ठहर कर चले जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये हम सभी के साथ है। और इन्होंने ये जो इतना प्यारा सा संदेश भेजा, ये भेजा चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने। बहुत अच्छा गीत भी सुनना चाहा है इन्होंने, कोशिश करेंगे कि सुनवा पाए, लेकिन फिलहाल सुनते हैं अभिजीत अलकायाग्नि की ये प्यारी सी आवाज में ये मधुर गीत।

0: और अगला संदेश जो मिला हमें वो है रस क्रिएशन पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि, श्रीमती शीतल राजेश कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए। भाई गीत तो हम सुनवाएंगे ही। रविंद्र सिंह छाबड़ा जी संदेश भेज रहे हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। इनके साथ है इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। कहते हैं हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, गुजारिश है अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। वाकई क्यों नहीं, हम तो हर पल आपको याद रखते हैं। आपने एक लाइन और लिखी है, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। क्या बात है, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी भी। और लीजिए सुनते हैं अब ये आप ही की पसंद में से एक और गीत।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

संदेशों की भरमार है, जैसे मौसम बरसात का है उसी तरह जो संदेश है उनकी बारिश हो रही है, और हम किसी भी संदेश को नहीं चाहेंगे कि रह जाए शामिल किए बगैर, क्योंकि भाई बहुत शिकायत होती है और वो हमें अच्छी नहीं लगती। हम चाहते हैं हमारे सभी लिसनर्स खुश हों कि हमारा संदेश पहुंच गया। विश्वनाथ साहू लछनपुर छत्तीसगढ़ से, इनके साथ है पंकज साहू और तिरुपति साहू। और देखिए इनके बाद जो संदेश हैं वो हैं, अकरम हुसैन प्रिंस कहते हैं नमस्कार, हमें किसी भी गीत में शामिल करें, मैं इंतजार में हूं, धन्यवाद। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज शिक्षिका हैं ये, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें, हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। सुदर्शन शाह जी भेज रहे हैं अपना संदेश, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, इनके साथ है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। राजेश वर्मा जी का संदेश मिला, ये है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा जी के साथ हैं प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू कहते हैं धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। संजय ढींगिया जी बागपत उत्तर प्रदेश से, इनके साथ है नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। हीरामन शिंदे जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता दीदी को स्नेहांकित प्यार, क्या बात है, धन्यवाद आपका। आपके साथ हूं मैं आज कुसुम लता। किशोर नगर अमरावती से इन्होंने संदेश भेजा, इनके साथ है शीला देवी, सिद्धार्थ जी, मस्कीन जी संदेश भेज रहे हैं एक बार फिर से, तुलसी मस्कीन जी हमने आपका संदेश शामिल किया। अब है अनवर साबरी जी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर, जरीफ, दाऊद सराय सहारनपुर से इन्होंने संदेश भेजा। बोधराज खोरवाल जी संदेश भेज रहे हैं, नीटू मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं, लक्ष्मण जगपत जी समता नगर काष्टी से, इनके साथ हैं श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बोधराज खोरवाल जी के साथ हैं कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश। डियर एंकर, आपको विनम्र निवेदन करते हैं, ये कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा जी ने संदेश भेजा है, लिखा है तीन चार लिसनर्स एक दूसरे का उनके परिवार के अन्य नामों का सदस्यों का नाम बिगाड़ कर लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि नाम बिगड़ जाते हैं, शहर बिगड़ जाते हैं, तोड़े मरोड़े जाते हैं, और बहुत सारे इन्होंने बहुत बड़ा एक संदेश भेजा है, तो इन्होंने संभावित गलत नाम लिखने वाले लिसनर्स के नाम भी भेजे हैं, तोड़े मरोड़े गलत नाम है, संदीप कौर का नाम संदीप मकड़ जालंधर से, सुरेश जाटव का नाम सुरेश नारंग, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा संदेश है, कृपया आप अपने अपने संदेश भेजिए, आप सभी से गुजारिश है किसी और का नाम ना भेजें, सिर्फ अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का जो आपसे संपर्क रखना चाहते हैं, आपसे कहते हैं हमारा नाम भेजिए, तो उन्हीं का नाम आप भेजें, बाकी किसी का नाम ना भेजें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी ना हो, उससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हो। खैर, अगला संदेश है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से आराज एसडी अंसारी, अस्मा खातून अंसारी। और मोहम्मद सईद अबासी जी का हमें संदेश मिला, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी जी के साथ है निगहत प्रवीण अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। सतीश नरेजा जी का संदेश ले चुके हैं, ओम प्रकाश राय जी संदेश भेज रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय जी के साथ हैं श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। रविन्द्र मोहन जी संदेश भेज रहे हैं, संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़,
कमल सहानी पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से इन्होंने संदेश भेजा। ताज मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं। मल्होत्रा जी का संदेश हम ले चुके हैं और संदीप मकरजी का भी ले चुके हैं। पीएस नावकर जी संदेश भेज रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। इनके साथ हैं निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मुहेरकर। धर्मेंद्र शिपा जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं आदरणीय महोदया कुसुम जी, कुसुम लता जी को हार्दिक नमस्कार। नमस्कार जी, कहते हैं बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, संभव हो तो एक नगमा सुनवा दीजिए। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं ये धर्मेंद्र छिपा जी के साथ, कमिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार जी। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, आप में से ही किसी एक की पसंद पर इस गीत को हमने आपको सुनवाया। संदेश आ चुका है रविंद्र मोहन दास जी का किशनगंज बिहार से। इनके साथ हैं आशा देवी, कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, गीत तो हम सुनवा ही रहे हैं। साहिल धर जी कहते हैं श्रीनगर से, साहिल धर विद मी।

उर्फी जान कहते हैं एनी सॉन्ग, प्ले एनी सॉन्ग। भाई वो तो आप 10:10 से सुन ही रहे हैं। दिनेश वर्मा जी ने संदेश भेजा है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से इनके साथ है करुणा वर्मा, इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। एक जो विचार भेजा, सिर्फ एक ही हमारे लिसनर ने भेजा, हम ये कहेंगे कि कार्यक्रम में कुछ ना कुछ अपने आप से कोई एक ऐसा ऐसी बात साझा कीजिए जो दिन बन जाए, सुबह सुबह ही कुछ अच्छा सा सुनने को मिल जाए, चाहे वो दो लाइनें ही हों। अब देखिए मुकेश बत्ता जी संदेश भेज रहे हैं, इन्होंने कनेहरा मोहल्ला पटियाला से, इनके साथ है नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। बाकी हमें बराबर रिपीटेशन मिल रही है संदेश की। नीटू मल्होत्रा जी का संदेश हम शामिल कर चुके हैं, इनके साथ है लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवा कॉलोनी से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का, खेल बाजार पानीपत से इन्होंने ये संदेश भेजा। और आर कुमार जी संदेश भेज रहे हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। राधेश्याम देवांगन जी ने संदेश भेजा इंद्रपुरम भवरपुर से, इनके साथ है चंपा देवांगन, नेहा, जगदीश, राजू देवांगन। कार्यक्रम अच्छा लगता है इन्हें, कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। सोपान आडोकार जी संदेश भेज रहे हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से, इनके साथ है सोपान तायड़े, विजया तायड़े, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और सुनंदा जी संदेश भेजने में इनके साथ है। गुलाब दास मानिकपुरी जी ने संदेश भेजा है, कहते हैं नमस्कार कुसुम दीदी जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? लेवई छत्तीसगढ़ से राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी कहते हैं चेहरे से नहीं सीरत से खूबसूरत होना चाहिए। वाकई सूरत नहीं सीरत बहुत बड़ी चीज होती है। और सतीश अनेजा जी ने हमें बहुत ही अच्छा संदेश भेजा इन, और इसके बाद मल्होत्रा टीडी मनाली से ये हम संदेश ले चुके हैं। अहमद फूल वाले जी का संदेश लेना चाहेंगे इन्होंने, यह छोटी बलिया करजल मुंबई से। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। बोधराज खोरवाल जी का भी हम संदेश ले चुके हैं, संदीप मक्कर जी का भी हम संदेश ले चुके हैं, सरफुद्दीन अंसारी जी हमें संदेश भेज रहे हैं बक्सर बिहार से, इनके साथ है फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से, डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से, श्रद्धानंद आर्या, ये हम पूरा संदेश ले चुके हैं एक बार। और कोई संदेश रह ना जाए ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ढूंढ ले कोई एक, ऐसा तो कोई नहीं बचा जिनका नाम हम नहीं ले पाए, क्योंकि हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, चाहते हैं सभी का संदेश शामिल हो, क्योंकि सभी का समय बहुत कीमती होता है भाई, समय निकाल कर संदेश करते हैं और ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बात होती है। और हमारे कुछ श्रोता जो हैं शायद हमें सीधे सीधे हाँ व्हाट्सएप पर भी संदेश भेजते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, आप मेल ही करें, क्योंकि हम उन्हीं संदेश को ले पाएंगे जो हमें मेल आएगी। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन और समस्त देवांगन फैमिली का हमें संदेश मिला। और विजय चवन जी का संदेश मिला हमें, ये कहते हैं वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, माई इंदुरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, किवले गांव पुणे से अंकिता कांबले सोदापुरकर, विजय कांबले सोदापुरकर और बेबी शौर्या श्रेयस कांबले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल मोहन जी संदेश भेज रहे हैं, पिछली बार इनका संदेश मेरे हाथ से जाने कैसे रह गया था, बहुत बुरा लगा मुझे कि आप संदेश भेजे और हम शामिल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, इन सभी ने पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें संदेश भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये रजक मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान, इरफान, जिशान, प्यार भरा नमस्कार जी, हनुमानगढ़ राजस्थान से इन्होंने संदेश भेजा, बहुत प्यार से मैं आपका नमस्कार ले रही हूँ, धन्यवाद आपका, कार्यक्रम में आपने संदेश भेजा। सुरेश नारंग जी संदेश भेज रहे हैं सहारनपुर, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग इन्होंने संदेश भेजा। फागुराम यादव जी संदेश भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और सोमदत्त जी का संदेश मिला, जिला
पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव।

ज्योति रानी सुमन गुरमंत कौर मनु उत्तम कुमार भगत जी का संदेश मिला पांकुड़ झारखंड से। इनके साथ है श्वेता भगत कीसू तासु अर्णव आनंद सत्यमानंद बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। सुदर्शन मुखीजी संदेश भेज रहे हैं अदम्य प्रस्तुतकर्ता जी आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी सादर प्रणाम प्रणाम जी कार्यक्रम AKP में हमारे अनुरोध पर कृपया ये गीत सुनाएं जी। संगीत इन्होंने संदेश भेजा है अनीता मुखी सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन शाह जी के साथ। धन्यवाद आपने संदेश भेजा इसके लिए। और सतीश अनेजा जी एक बार फिर से संदेश भेज रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं धन्यवाद आपका भी। सुरेश नारंग जी संदेश भेज रहे हैं सहारनपुर चंदर से इनके साथ है आशु नारंग सोनाली जब कोई बात बिगड़ जाए गीत सुनना चाहा है इन्होंने। सुभाष योगी जी का संदेश मिला हमें कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी राजू मिगलानी। बहुत सारे संदेश हम शामिल कर चुके हैं लीजिए अब सुनते हैं एक गीत।

जी हाँ, गीत भी सुनते रहिए और बातें भी करते रहिए। आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कुसुमलता जी, सादर प्रणाम। नमस्कार बहन जी कुसुमलता जी, आप सदा खुश रहें, खुशियां बांटो, यही हमारी कामना है। और ये संदेश हमें भेजा ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद बहन कुसुमलता जी। आपको अभी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संदेश भेजा। सीताराम कांगड़ा जी का संदेश मिला एकता कॉलोनी रोहतक से। इनके साथ है बबीता बौद्ध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बौद्ध। गव्या मल्होत्रा जी संदेश भेज रहे हैं नारगली बाजार जगराओं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, प्यार भरी नमस्कार सुबह की, राम राम, राम राम जी। निसार अली जी संदेश भेज रहे हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू कहते किसी भी गीत में शामिल करे, कर लिया जी। और शीशपाल जी संदेश भेज रहे हैं, ये शीशपाल वर्धान जी हैं, कहते हैं बेस्ट प्रोग्राम इज द बेस्ट, दिल खुश कर दिया। गाजियाबाद से शीशपाल अकेला जी, धन्यवाद तारीफ करने के लिए। अनु जी का संदेश मिला अनु बड़जातिया जी का मुंबई से, इन्होंने संदेश भेजा। इनके साथ है शमशुल खान, अनुराज बेनारा, कह रहे हैं कि नल से पानी टपक रहा, उसे बंद कर दो भाई, दांत साफ करते समय नल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जल है तो हम है और हम है तो कल है, क्या बात है। हंसते रहें आप सबके बीच, खिलते रहें आप फूलों के बीच, रोशन रहें आप हजारों के बीच, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच, क्या बात है, दिन बना दिया आपने तो मेरा। बहुत अच्छा संदेश भेजा है आपने। और राजेश जैन जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, मुल्लापुर दाखा से इन्होंने संदेश भेजा। सुरेश चौरसिया जी संदेश भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, पवन गौड़, योगेंद्र नायक कासगंज जी, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर, नवाबगंज कानपुर से पंकज, पीहू और दिया, सुजाता चौरसिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लालगिरी रघुनाथपुरा, श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी जी का हमें संदेश मिला। सुभाष योगी जी का संदेश मिला हमें कृष्णा कॉलोनी हांसी से। इनके साथ है सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। राजीव शर्मा जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं आदरणीय मेजबान दीदी जी नमस्कार जी, आपकी मेजबान दीदी का नाम है कुसुमलता, कहते हैं गीत सुना दे, थैंक्स जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे मैसेज को शामिल कर लीजिए। थैंक्स भाई, हमने शामिल किया। ये है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। बब्बल ये है मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, धन्यवाद जी। कहते हैं दीदी जी प्रोग्राम में आप जो टॉपिक बताते हैं टॉपिक पर लिखने के बाद भी मेल शामिल नहीं होती, भाई हमने मेल शामिल किया ना, देखिए पढ़ भी रहे हैं, टॉपिक आज कोई दिया ही नहीं। कोई बात नहीं, कह सकते हैं टॉपिक कोई नहीं दिया हमने, हम सिर्फ आपके संदेश ले रहे हैं, आपके गीत सुनवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप सभी के संदेश शामिल हो जाएं आज, इसीलिए हमने कोई टॉपिक नहीं दिया, क्योंकि टॉपिक में आप और हम कहीं फंस कर रह ना जाएं और बातें अधूरी ना हो जाए। गांव 5 MD पतरौड़ा अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल जी का संदेश मिला हमें। और यह है प्रकाश वर्मा जी ने संदेश भेजा, इनके साथ है प्रिंस, निखिल, यशस्वी, छत्तीसगढ़ पलारी से मंगल जंगल ये संदेश मिला है। एक बार फिर से रिपीट हो रहा है ये संदेश, प्रकाश गोगिया जी का संदेश मिला हमें, और इन्होंने एक गीत की सिर्फ फरमाइश की है। फिलहाल हमने सभी के संदेश शामिल कर लिए हैं, आप सभी का कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी अपनी होस्ट कुसुम लता की तरफ से। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का, आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब समय हो चला है समाचार का। तो लीजिए सुनते हैं आपसे कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi had visited Indonesia from the 6th to the 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, Prime Minister Modi travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both the countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The visit to New Zealand was the first visit by an Indian Prime Minister in 40 years. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: Bharat aur New Zealand ke rishte mein yaadein bhi hain, dosti bhi hain, values bhi hain aur ek commitment bhi hai. Bharat New Zealand ki yahi waqa ek nayi yatra par nikalne ke liye taiyar hai. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate and lay the foundation stone of various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth 405 crore rupees in Ahmedabad today. During the program, the minister will also kick-start an ambitious mass afforestation campaign for his Gandhinagar Lok Sabha constituency. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, has issued 9 notices to food business operator Swiggy Instamart following multiple consumer complaints alleging violations under the Food Safety and Standards Act 2006. In a social media post, FSSAI said the food business operator has been directed to submit a detailed explanation and compliance report, failing which appropriate legal action will be initiated. Consumer complaints alleged the supply of expired, spoiled, rotten, contaminated and otherwise unsafe food products through Swiggy Instamart. The United States launched a new round of strikes against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC forces attacked a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. U.S. military said the strikes were carried out at the direction of President Donald Trump. U.S. CENTCOM said the attack on the commercial vessel left a civilian crew member missing and the vessel is unable to continue the journey due to an onboard fire and significant engine room damage. Explosions were heard in Kesham Island, Mandar Abbas and Sirik following the attacks. Meanwhile, Iran has closed the Strait of Hormuz until further notice. Iran's IRGC Navy said the sea route was closed following an incident involving a vessel that attempted to use an unauthorized route. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 days. These places include Jammu and Kashmir and Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Odisha. In the FIFA World Cup, Argentina and England have advanced to the semi-finals. Earlier, England beat Norway 2-1 in a quarter-final match at Miami Stadium, Florida. Defending champions Argentina beat Switzerland 3-1 in the last quarter-final match in Kansas City, Missouri this morning. Spain and France have already booked their places in the last four. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium to advance, while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. And that is the end of this news bulletin.
3: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. समय है कार्यक्रम सबरस का, डीजे सुनते हैं सबरस में। कार्यक्रम सबरस में ये पहली प्रस्तुति विलास पाटिल और साधना सरगम के स्वर में।

कंगना के स्वर में, ये सुहेल और रईस खान और मंजीरा के स्वर में। और लीजिए सुनते हैं अब सबरस की तीसरी प्रस्तुति सुहेल रईस खान के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सबरस के अंतर्गत विभिन्न प्रस्तुति और अब 11:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनते हैं सुरमंजरी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज हम सुनेंगे वायलिन पर पारोमिता मुखर्जी से राग अहिल्या बिलावल।

अभी आप सुन रहे थे सुर मंजरी कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पारोमिता मुखर्जी से वायलिन पर राग अलहया बिलावल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है, कुछ खो गया है क्या?
1: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
0: अरे क्या खो गया है?
1: इस बोतल का पानी, जो अब नहीं है। तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
0: अरे सीट गर्म हो गई थी।
1: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
0: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
1: जा ढूंढ, आगे जीपीएस लगेगा तब पानी मिलेगा।
0: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी बाणी है तेरी।
1: याद रखियो, पानी बाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
0: बात तो तेरी काम की लगती है।
1: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी

0: की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। यह हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto, During the visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the

0: सभी सखियों का ग्रह लक्ष्मी कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को हमारा राम राम।
1: रेनू आपको भी हमारा राम राम।
0: यमुना तुम्हें भी मेरा राम राम।
1: और एक बात और है, जब हम सखियों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सखियां ही कार्यक्रम सुनती हैं, सखा लोग भी कार्यक्रम सुनते हैं, हमारे भाई बंधु भी कार्यक्रम सुनते हैं, क्योंकि हम उन्हें भी कुछ न कुछ बताते रहते हैं कि बहनों को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये नहीं मानना चाहिए सिर्फ बहनें ही सुन रही, क्योंकि घर में जब रेडियो चलता है तो सारे लोग सुनते हैं, तो भाई उनको भी हम राम राम करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं सभी को हम अपना राम राम देते हैं, ठीक है।
0: और देखो यमुना, हम अपनी बहनों के लिए और अपने सखाओं के लिए भी बहुत सारी बातें लेकर आते हैं, बातचीत के विषय लेकर आते हैं। और जैसे कि आज 12 जुलाई है, 12 जुलाई को हमारे देश में विदेश में बहुत सारे ऐसे दिवस होते हैं जो मनाए जाते हैं, और वो इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम सभी जागरूक हों,
1: जागरूक हों, और सबसे बड़ी बात हो उस जागरूकता के तहत हम भी आगे बढ़कर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसमें आगे बढ़ के अपना नाम भी रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें।
0: और देखो जब हम जागरूक होंगे तो तभी तो हमारे मन में कुछ भी करने की आशा जगेगी। और देखो आशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिस इंसान के जीवन में आशा आ जाती है ना मन में, तो वो बुलंदियों को छू लेता है।
1: बिल्कुल, आपका इशारा मैं समझ रही हूँ। क्या कहना चाह रही हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो है आशा दिवस है, और खास करके इसी पर हमारी बात जो केंद्रित है।
0: बिल्कुल, और देखो हम अपनी बहनों को ये बताते चलें कि जो आज 12 जुलाई को ये जो आशा दिवस मनाया जा रहा है, इसको कैसे मनाया गया था। 4 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक मसौदा प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत 12 जुलाई को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया गया था।
1: बिल्कुल, और जो बात हम कर रहे हैं विश्व शांति की, हम बात करें तो विश्व शांति की जो कुंजी है अंतरात्मा में निहित विश्वास रखते हुए होता है। तो देखा जाए तो एक तरीके से जो ये आशा दिवस हम मना रहे हैं, एक दिलों में एक अच्छाई लाने की बात है, अपने मन में सकारात्मक भाव लेकर के आगे बढ़ने की बात है। क्योंकि जब हमारे अंदर सकारात्मक भाव होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और लोगों का हम सहयोग कर पाएंगे, क्योंकि नकारात्मकता जो है वो जीवन को समाप्त कर देती है।
0: बिल्कुल, और देखो यमुना, जो वर्ल्ड पीस एंड लव के अध्यक्ष डॉक्टर हांग ताउत जे थे, वो लंबे समय से प्रेम, शांति, अंतरात्मा और आशा को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करते रहे हैं, और उनका यही सार था कि आइए हम लोगों के दिलों में अच्छाई की भावना जगाएं, आशा को अपनाएं और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की स्थापना जो है दृढ़ता, सहयोग और इस अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है बहनों, कि एक बेहतर दुनिया तभी संभव है जब वैश्विक माने विश्व स्तर पर नागरिक अंतरात्मा से प्रेरित हो रहा हो, आशा को अपनाएं और व्यापक भलाई के लिए कार्य करें। यह वार्षिक आयोजन इस बात को याद दिलाता है कि मानवता मिलकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकती है और स्थायी शांति और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और सच कहें रेनू, तो जो आशाओं की हम बात कर रहे हैं, तो एक होता है कि सावन आता है तो उसकी हम बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, लेकिन आशा जब हम बात करते हैं, आशा शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो उसकी भी एक सावन होती है, एक हरियाली उसकी होती है, कि आशाओं का जो सावन है उसे फैलाना, हमें आशा रूपी बात को, भाव को लोगों तक, जन जन तक ले जाना है। इसी गीत को हम माध्यम से, गीत के जरिए हम सुनवाना चाहेंगे कि आशाओं के सावन में कैसे हम आगे बढ़ते हैं।

0: और यमुना, आशाओं का सावन तभी अच्छा लगेगा जब चारों ओर हरियाली
1: होगी।
0: और हरियाली कैसे होगी? जब जगह जगह पर वृक्ष लगाए जाएंगे, यानी वृक्षारोपण किया जाएगा, क्योंकि वृक्ष ना सिर्फ हमें श्वास लेने में मदद करते हैं बल्कि पूरे वातावरण को भी हरियाला बना देते हैं, पूरी धरती हरी भरी कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पर्यावरण है वो भी पूरी तरह से अच्छा हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आज जो है 12 जुलाई है, और 12 जुलाई को नई दिल्ली के पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जो दिल्ली के व्यापक हरित अभियान का एक मुख्य हिस्सा है। और इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और यमुना, इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वृक्ष मित्रों से बातचीत की गई है। इसके अलावा 16,000 से अधिक प्रतिभागी जो है वो वर्चुअल रूप से इससे जुड़े हुए हैं, और जो पर्यावरण है ना वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है।
1: बिल्कुल। और प्रमुख हस्तियां जो है उपस्थिति है उनकी इस कार्यक्रम में, और पर्यावरण जो विद हैं अनिल जोशी और अनूप हजेला भी शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। और एक बात, एक खासियत और है इस कार्यक्रम का, कि मतलब जो एक

0: है वो माँ के नाम, और मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 ये नाम दिया गया है। एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। यह आयोजन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से चल रहे हैं और मिशन 70 लाख पौधारोपण का है।
1: बिल्कुल, और यमुना इसमें सोने पर सुहागा हो जाए अगर हमारी जो बहने और भाई सुन रहे हैं वो भी वृक्षारोपण करके आज के दिन को सुहाना बना दें।
0: बिल्कुल, जो भी सुन रहे हैं वो इसी बात का परिचायक बने कि हाँ हम भी ऐसा करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएंगे, अपनी धरती को हरी भरी बनाएंगे। और इसी बात को लेकर के देखते हैं हमारे जो लोकगीत के कलाकार हैं बहेंद्र शर्मा क्या कह रहे हैं।

0: पर्यावरण की बात हो गई, हरियाली की बात हो गई और बरसात का मौसम है, बारिश शुरू हो चुकी है। कभी धूप आ जाती है खिली खिली सी, तो कभी बारिश झमाझम होने लगती है।
1: यमुना देखो, जब धूप आती है तब मन करता है कि बारिश आ जाए, और जब बारिश आ जाती है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, तो उससे भी हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बरसात का मौसम जहां अपने साथ गर्मी से राहत, ठंडी हवाएं और हरियाली की सौगात लेकर आता है, उससे तन मन को राहत तो बहुत मिलती है, मगर यमुना उसके साथ साथ बारिश में कहीं संक्रमण और बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। तुम्हारा क्या कहना है?
0: बिल्कुल सही कह रही हो। तो ऐसे में महिलाओं को अपने

0: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और ताकि उनके जो स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ने वाला है वो रुक जाए। तो इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ पर्यावरणविद भी हैं। तो स्टूडियो में आ चुकी हैं, चलते हैं उन्हीं से जानकारी लेते हैं और बातें करते हैं कि बरसात के मौसम में क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, अपना अपने बच्चों का भी।
1: बिल्कुल ममता प्रियदर्शनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और इस विषय पे चर्चा करने के लिए।
1: तो आप हमारे सखियों को पहले ये बताएं कि बरसात के मौसम में महिलाओं को किन किन ऐसी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिनसे उन्हें बचना चाहिए।
2: देखिए बरसात आ चुकी है और हम सबको, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक उत्सव की तरह है, लेकिन उत्सव तभी होगा जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल सही।
2: और महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद का स्वास्थ्य देखना, क्योंकि परिवार की धुरी है, परिवार के साथ साथ उनको अपनी सुरक्षा का बरसात में जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो खुद बीमार पड़ जाएंगे बहनें, तो फिर दूसरों को परिवार को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो महिलाओं को चाहिए कि देखिए अभी संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बरसात में, अगर जो शारीरिक व्यायाम करती है या बाहर जाती है वो नहीं जा पाते, बच्चे सारा दिन घर में रहते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते, कि उनको भी देखना जरूरी है। साथ में कभी बच्चे गीले होके आ गए, अपने बरसात में बाहर निकल गई, वो गीली हो गई, गीले कपड़े ना पहने, अपनी कम से कम जो है सो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि तुरंत से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी नींद लें, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि दिन भर काम में इतना थक जाती हैं कि वो सोचती हैं बस हम परिवार बच्चों की सेवा करते रह जाए परिवार में, लेकिन नींद लें, संतुलित भोजन लें, अपनी थाली ठीक रखें, हरी सब्जियां खाएं, बाहर का खाए ना, बाहर जंक फूड ना खाएं, बाहर का कटे जो फल होते हैं या जो सामान है उसको बाहर ना रखें, खुला ना छोड़ें। इसी सब चीजों को उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहनें अगर स्वस्थ रहेंगे तभी उनका परिवार और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा।
0: एक बात और है कि बारिश के इस मौसम में रेणु देखा जाता है ना कि पाचन और पेट की समस्याएं ज्यादा हो जाती है, तो इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या है?
2: ये सही कहा आपने कि बारिश के मौसम में एक तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है, संक्रमण बहुत जल्दी होता है, और जैसे आपने कहा कि पाचन पे और हमारा खान पान पे उसके कारण पेट बहुत जल्दी जल्दी पेट के समस्याएं हो जाती है। देखिए सबसे ज्यादा इसका मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं जल संरक्षण पे काम भी कर रही हूँ और गाँव में भी मैं जाती हूँ तो देखती हूँ, साफ सफाई के साथ साथ पानी का ख्याल रख, अच्छा पानी पीना। देखिए अच्छा पानी बहुत जरूरी है, अगर हम दूषित जल है, अगर हम पानी कहाँ से आ रहा है गंदा है, अगर हम उसको बॉयल करके पिए, प्रॉपर उबाल के पिए बहने, तो यूजुअली जो है सो 90% बीमारियां जो होती हैं सो बरसात में पानी जनित होती है। तो अगर हम उसको ठीक से रखें, पानी ठीक से पिएंगे, तो हमारा पाचन, हमारा शरीर ठीक रहेगा, और साथ ही साथ पाचन के लिए जैसे अभी हम कह रहे थे बासी भोजन ना खाएं, बहुत गरिष्ठ भोजन ना खाएं, जो मौसमी सब्जी मिलती है, मौसमी फल मिलता है उसी को खाएं, बाहर निकल रहे हैं कुछ भी बाहर से ना खाएं, और अपने आप को जो है सो ऐसा कम खाएं, गरिष्ठ खाएं, गरिष्ठ ना खाएं, और नींद का जरूर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा बीमारियां तो उनको नहीं होगी, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले कि अगर कुछ भी लगता है जैसे त्वचा पे, अभी मच्छर बहुत आ रहे हैं, तो हम अगर कुछ बीमारियां हो जाती है तो आसपास के जो चिकित्सक हैं नजरअंदाज ना करें अपनी बीमारी को, तुरंत जाकर के जो आपके चिकित्सक हैं या डॉक्टर की सलाह जरूर ले। या मैं बहनों को कहना चाहती हूँ, छोटी हो कि बड़ी बीमारी, कुछ भी हो चाहे पाचन से रिलेटेड हो, तो घरेलू इलाज थोड़ा मोरा जो रसोइयों में जो आप करते हैं रसोई में वो करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
0: बिल्कुल हम भी कहेंगे रेनू कि हम लोग तो डॉक्टर का सलाह लेंगे, साथ साथ हमारी सखियां भी इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य को आपको कैसे सही बनाए रखना है। कार्यक्रम हमारा जारी है गृह लक्ष्मी, और इस समय हमारे साथ है रेनू मेरी सखी और हमारी जो विशेषज्ञ है, इस कार्यक्रम जो बातचीत चल रही है बरसात के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से निदान पाने का, तो डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी। तो ममता जी, आपकी पसंद का कोई गीत आप बताइए जो आपको हम सुनवाए और हमारी सखियां भी सुने।
2: देखिए बहुत अच्छा आपने पूछा, देखिए बरसात का मौसम है और अगर उत्सव हम मना रहे हैं तो हवा को भी रोक ले, मौसम को भी ऐसा रोक ले, तो रुक जाइए हवा, मेरा एक पसंदीदा
0: गाना। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, लता जी का गाया हुआ, चलिए सुनवाते हैं आपको।

0: कार्यक्रम चल रहा है गृह लक्ष्मी और अगला प्रश्न रेनू करने जा रही है। हाँ, रेनू क्या पूछना चाह रही
1: है? बिल्कुल ममता जी, देखिए बारिश के मौसम में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो आप हमारी सखियों को यह बताएं कि इस मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए।
2: ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी हमें अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात करते हैं, तो वो जिंदगी का जीवन शैली को आपको बदलना है। ये नहीं है कि एकदम आज चाहेंगे और आज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके लिए आप थाली में इंद्रधनुषी थाली हम लोग अक्सर कहते हैं, रंग बिरंगा थाली करिए, मौसमी जो भी आपकी सब्जी है, टमाटर है, जो फल है, उन सबको मिला करके, साथ ही सकारात्मक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव सोच रखिए कि हम किसी चीज में स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रॉब्लम में कर रहे हैं, कि हर घर के छोटे छोटे तनाव ले रहे हैं, उससे अपने आप को बचा करके रखिए। घर में ही छोटी मोटी अपनी शारीरिक एक्टिविटी करिए, जिससे आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, वो भी बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए, आप दूसरों को खुशी देने के चक्कर में अपने लिए मी टाइम रखिए, 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, सोचिए, खुश रहिए, और साथ ही साथ जो है अपने साफ सफाई, आसपास के साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए, इससे आप तुरंत संक्रमण नहीं फैलेगा और आप स्वस्थ रह पाएंगे।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है रेनू की, देखो आपसे भी कहेंगे ममता जी कि आप भी देखती है कि बरसात के मौसम में जब गीले कपड़े हो जाते हैं तो चाहे वो युवतियां हो चाहे महिलाएं हो, क्या करेंगे, अरे अभी सूख जाएगा, थोड़ा सा ही तो गीला है, कोई बात नहीं है, कौन बदलने जाए, बड़ा आलस्य लगता है। तो ऐसे में आप देखते हैं वो नजरअंदाज करती हैं, गीले कपड़े ही पहने रह जाती हैं, तो इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो आंतरिक सफाई करने की बात है, आंतरिक स्वच्छता शारीरिक रूप से, उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं।
2: जैसे आपने कहा कि युवतियां एकदम नया नया जब वो बड़ी होने लगती हैं तो शारीरिक उनके जीवन में मतलब शरीर में कई बदलाव होते हैं। उसके बाद अगर हम खुल के बात करें तो माहवारी होती है, उसमें अगर हम अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, जो हमने पहने हुए हैं, अगर गीले कपड़े पहने रह जाएंगे तो आपके जो वैसे अंतर वस्त्र हैं वो अगर गीले रह गए हैं तो आसपास आपको इन्फेक्शन, फंगल, जो आजकल फंगस के इन्फेक्शन के, इन सब के चांसेज हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को पूरे शरीर के आंतरिक अंगों के भी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तो हम तुरंत सूखे कपड़े पहने, हम कपड़े तुरंत बदलें, सूती कपड़े पहने, इस तरह से कि अगर गीले कपड़े पहन के आ गए और सारा दिन रह गए तो अगर इन्फेक्शन हो गया, जो हम यूज करते हैं माहवारी के दौरान, उसको भी साफ सफाई का ख्याल रखें, उसको भी बदलें, तुरंत चेंज करें, ये सब जरूरी है। और साथ में जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो लोग भी हमारा कार्यक्रम बहुत सुन ही रही होंगी, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगी कि गीले कपड़े कम से कम ना पहने, बारिश में बाहर ना निकलें, फिसलने का डर हो सकता है। हाँ। और साथ ही साथ खान पान में बासी ना खाएं, रात का भोजन सुबह ना खाएं, और वैसी चीजें ना खाएं जिससे उनको परेशानी हो सकती है, खास करके जो, और साथ ही
0: जी इशारा कर रही है रेनू, कुछ पूछना चाह रही क्या, मन में क्या सवाल आ रहे
1: हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए डॉक्टर ममता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि जब कपड़े गीले हो जाते हैं तो उससे इन्फेक्शन का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी बहन इस चीज का ध्यान रखेंगी। इसके साथ साथ डॉक्टर ममता जी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस मौसम में मौसमी बीमारियां बहुत जल्दी हमारे ऊपर आक्रमण कर लेती हैं, तो और जब वो आक्रमण कर लेती हैं तो हम बहुत समय के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो हम बीमार ना पड़े उससे हमें अपने आप को कैसे बचाना है?
2: ये अच्छा पूछा आपने कि अभी क्योंकि बरसात के मौसम में, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अपने आसपास के परिवेश

0: के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, स्वच्छता का ख्याल रखें, और साथ में जो अगर हमें छोटी मोटी बीमारियां हो रही है संक्रमण के कारण, तो हम कम से कम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। अपने आप को जितना हम साफ सफाई रखेंगे, जितना गीले कपड़े नहीं पहनेंगे, खान पान सही रखेंगे उस हिसाब से, और पानी, जैसे हम शुरू में भी बात करते हैं बरसात के मौसम में,
1: जी
0: पानी का ख्याल रखें। पानी अगर गंदगी है तो उसको सफाई रखें, और जो गांव में जहाँ पे मच्छर ज्यादा है या वैसे ही, क्योंकि मलेरिया और कई बीमारियों का चांस
1: डायरिया
0: बढ़
1: वगैरह
0: जाता
1: भी
0: है,
1: हो जाता है, गर्मी भी तो पड़ती है बरसात के साथ साथ, चिलचिलाती धूप भी आ जाती है और तुरंत बरसात भी हो जाता है। तो जी, मौसम का जो चेंज होना होता है, बदलाव, ये हमारे शरीर पर बहुत ही दुष्प्रभाव
0: बहुत,
1: डालता
0: और
1: है।
0: साथ में हाथ बहुत धोएं, क्योंकि WHO का कहना है कि अगर हम अपना हाथ समय समय पे बाहर से
1: बिल्कुल
0: आके धोएंगे, घर में धोएंगे, और
1: जी
0: तो उससे हम 90% जो इस तरह की बीमारियां होती है बरसात
1: जी
0: जनित, उससे हम बच सकते हैं।
1: जी जल जनित बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। कार्यक्रम हमारा चल रहा है गृह लक्ष्मी, ममता जी आपके पसंद का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं, हमारी बहनें भी इंतजार करती है कि अब गीत होगा, अब गीत होगा। तो चलिए बता दीजिए, दूसरा आपका कौन सा गाना हम प्ले कर दें?
0: पर्वत के उस पार,
1: क्या
0: अच्छा
1: बात है,
0: गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है, सारे आप ढूंढ ढूंढ के रखी हैं अपने मन में। चलिए आपके मन का हम प्ले करते हैं।

0: ममता जी, देखिए बारिश में हमारी स्वच्छता तो बहुत हो गई, आपने बता भी दिया कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है। स्वच्छ रखेंगे तो हम जो मौसमी बीमारियां बारिश में आती हैं उनसे बचे रहेंगे, लेकिन अपनी स्वच्छता के साथ साथ भाई हमें घर की स्वच्छता का ध्यान भी तो रखना है, क्यों यमुना?
1: बिल्कुल, तो अपने घर की साफ सफाई हम कैसे रखें, इस बात को जानना चाहते हैं रेनू।
2: मैं बहनों को कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी बात कर रहे थे यमुना जी और कहा इन्होंने कि हम आसपास की परिवेश की सुरक्षा स्वच्छता का कैसे ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने आप को साफ रख लें और हमारे परिवेश में कहीं कूलर है, कूलर में पानी इकट्ठा हो रहा है, या कहीं गमले में पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर हम बार बार, या पानी कहीं बाहर रखा है उसमें इकट्ठा हो रहा है, हम बार बार उसको बदलते नहीं है, तो उसमें कई बार लार्वा या मलेरिया के मच्छरों के लार्वा इकट्ठे हो सकते हैं, या जल जनित बीमारियां उसके कारण हो सकती है, मच्छर पनप सकते हैं, मक्खी आ सकती है। तो हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है कि हम आसपास जो अपने परिवेश में जहां जहां भी पानी हम स्टोर करते हैं या खुला में पानी रहता है उसको प्रॉपरली, मतलब बार बार या तो बदले, कूलर की सफाई करें, या उसको इकट्ठा ना होने दे, खुली नालियां आसपास है उसको ना रखें, उन सबसे परिवेश अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो आसपास आपका वातावरण स्वच्छ रहेगा।
1: और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पानी है काफी दिनों से इकट्ठा है उसे हटाएं, और जो छत है, छत पे जाते हैं तो बारिश आने से पहले लोग क्या करते हैं, कूड़े हटा देते हैं वहां से, भाई जल निकलने का रास्ता अवरोधित ना हो, वहां से जल निकल जाए। ये तो हुई हमारी बात कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ कैसे घर आंगन को भी स्वच्छ रखें। आपकी एक बात मुझे याद रही, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप जल संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं, तो आपका प्रयास क्या चल रहा है? और साथ ही साथ हमने देखा कि आपकी पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी, जल माँ, तो इस विषय में भी थोड़ा बताएं और ये जल संरक्षण के लिए प्रयास के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: ये आपने सही कहा, देखिए बरसात का टाइम है अभी, तो हमारे लिए पानी, अगर हम उसको संरक्षित करते हैं तो वो पानी जो है हमारे लिए एक बहुमूल्य वस्तु हो जाता है, और अगर हम उसको नालियों में बहा देते हैं तो पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। तो जल संरक्षण का मैं प्रयास लंबे समय से कर रही हूँ, और मेरा शुरू से प्रयास है कि जल संरक्षण एक अभियान ना हो, वो मिशन हो लोगों को जल बचाने का। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का भी चल रहा है कैच द रेन, एक मुहिम चल रही है जिसमें पानी को आप वहीं बचाइए, वर्षा जल को बचाइए। तो मेरा ये कहना है कि धरती के पानी को आप नाली में ना बहाइए, उसको धरती की झोली में डालिए। आप छत पे रेन हार्वेस्टिंग है, भूजल का संरक्षण कीजिए, संवर्धन करिए, और जहां जहां पे आप पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर छत पे कर सकते हैं या जहां पे भी कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। बरसात का टाइम है, आप पेड़ लगाइए, धरती को पानी लौटाइए जहां से आपने लिया है, और अगली पीढ़ी के लिए उसको इकट्ठा होने दीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए।
1: ममता जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और गृह लक्ष्मी कार्यक्रम से आप लाइव जुड़ी और बहुत अच्छी जानकारी दी कि बरसात के मौसम में महिला

0: अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, अपने बाल बच्चों का, अपने परिवार का, अपने आसपास के एरिया का कैसे स्वच्छता बनाए रखें, इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते आपके पसंद का एक गीत और सुनवाना चाहेंगे हम।
1: जी, जैसे हम वर्षा जल के संवर्धन के बात कर रहे थे, तो जो गागरी है आपके पास उसको जल से भरिए, तो पीतल की मुरी गागरी
0: क्या
1: एक पसंदीदा गीत है, आप
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: और यमुना वीरांगना क्रम में आज हम अपनी बहनों को बताने जा रहे हैं सुचेता कृपलानी के बारे में। सुचेता कृपलानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया और वे आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हमारी बहनें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल, और एक बात और बता दें कि आज 12 जुलाई है और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र हर साल 12 जुलाई को यह दिवस मनाता है जो बालिकाओं की शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को समर्पित है। तो ऐसी देखा जाए तो आज की जो वीरांगना है और जो हमारी पूर्व की वीरांगना है, सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ किया है, अनोखा किया है, जिनसे हमें सीख लेने की बात आती है। तो चलिए देश पर जान लुटाने की हम बात करते हैं।

0: और यमुना जो हमारी बहनें हैं वो समय के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, तो इसी तरह से डिजिटल साक्षरता अभियान में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों, खासतौर से ग्रामीण और वंचित वर्ग के लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करना है, ताकि वो आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा सकें।
1: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता जो अभियान चल रहा है इसका फायदा हमें जरूर उठाना है, आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस पर ध्यान दिलाना है। और एक बात और ध्यान दिलाना है कि जो अगला कार्यक्रम शाम को हमारा प्रसारित होगा वो होगा लोक रंजनी, ग्राम संसार और कृषि जगत। तो लोक रंजनी कार्यक्रम की बात करें तो 5:10 से लेकर के 5:30 तक आप लोकगीतों का आनंद ले सकेंगे। ग्राम संसार कार्यक्रम हमारा होगा 6:30 से 7 तक, और फिर 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुन सकेंगे कृषि जगत, जिसमें विविध खेती किसानी से संबंधित आप बात को सुन सकेंगे।
0: और यमुना, अगर हमारी बहनें हमें कुछ बताना चाहती हैं तो वो हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: बिल्कुल, और जो हमारा पता है पत्राचार का पता नोट करें, कलम उठाएं, कागज लें। कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, 9 प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 110001। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारसर
0: और संयोजक है शिव नंदन लाल।
1: तो इसी के साथ आज का हमारा गृह लक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी सुनने वालों को हमारा राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से, अपने पॉलिसी को

0: भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क, हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्रबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding his 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his 3-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his 3-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularise their status. Labour and

अपने निर्देशन से असाधारण बना देते थे। सीआईडी और कालापानी जैसी यादगार फिल्मों के बाद उन्होंने बॉम्बे का बाबू या कहिए बम्बई का बाबू में रहस्य भावनाओं और प्रेम का ऐसा संगम रचा जिसे आज भी बड़े सम्मान से याद किया जाता है। फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी राजेंद्र सिंह बेदी ने और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से एसडी बर्मन के नाम से जानते हैं। गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी ने और इन गीतों को आवाज दी मोहम्मद रफी, आशा भोसले और मुकेश जैसे महान गायकों ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म का सदाबहार नगमा जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की शानदार फिल्म का नाम है बॉम्बे का बाबू, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इससे। आपके साथ इस प्रोग्राम में बने रहिएगा। कहते हैं इंसान की किस्मत एक पल में बदल सकती है, यही इस फिल्म की कहानी है। बाबू एक ऐसा इंसान है जो परिस्थितियों का मारा है, अपराध की दुनिया में भटकता हुआ एक दिन ऐसी मजबूरी में फंस जाता है कि उसे

किसी से कह भी नहीं सकता। कहानी तब और उलझ जाती है जब उसे उसी घर की बेटी माया से प्यार हो जाता है। तो कहानी को देते हैं विराम और सुन लेते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। गाया है मोहम्मद रफी ने।

दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का सबसे भारी बोझ किसी इंसान के सर पर रखा पत्थर नहीं, बल्कि उसके दिल में छिपा हुआ एक राज होता है। बाबू भी एक ऐसे ही राज के साथ जी रहा है। जिस घर में वो मेहमान बनकर आया था, वहां अब वो बेटी की तरह अपनाया जा चुका है। जिस लड़की के लिए उसका दिल धड़कने लगा है, दुनिया उसे उसकी बहन मानती है। यही वो भावनात्मक संघर्ष है जिसने बॉम्बे का बाबू को अपने समय की सबसे अलग फिल्मों में शामिल कर दिया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए आखिरकार बाबू को एहसास हो जाता है कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। वो सच स्वीकार करने का साहस जुटाता है। परिस्थितियां करवट लेती हैं, राज खुलते हैं और किस्मत भी अपना फैसला सुनाती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये केवल रहस्य की कहानी नहीं, बल्कि जमीर, त्याग और इंसानियत की कहानी भी है। तो आइए अब सुनते हैं फिल्म का वो गीत, वो खूबसूरत गीत जिसको सुनकर आज भी हमारी आंखें भर आती हैं। इस गीत को गाया है मुकेश ने।

0: जानदार फिल्म है बॉम्बे का बाबू। तो प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अपनी दोस्त नंदा इस्सर के साथ। और आपको ये प्रोग्राम से जुड़ी, इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी हमें देनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का हमें इंतजार रहेगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए,
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। तो हमारे श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को बहुत इंतजार रह रहा है कि भाई हम उनके मेल, उनके संदेश जल्दी से शामिल करें। तो हम ये संदेश, पहला संदेश लेते हैं। ये हमें संदेश मिला है मेरठ से दिग्दर्शन गौर जी का। इन्होंने लिखा है कि आज की फिल्म और कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू लेने वाले गाने बहुत सुकून दे रहे हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो दिग्दर्शन जी आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद हमारा प्रोग्राम इतने ध्यान से सुनने के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है फागुराम यादव जी का संबलपुर कांकेर से। इन्होंने भी सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी जी का। इनको भी फिल्म की कहानी और फिल्म के गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है अनिल मोहन जी का, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। इनको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तहे दिल से आपका भी धन्यवाद। और एक और मेल हम शामिल करते हैं धर्मेंद्र छिप्पा जी का। इन्होंने भी मुंबई का बाबू या बॉम्बे का बाबू जो फिल्म आप बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और हम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठा रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम से जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद और इनके सभी सदस्यों का धन्यवाद। अगला मेल हम शामिल करते हैं फारूक अली खान जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला संदेश है संदीप मक्कर जी का, ये संदेश इन्होंने लिखा है, इनके साथ हैं ज्योति मक्कर, मन्नत और इनके परिवार के अन्य सदस्य। और अगला संदेश हम लेते हैं संदीप मक्कर जी, इनका संदेश हम पढ़ चुके हैं। एक और संदेश हम शामिल कर लेते हैं संजय धिंगिया जी का, इन्होंने लिखा है ये संदेश बागपत उत्तर प्रदेश से। इनको फिल्म मुंबई का बाबू, बॉम्बे का बाबू की गीत की पसंद आ रहे हैं और जानकारी भी इनको पसंद आ रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेल हम शामिल करना चाह रहे हैं, ये मेल हमें मिला है अजीत भवसार जी का जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप इसी तरह से अपना प्रेम हम पर दर्शाते रहिए अपने मेल के जरिए। तो आप सुन रहे थे कहानी फिल्म बॉम्बे के बाबू की। तो कहानी मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई और इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि अगर आप इस फिल्म का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप जरूर देखेंगे और इस फिल्म का भरपूर आनंद लेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की नायिका के लिए पहले मधुबाला का चयन किया गया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक न रहने के कारण वो ये फिल्म नहीं कर सकी। बाद में ये भूमिका सुचित्रा सेन को मिली और उन्होंने इसे अपनी संजीदा अदाकारी से अमर बना दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म की मूल प्रेरणा प्रसिद्ध लेखक ओ हैनरी की कहानी अ डबल डाइड रिसीवर से मानी जाती है। हालांकि फिल्म ने इसमें भारतीय पारिवारिक भावनाओं और रिश्तों की गहराई जो

छोड़कर इसे बिल्कुल अलग पहचान दी। और अब बात करते हैं देव आनंद के अभिनय के बारे में। देव आनंद इस फिल्म में सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि अपने चेहरे के भावों से बाबू की पूरी बेचैनी बयां कर देते हैं। और सुचित्रा सेन, उनकी बात अगर करें तो उनकी आंखों की मासूमियत ही उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में कम काम करने के बावजूद उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, फिल्मों का सफर सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता। कुछ फिल्में हमारी यादों में बस जाती है, कुछ गीत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और कुछ किरदार उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। बॉम्बे का बाबू भी ऐसी ही एक अमर याद है। पुरानी फिल्मों की खूबसूरती यही है कि हर बार देखने या सुनने पर वो कोई ना कोई नया एहसास दे जाती है। तो इससे पहले कि फिल्म का एक और गाना आपको सुनाएं, हम कुछ और अपने साथियों के मेल शामिल करना चाहेंगे। तो ये मेल हमें, ये संदेश हमें मिला है संतोष खड़ासे जी का। इन्होंने ये मेल हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। एक ही फिल्म प्रोग्राम में आज अपने समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म मुंबई का बाबू की स्टोरी, गीत और अनसुने फैक्ट्स पर सुंदर जानकारी दी। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। संतोष जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है, ये संदेश मिला है हमें पूनम गंगनेजा जी का। इनको भी आज की फिल्म की कहानी और गीत बहुत पसंद आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हम शामिल कर लेते हैं रोजी डे कैस्ट्रो का। ये संदेश हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से। इनके साथ हैं जॉन डी कैस्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलीस का। एक और संदेश हमें अभी अभी मिला है P.S. नावकर जी का। इनके साथ हैं निर्मला, विशाल, सोपान। इनको भी हमारी आज की फिल्म की कहानी और फिल्म के गाने पसंद आए, तो इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल हमें मिला है P.S. ये मेल हम शामिल कर चुके हैं, माफ कीजिएगा। एक और मेल हमें मिला है अभी अभी प्रकाश वर्मा जी का, छत्तीसगढ़ पराली से। इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। यदि आपको इस फिल्म से जुड़ी कोई जानकारी हमें पहुंचानी है तो हमें जरूर मेल करिए, हमें आपका मेल का इंतजार रहेगा। तो ये थी आज की फिल्म मुंबई का बाबू, और आपने इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके प्यारे गीत भी सुने। और आपको एक गीत मैं फिर से सुनाना चाहूंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गीत जरूर पसंद आएगा। और ये गीत सुनते सुनते मुझे आपके संदेश का भी बेसब्री से इंतजार है, वो संदेश भी आप हमें भेजिएगा। और अभी आप सुनते हैं ये गीत फिल्म बॉम्बे का बाबू।

0: इस गाने के साथ साथ मैं एक मेल शामिल करना चाहूंगी। नौशाद सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्य ने ये हमें मेल भेजा है।
1: ओके बहार आई हो जाने कहां, ओके बहार
2: जाने कहां।
0: इसी के साथ अपनी दोस्त नंदा इस्सर को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए, बने रहिए अपने प्यारे चैनल इंद्रप्रस्थ चैनल पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन के सफल दौरे तो बाद नवी दिल्ली परत आए ने। कर्मचारी भविख निधि संगठन EPFO ने माफी स्कीम 2026 शुरू की है। कतर के सबक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 साल की उम्र च देहांत हो गया है। अमरीका ने सवेरे ईरान से ताजा हवाई हमले किए ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सैमीफाइनल मुकाबले तय हो गए ने। फ्रांस का स्पेन नाल ते अर्जेंटीना का इंग्लैंड नाल मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन के सफल दौरे तो बाद नवी दिल्ली परत आए ने। तीन देशों के दौरे के पहले पड़ाव च श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के सद्दे ते इस महीने की 6 तो 8 तरीक तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरे दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति नाल दुवल्ली गलबात की, दुवल्ली भाईवाली की प्रगति की समीक्षा की। अपने दौरे के दूजे पड़ाव लई प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न का दौरा किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनिस नाल तीजे भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम भी शिरकत की, जिथे उन्होंने दोहां देशों के चोटी के कारोबारी आगुआ के इकट्ठ नूं संबोधन किया। दौरे के तीजे ते आखिरी पड़ाव च प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के सद्दे ते 10 तों 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला एलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत

0: ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तशवीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुज़ाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया, जिसके दौरान वज़ीरे आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीरे आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीरे आज़म के साथ 30वीं भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीरे आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे, जहां दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना तक करने का हदफ मुकर्रर किया। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: बीजेपी ने कहा है कि भारत बहर हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि क्लीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संगे मील करार दिया। उन्होंने वज़ीरे आज़म के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काहिल क्लीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में ताउन, तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप्स अपनाएं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मोशी के कूड़े करकट के डिपो के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। आज बचाव कार्रवाई के 4थे दिन 7 और अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक शख्स अब भी कूड़े कचरे के ढेर के नीचे फंसा हुआ है और तलाश की कोशिशें जारी हैं। यह हादसा इस महीने की 8 तारीख को उस वक्त पेश आया था जब पुणे जिले में मोशी के मुकाम पर कूड़े कचरे का एक बड़ा टीला फाजिल मादों और कचरे वगैरह से तवानाई बनाने के प्रोजेक्ट की इंतजामी इमारत पर ढह गया था और 23 अफराद फंस कर रह गए थे। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को

0: relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of Provident Fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Ferry. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता

0: निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे EPFO के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: EPFO की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर EPFO की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त PF ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है।

0: कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
2: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
4: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के

0: पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, आ गए हैं हम लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार का नमस्कार।

रहे हैं और इस गाने के डायरेक्टर यानी निर्देशक बिमल रॉय साहब आज के हमारे कलाकार हैं। बिमल राय साहब के बारे में बहुत सी सुनी अनसुनी कही और अनकही बातें आपको बताएंगे और इस कार्यक्रम के जरिए उनकी फिल्मों के सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स भी सुनवाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, बिमल रॉय साहब एक जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक थे। वे विशेष तौर पर अपनी यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में दो बीघा जमीन, परिणीता, देवदास, मधुमति, सुजाता, परख और बंदनी जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं और वे नव यथार्थवादी सिनेमा से प्रेरित होकर ही उन्होंने दो बीघा जमीन बनाई थी। और उनकी अगर निजी जीवन की बात करें तो उनका जन्म 12 जुलाई 1909 को ढाका जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश में है, वहां पर हुआ था। और आज हम एक कलाकार में इस कार्यक्रम में उनके बारे में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई 1909 को ही उनका जन्म ढाका में हुआ था। और उन्होंने बंगाली और हिंदी में कई फिल्मों का निर्माण किया और 1936 में उन्होंने मनोबीना रॉय के साथ विवाह किया और उनकी बेटी रिंकी का विवाह जाने माने फिल्म निर्देशक बसु भट्टाचार्य के साथ हुआ था। और भी इनके बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गाना स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में आपको सुनाते हैं।

बिमल राय साहब का सिनेमाई सफर भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक क्रांतिकारी अध्याय है। उनका ये फिल्मी सफर सिर्फ फिल्में बनाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने सिनेमा को समाज का आईना और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बनाया। और उनकी शुरुआत कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम।

बिमल राय साहब ने अपने करियर की शुरुआत न्यू थिएटर्स कलकत्ता में एक कैमरामैन के रूप में किया था, और अगर बात करें कि डायरेक्टर के रूप में उन्होंने पहला कदम कब रखा, तो वो साल था 1944 जब उन्होंने पहली बार एक बंगाली फिल्म उदयेर पाथे से अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की।

दोस्तों, बिमल राय साहब 1950 में कलकत्ता से बॉम्बे आ गए, और वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ अपने दोस्तों को, और एक तरीके से कह लें कि जो उनकी टीम थी उन टीम के मेंबर्स को भी अपने साथ लाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी टीम में कौन कौन था। उनकी टीम में थे ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, आसित सेन और कमल बोस। और पहली बार उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए हिंदी फिल्म 1952 में आई थी माँ, उसका उन्होंने निर्देशन किया। और इसके बाद तो उन्होंने अपने ही प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर दी और उसका नाम रखा बिमल रॉय प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल ईशान और पूजा परिहार का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है, सर बहुत बहुत नमस्कार, आज आप जाने माने निर्माता निर्देशक बिमल रॉय के बारे में बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे नगमे भी सुनवा रहे हैं। हमें आपके कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण का अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश आया है हमारे ये रेगुलर लिसनर यानी नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लग रहा है और बिमल रॉय साहब की फिल्में तो उन्हें बहुत प्रेरित करती हैं। जी हाँ, हम सबको प्रेरणा देती हैं बिमल रॉय साहब की फिल्में।

0: दोस्तों, बिमल रॉय साहब की बात हो और उनकी यूं तो बहुत सारी फिल्में हैं, सुजाता है, बंदनी है, लेकिन एक फिल्म ऐसी है जो मील का पत्थर साबित हुई है उनके करियर में और हम जैसे, हमारे श्रोताओं के जैसे फिल्म देखने वालों की नज़र में। जी हाँ, वो फिल्म है 2 बीघा जमीन। और सही अर्थों में देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में पैरेलल सिनेमा यानी समानांतर सिनेमा की नींव इसी फिल्म के बाद रखी गई। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से एक साधारण किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करता है। ये बेहद ही मार्मिक कहानी है और इस फिल्म को कान फिल्म समारोह में इंटरनेशनल अवार्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी हैं बाकी बिमल रॉय साहब के बारे में, जो हम आपको अपने इस कार्यक्रम एक ही कलाकार में आगे बताएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी हमारे इस कार्यक्रम को सुनना मत भूलिएगा।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ, और आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक बिमल रॉय साहब। तो दोस्तों, इस ब्रेक के पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से उनकी फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जी हाँ, इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल अवार्ड मिला, और ये फिल्म न सिर्फ किसानों को और कृषि को समर्पित थी, बल्कि बहुत सारे अभिनेताओं ने इसके लिए फिल्म की एक धर्म पुस्तक का नाम दिया था। और आपको जानकर शायद ही हैरानी हो या ना हो, या हो सकता है आपको ये बात पता हो या फिर ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राज कपूर साहब ने इस फिल्म को देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह की फिल्म कभी नहीं बना सकते हैं, और अगले 1000 सालों में भी अगर भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची बनेगी तो उसमें 2 बीघा जमीन फिल्म जरूर साबित होगी। तो दोस्तों, आपने देखा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ऐसी फिल्म थी जिसको इंटरनेशनल कॉन्स फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि इसके अलावा 11 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिले थे। और अगर कुछ और फिल्मों की बात करें तो बिमल रॉय साहब की परिणीता, विराज बहू, मधुमती, सुजाता, देवदास और बंदनी जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको राष्ट्रगान बनने से बहुत पहले ही बिमल रॉय साहब ने अपनी फिल्म उदार पाथी और हमराही में प्रयोग किया था।

दोस्तों, इसी बीच आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास लगातार आ रहे हैं और ये एक मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी वीना और चंडीगढ़ से राहुल रचित केशु रिधान खुराना का। और इन्होंने लिखा है कि अरुणेश जी, सादर नमस्कार, हम आपके साथ आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बिमल रॉय साहब के बारे में आप बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और अभी जो आपने गाना सुनवाया ये मेरा दीवानापन है, ये हमें बेहद पसंद आया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास लगातार आ रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि एक एक करके आपके सारे संदेश को जल्दी से ले लें कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी सीमित है और अभी बिमल रॉय साहब के बारे में तो बहुत कुछ बताना है। उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं, उनकी फिल्मों के गाने हैं और उनसे जुड़ी कहानियां हैं। दरअसल बिमल राय साहब बंगाली, हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं में उन्होंने सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई फिल्में बनाई हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं बिमल राय साहब की ही एक फिल्म से, और इस गाने को आवाज दी है आशा भोसले जी ने।

और आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का एक संदेश आया है। इसके अलावा नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और एक और संदेश आया है, जल्दी से ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, और आगे भी आपके कुछ संदेश लेने की हम कोशिश करेंगे।

दोस्तों, बिमल दास साहब ने सुनील दत्त और नूतन को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सुजाता। और ये फिल्म सुबोध घोष की बंगाली लघु कथा पर आधारित थी। और इस फिल्म के लिए 5वीं बार बिमल दास को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और इसके बाद बिमल दास साहब ने अपने जीवन की शायद पहली और आखिरी हल्के मूड वाली एक व्यंग्यात्मक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था परख। इस फिल्म में साधना और मोतीलाल जी मुख्य भूमिकाओं में थे। और अगर आपने ये फिल्म देखी है, और अगर नहीं भी देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म हमारे लोकतंत्र पर किस तरह से कटाक्ष करती है ये बताती है। और ये फिल्म भी अपने जमाने में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेम पत्र नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें शशि कपूर और साधना मुख्य किरदारों पर उनको देखा गया। और इसके अलावा बंदनी बंदनी फिल्म का जिक्र भी करना बेहद जरूरी है। और इस फिल्म में उन्होंने धर्मेंद्र साहब को मौका दिया था और लीड रोल में थे अशोक कुमार के साथ नूतन। और ये फिल्म भी 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी। और यहीं से धर्मेंद्र साहब स्टार बनकर उभरे थे। इसके अलावा महान गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार साहब की नींव भी इसी फिल्म के गाने मोरा गोरा अंग लैले से पड़ी थी। तो कहा जाए तो बिमल राय साहब ने सिर्फ

बेहतरीन फिल्में ही नहीं बनाई बल्कि उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से बेहद और कई प्रतिभाशाली कलाकारों को ब्रेक भी दिया, यानी मंच भी दिया। फिल्म बंदनी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है कि इसके जरिए गुलजार साहब, जिनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और इसी फिल्म के जरिए बतौर गीतकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं।

दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर किसी न किसी मोड़ पर आपसे इसी चैनल में होगी मुलाकात। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रसारण चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी प्यारे भैया बहन अनकू चंपा बहन
1: और श्रुतिपुरी की
0: राधे राधे। बहन श्रुति देखो या वक्त तो ब्रज धरा की वानगी देखते ही बन रही है।
1: सही कह रही हो। और या समय तो देखो कैसे कैसे मेलान की तैयारी है रही है।
0: अरे मेलान की जो ब्रज को ऐतिहासिक लक्खी मेलो है, मुड़िया पूनो को मेलो, बाकी तैयारी तो, ब्रज में चल रही है।
1: वही तो कह रही हूँ। और ये सब विश्व प्रसिद्ध मेला है।
0: हाँ तो बहन श्रुति विश्व प्रसिद्ध हो भी क्यों ना, देखो देश विदेश के श्रद्धालु भक्तगण और पर्यटक सब यहाँ मेले में आए रहे हैं। बहन श्रुति देखो ये जो हमारे गोवर्धन को मुड़िया पूनो को मेलो आ रो है ना, तो यहाँ में जो मुख्य बात है वो ये है कि पूरी गिरिराज बाबा की सात को उसकी परिक्रमाएं, और अगर हम बाई गिने तो गिनती में हूँ 21 किलोमीटर है ना। तो बाकी पूरी परिक्रमा लगवे वारी है।
1: हाँ चंपा बहन, और यह मुड़िया पूनो के मेला में श्रद्धालु पर्यटक दर्शनार्थी परिक्रमार्थी ये सब आए रहे हैं, और इनकी सुविधान के ताई उनकी हर चीज इनको उपलब्ध हो या के ताई प्रशासन पूरी तरीका से कटिबद्ध है।
0: बहन श्रुति 23 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ये पूरो मेलो चल वेवारो है, और हम अपने भैया वेनांती कह रहे हैं कि भैया वेनाओं हमारे आज या कार्यक्रम में आप सुन के तो आप जरूर ब्रजमाऊ आओगे, और आप ना आ रहे होगे तो

0: अब एक मन बनाओगे तो बहन श्रुति देखो, या मेले के काज है ना, जो इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु और भक्त ब्रज आएंगे, तो मेले को 900 पर जोन और 21 जोन में बांटो गए हो।
1: अच्छा, और बहन चंपा तुम्हें बताए दे मैं कि 62 सेक्टर में बांटो गए हो। सुरक्षा व्यवस्था में 9,000 तेउ ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं निगरानी के काजे।
0: और बहन श्रुति, जो 183 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और 31 तो वॉच टावर बनाए गए, जिनते पल पल की हर जगह की चप्पे चप्पे की खबर रहेगी।
1: और जो परिवहन विभाग है ना, वो भारी संख्या में आवागमन को देखते हुए वहां में 1100 रोडवेज की बसें, 61 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। और बहन चंपा तुम जानो हो कि हमारी ब्रजधरा में तो संकरी गली बहुत है।
0: हाँ।
1: और इन संकरी गलीन को देखते हुए, हमारी भौगोलिक बनावट को देखते हुए, पहली बार ब्रज में 5 मोटरसाइकिल स्वास्थ्य सेवान को भी तैनात किए गए है।
0: और जीजी, जब कोई आएगो, गर्मी पड़ रही है तो प्यास लगेगी, तो पेयजल की व्यवस्था के काजे भी 17 आरओ प्लांट लगाए गए और 30 टैंकरन की जो व्यवस्था है वो करी गई है। तो जब हमारे श्रद्धालु और भक्तन के काजे ब्रज में इतनो व्यापक इंतजाम हो रहा है सुरक्षा को, उनकी सेहत को, उनके स्वास्थ्य को, तो हम तो अपने भैया बहनानते यही कह में कि आप गोवर्धन गिरिराज जी जरूर पधारो या लक्खी मेले में।
1: देखो चंपा बहन, ब्रजवासी को तो स्वभाव ही है, ब्रजवासी आव भगत में सबसे आगे रहे में, फिर चाहे वो ब्रजवासी हुए, चाहे प्रशासन हुए, वहाँ के व्यवस्थापक हैं, वो सब मुस्तैद रहे में।
0: तो बहन श्रुति, यही के काजे तो गिरिराज गोवर्धन को कहो गयो है, नखपे धर के गिरिराज नाम गोवर्धन पायो है।

0: छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज।
1: प्यारी भैया बहनाओं अभी आप ये भक्ति रचना सुन रहे हते।
2: देखो चंपा बहन ब्रज में या समय एक और तैयारी चल रही है।
1: कौन सी?
2: सावन आए हुए बारो है, भूल गई का?
1: तो हाँ बहन, जब मुड़िया पूनो हो जाएगी तो सावन लग जाएगा।
2: आषाढ़ जाते ही सावन आएगा।
1: हाँ।
2: और सावन के आते ही जो ब्रज की बानगी देखते बने है बाको बखान ही ना है सके है।
1: तो आप बखान करो मत बहन, कछु और ही अच्छी रोचक जानकारी हमारे भैया बहनान को दवाए दो। आप और हमें तो श्रोता भैया सुनते ही रहे।
2: हाँ सही बात है, तो बताए दो कहाँ सुनवाई जा रही हो आज?
1: देखो अब आपने सावन की बात कर दी है, तो सावन की बात तो ब्रज में बिना मल्हारन के बने ना आए हैं, तो ऐसे ही कार्यक्रम की ओर अपने भैया बहनान को ले चले।
2: हाँ तो ले चलो।
1: तो आओ प्यारे भैया बहनाओं, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये भेंट वार्ता जाको विषय है ब्रज के सावन लोक गीत और महिलाएं। या विषय पे डॉक्टर सीमा मोरवाल जी ते बातचीत कर रही है हमारी श्रुति बहन।
2: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा मोरवाल जी, हम आपको हार्दिक अभिनंदन करे हैं। क्योंकि ब्रज में सावन की परंपरा अनूठी परंपरा है और सावन आए वे वारो है। जैसे जैसे ऋतु बदले हैं, चौमासों लगते ही तो कहवे हैं 33 करोड़ देवी देवता ब्रज में वास करे हैं और सावन की तो अलग ही महिमा है। सावन को भक्ति साहित्य, श्रृंगार साहित्य, लोक गीतन को माधुर्य और देवालयन की छटा, ये सब मिलकर एक अलग सौंदर्य एकत्र करे हैं ब्रज धरा में। ब्रज में सावन में ऐसा कहा विशेष है, ऐसी कहा स्वर लहरी बहे है ब्रज वसुंधरा में कि जन जन आकर्षित हुए है ब्रज की ताई।
1: पहले तो श्रुति बहन जी सभी श्रोतान को सादर राधे राधे। जो ब्रज के गीत हुए तो वो जो सावन के गीत कहो करें, बिना मल्हार कहो करें, हिंडोला कहो करें, तो मल्हार मतलब मन के विषाद को हरण करवे वाली जो गीत है सावन के, बिन में बहन अपने भैयन के काजे, अपने पीहर के काजे, जो भी उनके मन में ससुराल ते लेके दुख विषाद हो करे, तो वो उन सब की वार्ता वहां में गीतन में कहो करे हैं। कहवे ते उनके मन को जो मलिनता है वो समाप्त है जावे, वो गीत मल्हार कहे जाए।
2: सीमा जी जैसे कहवे हैं कि लोक गीत लोक अभिव्यक्ति को माध्यम है, लोक के मन में जो भाव हुए हैं वो लोक गीतन के माध्यम ते जाहिर हुए हैं। अब देखो जैसे कि सावन जब आवे है तो जब वो रिमझिम फुहार पड़वे लगे है तो ब्रज में कौन सा ऐसा लोक गीत है जो गायो जाए है?
1: अरे अब तो देखियो कैसे कैसे झूला डरेंगे, तैयारी तो है रही है ना डरवे की। हाँ। काम में चले जाओ, कैसे कैसे झूला डर रही है और रेशम लेके ऐसी बहन बेटी इकट्ठी है रही है, पींगे चल रही है झूलान की,
2: तो कछुए गाय के सुनाए दो।
1: अरे

0: बहुत सुंदर। और जैसे आपने बात करी ना कि ब्रज में ऐसी परंपरा है कि सावन में सिंधारा तो जाए है, पर जो सौभाग्यवती स्त्री हो वे है वो ससुराल ते पीहर आवे है और भैया वाकु लेवे जावे है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो बाकी निमित्त तुहु कछु लोकगीत गाए जावे है?
1: हाँ हाँ निरे लोकगीत है भाई। सावन के लोकगीतन में तो मनुहारी बहन और भैया की ओवे।

0: सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा कहो जाए है कि जब रिमझिम फुहार पड़े है तो ऐसे में किसान को मन बहुत ही प्रमुदित है जावे है,
1: बिल्कुल
0: और किसान के मुख सो स्वतः ही लोकगीत फूट पड़े हैं। तो ब्रज में ऐसे कौन कौन से गीत हैं, जैसे कृषक की पत्नियों कछु शिकायत कर रही होए, या कछु ऐसा कोई लोकगीत
1: हाँ
0: आपके
1: हाँ
0: स्मृति में आए
1: अरे
0: हैं?
1: मेरे गीत, और ये गीत तो बहुत ही गायो जाए बहना मेरी।
0: अच्छा सुनाओ।
1: छप्पर

0: ब्रज में सावन आवे और देवालयन में हिंडोले ना पड़े और फूलन के बंगला ना सजे, ऐसो हो ही ना सके। और कृष्ण राधा की तो अनेकानेक ऐसी लीलाएं हैं जो सावन में ही भई हैं, तो इनके बारे में भी कछु चर्चा करो हमारे श्रोतान के ताई।
1: भाई ब्रज की संस्कृति तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है। और जब वहाँ पे मंदिरन में ऐसे सुंदर सुंदर स्वर्ण हिंडोला डले, हमारे बिहारी जी के स्वर्ण हिंडोला डले, तो घर बस बहन बेटी वहाँ पे बैठी बैठी उनके दर्शन करके गायो करें।
0: हिंडोला की परंपरा का है, मतलब कहा राधा कृष्ण के विग्रह को झूला में सजाया जाए है।
1: हाँ, प्रत्येक मंदिर की एक रीति हो गए, जैसे बिहारी जी में एक ही दिना झूला परो करे हरियाली तीज को, पर वैसे और जितने भी संप्रदाय के मंदिर हैं वहां में सावन लगती झूला पड़ जाए, तो जो राधा कृष्ण के काज है जो झूला ढारो जाए वो हिंडोरा कहो जाए। वहां में संबंधित जो वहां के संतन ने जो पदावली लिखी है वो हिंडोल राग में वो गाय।

0: कहवे हैं कि जो महादेव है ना वो ब्रज भूमि के कोतवाल हैं, और सावन में जो शिवजी के देवालय हैं बिनमें कैसो सजावट हुए करे, कैसे कैसे बंगले बने करे हैं, वाके बारे में कछु बताओ।
1: असल में सावन शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, और ब्रज की संस्कृति में शिव जो है आदि देव के रूप में पूजे जाए हैं, क्योंकि हमारा ब्रज जो है वो वनवासीन को ब्रज है। वहां पे 12 वन और 24 उपवन है, तो वहां की संस्कृति जो वनवासी है तो वो वनवासी संस्कृति के आदि देव शंकर जी भयो करे हैं। तो वहां में सावन के शंकर जी के बड़े बड़े बंगला सजाए जाएं, वहां पे सुंदर सुंदर गीत गायो करें, और वहां पे तो ऐसी ऐसी बैठकी लगे, कजरी गायो करें, चैती गायो करें, भाई बराबर के
0: समाज
1: कीर्तन
0: गायन में
1: की
0: वो तो
1: सब बैठक
0: गायन।
1: लगे। अरे आप, मैं एक छोटी सी वानगी सुनाऊं।

0: हाय।
1: आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी। राधा कृष्ण के जितने भी देवालय हैं बिनमेओ तो घटा पड़ाव करे हैं, और वो घटा कहा, घटा का मतलब कहा है, वो कहा सजावट हुए है देवालय में, कैसा श्रृंगार हुए है, वाके बारे में बताओ।
0: घटा सजवे की जो परंपरा है वो हमारे द्वारकाधीश के मंदिर में है, जो बल्लभ कुल संप्रदाय के जो मंदिर भयो करें वहां पे कृष्ण की मनोहारी छटान को, छटा माने कि काउदिना पूरा जो भी कछु सजेगा वो

0: बानगी कछु आप हमें बताओ।
1: असल में ब्रज में जो लोक गीत हैं, विशेषकर सामन के लोक गीत हैं और भी जो भी लोक गीत हैं, उनमें अंतर राज्य अंतर जनपदीय गीत भी यात्रा करके हमारे यहाँ संस्कृति में स्वीकार करे गए हैं। अब ये जो मनरा गीत है जो ठाकुर जी को भी समर्पित है, ठाकुर जी का कहे मैं कहूं जो हमारा अति प्रिय है, तो अब ये अंतर जनपदीय गीत है जे राजस्थान की यात्रा करके आयो बंजारिन के माध्यम से, तो ये गीत वहां को है क्योंकि यहां में जो शब्द प्रयोग करे गए हैं वो राजस्थान के शब्द है।

0: का। बहुत सी कथाएं हैं, जैसे चंद्रावल की कथा है, जैसे ढोला मारू है, ये वो सावन से संबंध रखे हैं, तो इनके बारे में हूँ कछु हमारे श्रोताओं को
1: हाँ,
0: बताओ।
1: लोक के संसार में जो देखो वो दिमाग में रखो और बिनकु सुर दियो। संगीतकार भी ना होते जो अंतरात्मा बोलती, या हमारे कहीं को भी लोकगीत होवे वो हृदय को छुवे वारो होवे। अब जैसे हमारे यहाँ निहाल दे चंद्रावली गवे, अब वो निहाल दे और चंद्रावल इतनी ऐतिहासिक कथानक है। सिकंदर लोदी जब दिल्ली की जो वनमार्ग बनवारो का हो, वहां पे पनघट पड़ो कर दी, पनघट गांव ते भार भयो कर दी, तो गांव की वैयरवानी सुंदर सुंदर छोरी पनघट पे पानी भर भी आती। अब वो मुगल और पठान के जो छोरा, उनकी तो नजर धरी रहती उनपे, तो अब उठा के वो ले गयो। तो वह निहाल दे ने माते न्यो कही कि भाई मोई छुड़वा लो मैया बाप ते कर। चील, ये देखो प्रतीक कैसे सुंदर सुंदर, कि उनने चील के माध्यम ते मैया बाप भैया ते पति ते जे बात कहलवाई कि मोई जा
0: संदेश
1: मुगल और
0: भिजवाया।
1: तो रख के छुराए मोई छुड़वा दो। लेकिन भैया बाप फौजते को लड़े, आप जे देखो कि बात समय स्त्री की कितनी बड़ी वेदनाई, तब भी जब मैया बाप ने पति ने हाथ अपने छोड़ दिए कि हम कछु ना कर सके तो गांव को विध्वंस कर जाएंगे, तब ऐसे में बाने कही आप बिल्कुल भी ने को चिंता मत करो, राखूंगी पागड़ी की लाज। और पति से कहती है राखूंगी तेरे फेरान की लाज। अब बने मुगल पठान के छोरा ते कही अरे छोरा मेरो बदन मलिन है गोए, तो मैं गर्म पानी ते नहाऊंगी, तो तू मेरे काजे नेक से अंगार लिया। तब वो अंगार लेके आवे, तब माने अपने तंबू में आग लगाई, तो हाड़ जरे जैसे बांस और केस जरे जैसे घास। उनने अपना अपने आप को जौहर कर लिया एक तरीके से, लेकिन अपनी इज्जत जो है वो बचा ली उन्होंने।
0: अस्मत बचाई ली। अब सावन को संबंध श्रृंगार तेहु है और वियोग तेहु है, तो अगर हम श्रृंगार के मल्हार की बात करें और विरह के मल्हार की बात करें, जैसे एक तो गीत बड़ो ही मधुर है और हर बार सावन में गायो जाए है, सावन आयो सुघड़ सुहावनो
1: हाँ।
0: जी।

0: जी, इन गीतन में हमेशा पीहर की याद, कौन सी याद मिलेंगी, पिया गए परदेश,
1: परदेश हाँ।
0: तो वो जो रिम जिम बारिश होवे बामे पति की याद करके।
1: एक और मुकु मल्हार याद आए रहे हो है विनय को, कोश में होए तो हाँ, हमें हाँ। गा के सुनाओ।
0: अरे
1: एक वो है जबते गए हैं मोहन छोड़ के,
0: कृष्ण के तो अनगिनत मिलेंगे, और आप सबसे बड़ी अचरज की बात ये कि राम ते भी जुड़े भाई सामन में गीत गाए जाए हैं हमारे यहाँ। तो देखो विनय की मल्हार की मैं बात करूं तो जा में देखो इतना सुंदर कथानक है राम जी को, कि जब राम जी ये वनवास दे दियो गयो तो कैसे बैयरवानी गा रही है। अरे

0: गई।
1: ब्रज की कुंज गलीन में एक अलग ही माहौल हुए है सावन को। जो दुकानें हैं, बाजार हैं, वो घेवर फैनी और जलेबी ते सज जावे हैं, चूड़ी ते सज जावे हैं और तरह तरह के श्रृंगार के सामान हु मिलो करे हैं। तो सावन में ब्रज की कहा आम जनमानस में प्रथा है, वहाँ के बारे में बात करके हम यह भेंट वार्ता को समापन करेंगे।
0: सावन आते ही सबरी तो तैयार रह जाए कि पीहर जानो है, और जो पीहर ना जा पाए वो हरियाली तीज की तैयारी करें, क्योंकि नंद आमे घर में हुआ में बहन बेटी तो उनके काजे पूरी उनको उपहार देनो है, उनको मेहंदी लगवानी है, और क्योंकि गौरा की पूजा विशेष रूप से हरियाली तीज के दिन करी जाए है, क्योंकि सावन शंकर जी को प्रिय है और शिव और पार्वती के प्रेम को ही ये त्योहार हो गए है कायदे से। तो सब जगह सुंदरता के वातावरण में तो मिल के सबरी गावे बन के।

0: तो सीमा जी, आपने तो आज यहाँ पे ब्रज जीवंत कर दियो, और सावन में ब्रज की परंपरा जो हमारे श्रोतान को आज पता चली है, तो वो तो जरूर ते ब्रज भ्रमण करवे को कार्यक्रम बनावेंगे ही, और हम सभी इनको स्वागत करेंगे या समय ब्रज में। इतनी अच्छी आपने जानकारी हमारे श्रोतान ते साझा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत स्वागत। प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे हते, जाको विषय हो ब्रज के सावन लोकगीत और महिलाएं, या विषय पर डॉक्टर सीमा मोरवाल जी ते बातचीत कर रही हती हमारी श्रुति बहन। तो बहन श्रुति, देखो आपने कितनी रोचक चर्चा करी है सीमा जी ते, तो हम तो या के काजे आपके बड़े आभारी हैं। आपने सावन की जो आहट हो रही है, जो मल्हारन की दस्तक अब होने वाली है, या रिमझिम फुआरन के बीच, आपने ना बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर चर्चा सीमा जी ते करी
0: और
1: है।
0: कितने प्यारे प्यारे लोकगीत भी सुनवाए बिनते।
1: जैसा कह मैं ना कोई बात को चार चांद लगवो, तो आपने तो ये सावन की मल्हारन को, आए बेवारी रिमझिम फुआरन को चार चांद लगाई दिए। तो हम तो आपसे यही निवेदन करे हैं कि कोई भी विषय हो, कोई भी संस्कृति की बात हो, हमारे भैया बहनानते ऐसे ही बात कर ले करो, कभी उनकी सुन ले करो, कभी अपनी सुना दे करो।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो। और देखो, अब एक बात और रह गई। हम अभी तो बात कर रहे हैं के लोकगीतन की, वानगी की,
1: जी
0: ब्रज में हुए व्यवहार मेलान की।
1: जी
0: एक और मेला या समय जगन्नाथपुरी में हुए व्यवहार हो, जानती हो कौन सा है?
1: अरे बहन, जगन्नाथपुरी में ना आप जा मेला की कह रही हो, वो मेला तो पूरे भारतवर्ष की भूभाग में बड़े हर्षोल्लास से मनाया
0: आप तो दिल की
1: जाएगा।
0: पढ़े ले हो
1: अरे
0: चंपा बहन,
1: बहन,
0: आप जितनी जल्दी दिल की पढ़ो ना, इतनी जल्दी तो कोई ना पढ़े।
1: बहन श्रुति, ये बात तो देखो आत्मीयता की बात है, और ये होनी भी चाहिए। इनके
0: सही
1: बिना
0: बात है।
1: बताओ का है, हमारी ब्रज धरा ने हमको यही तो सिखाए हुए है। तो देखो आप जो जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रही हो ना, तो हम अपने श्रोता भैया बहनान को बता में कि हमारे वृंदावन में केसी घाट पे भी जगन्नाथ जी को बड़ो मंदिर है, और वहां भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। और देखो आप तो एक बात हम अपने मन की कहें कि जैसे हमारे ब्रज में जब हम छोटे छोटे से अपने मम्मी पापा के यहाँ तो रथ यात्रा निकली, तो हमें ना बड़ो चाव रहे तो कि यहाँ में भीगी कोमरी मिलेंगी।

0: भीगे भाई मूंग मिलेंगे,
1: सही
0: आम
1: बात है,
0: मिलेंगे,
1: आम।
0: जामुन मिलेंगे, और या मैं कहा हो कि जो भी मौसमी फल होया करे ना, ऋतु फल।
1: ऋतु फल होया करे,
0: हाँ
1: और वो तो बटे ही बटे हैं प्रसाद में।
0: हाँ तो आपने कितने आम लूटे रथ यात्रा में?
1: अरे हमने तो फल से लूटे, जामुन लूटे, शहतूत लूटे खूब खूब,
0: और आम
1: और आम
0: लूटे।
1: लूटे।
0: श्रुति बहन देखो 16 जुलाई आ रही है कल परसों, तो कोई झोरा झोरी तैयार कर लियो, आपो चलियो और हम संग ले चलियो।
1: अरे इतना बड़ा झोला तैयार करूंगी, तुम देखती रह जाओगी। पर एक बात बताऊं, पूरी नगर की यात्रा करेंगे रथ यात्रा के संग।
0: क्योंकि हम एक बात और बता दें मैं श्रुति अपने भैया बहनान को, कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा को महोत्सव है ना हमारी ब्रज धरा वृंदावन में, वहां पे तो यार महोत्सव कोई नाम है, आम लूट परंपरा।
1: तो इनको भी आमंत्रित कर दो ना, श्रोतान को भी।
0: हाँ तो प्यारी भैया बहनाओ देखो श्रुति बहन ने कह दई है, तो श्रुति बहनों जा रही हैं, इनके संग हम झोला लेके जा रहे हैं, क्योंकि रथ यात्रा में आम ना लूटो तो फिर कहाँ लूटो। तो
1: सही कह
0: प्यारे
1: रही
0: भैया
1: हो।
0: बहनाओ आप अपने परिजनन के संग और इष्ट मित्रन के संग आम लूट वेकू जगन्नाथ रथ यात्रा में वृंदावन जरूर पधारियो।
1: आपको स्वागत हम करेंगे।
0: हाँ तो प्यारे भैया बहनाओ इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मोय यानी श्रुति बुरी को देव अनुमति।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: बीके।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती
1: और ये समय है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और इसी खुशी को दुगना करने आए हैं आज हमारे साथ
2: रेडियो किड्स।
0: चलिए जानते हैं इन रेडियो किड्स के नाम।
3: मेरा नाम वंशिका है और मैं कक्षा छठी में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम दर्शिता है, मैं कक्षा थर्ड में हूँ।
5: मेरा नाम मोक्ष है, मैं कक्षा फोर्थ में हूँ।
1: आप सब कैसे हो?
6: हम सब ठीक है।
1: अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई और स्कूल भी खुल गए हैं। खुल गए हैं ना सबके स्कूल?
4: यस। हाँ हाँ जी दीदी, हमारे स्कूल खुल चुके हैं
1: और अब तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। लेकिन सबके कुछ ना कुछ शौक होते हैं ना। तो चलो बताओ अपना अपना एक एक शौक। एक एक क्या, बहुत सारे शौक बताओ।
4: मेरा शौक तो चित्र बनाना, डांस करना और गाने गाने में है।
1: दर्शिता तुम भी बताओ।
7: मेरे शौक ये है कि मुझे स्विमिंग करना पसंद है, डांस करना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है और हाइड एंड सीक खेलने में पसंद है।
1: और मोक्ष तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बता दो।
5: मेरे को रनिंग करना पसंद है, हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है।
4: दीदी मुझे तो स्विमिंग में ड्राइव मारनी भी आती है।
0: अब आप सब बताओ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पूरे करना क्यों जरूरी है?
4: पढ़ाई के साथ शौक भी बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते करते बोर भी जाते तो शौक भी तो बहुत जरूरी होते हैं।
3: दीदी।
0: हाँ वंशिका।
3: ज्यादा देर पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है तो हमें

0: ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे बाहर जाके खेलना चाहिए। उससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और फिर हम और भी ज्यादा फोकस्ड पढ़ाई कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम जल्दी चीजें याद कर सकते हैं।
1: पंचिका ने तो बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है मोक्ष, ऐसा करना चाहिए?
2: हाँ दीदी, ऐसा करना चाहिए।
1: अच्छा, और खेलना और भी चीजों के लिए जरूरी है?
0: दीदी, हमारी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें खेलना जरूरी है।
1: हाँ, जब खेलेंगे तो क्या होंगे, हम फिजिकली
2: स्ट्रांग हो जाएंगे।
1: अरे दक्षिता को तो बहुत कुछ पता है।
2: मैं एक पोयम बोलना चाहती हूँ।
1: हाँ दक्षिता सुनाओ।
2: हे जगपालक हे भगवान, सबको दो सच्चा शिव ज्ञान, हाथ जोड़ कर करे प्रणाम, करे तुम्हारा ही गुणगान, कभी किसी से झूठ न बोले, पहले सोचे फिर मुंह खोले, अपनी मीठी भाषा से हम कानों में भी रस घोले, दीन दुखी की मदद करे दिन, दो सबको ऐसा वरदान। थैंक यू।
1: अरे वाह दक्षिता, तुमने तो बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई। अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा बताओ फिर कौन सा सुनोगी?
2: लकड़ी की काठी।

0: अच्छा, गीत कैसा लगा आप सबको?
1: बहुत ही अच्छा।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वंशिका बताओ, क्या पूछना चाहती हो तुम या क्या बताना चाहती हो तुम?
1: मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर अचानक से हमारे सामने वाला बड़ा सा आम का पेड़ बोलने लग जाए तो हम उनसे क्या बातें करेंगे, और क्या तुम लोग भी उनसे बातें करना चाहते हो?
2: हाँ हाँ, बातें तो करेगी, लेकिन क्या बातें करेंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: अरे मोक्ष, कोई एकदम पेड़ बोलने लग जाएगा, तुम डरोगे नहीं?
2: नहीं दीदी, मैं नहीं डरूंगा।
0: वाह, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो।
2: अगर पेड़ बोलते और अगर हमें सुनते तो मैं उन्हें धन्यवाद देता, कहता शुक्रिया पेड़ भाई, जो तुम हमें साफ हवा और छाया देते हो और फल देते हो और हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, माफ़ी मांगता, सॉरी हम इंसानों ने तुम्हें काट कर घर बनाए, फैक्ट्री लगाई, अब हम गलती सुधारेंगे, हाल चाल पूछता, गर्मी में पानी मिल रहा है, कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, वादा करता आज से मैं हर साल कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और दूसरों से भी लगवाऊंगा, उनकी कहानी सुनता, तुमने कितने मौसम देखे, कितने बच्चों को झूला झुलाया, बताओ ना पेड़ दादा।
0: मोक्ष, आप तो बहुत अच्छी बातें करोगे पेड़ के साथ। वंशिका तुम भी बताओ।
1: अगर हम पेड़ अचानक बातें करने लगा और हम उसके पास गए तो वो तो रो रहा ही होगा, क्योंकि इंसानों ने इतने पेड़ काटे हैं, उनको इतना दर्द दिया है, तो वो रोने लग जाते, तो फिर वो हमसे बोलते, ओ बच्चों तुम तो पेड़ लगाते हो पर कुछ मुझे काट देते हैं, मैं तो उनको बोलती कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती पर मैं और मेरे 2 दोस्त मिलकर हर साल बहुत सारे पेड़ लगाएंगे।
0: वंशिका आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली, तो हम अपने बर्थडे पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं, है ना? और पेड़ हमारी कितनी हेल्प करते हैं। अच्छा बताओ तो, पेड़ और वन हमें क्या क्या देते हैं?
2: पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और छाया देते हैं धूप से बचाने के लिए।
0: और इतनी गर्मी में पेड़ों की छाया कितनी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ, हमें बहुत ज्यादा ठंडी हवा मिलती है।
0: दक्षिता आप क्यों चुप हो, आप भी बताओ कुछ।
3: अगर मुझे पेड़ मिलेगा तो मैं उस पेड़ को बोलूंगी, शुक्रिया पेड़ कि तुम हमें इतनी अच्छी हवा देते हो, इतनी अच्छी छाया देते हो, हमें फल सब्जियां देते हो और हमें ऑक्सीजन देते हो, थैंक यू पेड़ हमें उन सारी चीजों के लिए।
0: दक्षिता आप एक कविता लाए हो ना?
3: हाँ,
0: सुना दो फिर।
3: मैं हूँ पेड़ मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है।
0: बहुत अच्छी कविता थी दक्षिता तुम्हारी।
2: मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ दीदी। पेड़ हमारे साथी है, पेड़ हमारे साथी है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं, पेड़ कितने जरूरी है फिर भी बेचारे कटते हैं, हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
0: अच्छा ये तो बताओ, आज हम वन और पेड़ों की बातें क्यों कर रहे हैं?
1: मैं बताऊं?
0: हाँ बताओ वंशिका।
1: 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव था। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वन महोत्सव का उद्देश्य वनों के कटाव को रोकना, हरियाली बढ़ाना और नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
0: बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, अब एक प्यारा सा गीत सुन ले।
1: हाँ, हमें बिल्कुल एक गाना सुनना है।

0: आप सबको गीत कैसा लगा?
1: बहुत ही अच्छा।
0: अच्छा बताओ, समर वेकेशन में आप सब कहाँ कहाँ गए थे?
1: मैं बताती हूँ, मैं अपने दादी नानी के घर घूमने गई थी। वहाँ मैंने अपनी दादी नानी से बहुत सारी बातें करी। मैंने अपनी दादी के साथ पेड़ लगाए थे।
0: वंशिका तो बहुत इंजॉय करके आई है अपनी समर वेकेशन में। दर्शिता तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी बताओ तुम कहाँ गई थी?
2: मेरे पापा और मम्मा और मेरी दादी और दादू साथ में मेरे साथ वाटर पार्क गए।
0: मोक्ष अपनी समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे?
3: मैं अपनी नानी के घर गया था।
0: और क्या सीखा आपने अपनी नानी से? नानी ने कहानियाँ तो सुनाई होंगी। सुनाई थी?
3: हाँ सुनाई थी।
0: तो बताओ, नानी और दादी की जो सीख होती है हमें क्या सिखाती है, पहले बताएगा मोक्ष।
3: सबर रखना, नानी कहती है जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम आराम से सबर से करो तो अच्छा होता है। इज्जत करना, बड़ों के पैर छूना, थैंक यू प्लीज बोलना, किसी को बीच में ना टोकना, ये सारी मैनर्स नानी से सीखते हैं। नानी हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठो, ताजी ताजी हवा में सैर करो, पूरा दिन अच्छा जाता है, बॉडी में फुर्ती रहती है।
0: मोक्ष आप तो अपनी नानी के घर से बहुत अच्छी बातें सीख कर आए हो। वंशिका आप भी बताओ।
1: मेरी दादी और नानी ने मुझे कहानियाँ सुनाई, जैसे राजा रानी, परियों और पंचतंत्र की कहानियों से हमें समझदारी और संस्कार मिलते हैं। उन्होंने एक चीज और सिखाई, रिश्तों को जोड़ के रखना, त्योहार पर सबको बुलाना, फोन करके हालचाल लेना, छोटे बड़े से प्यार से बात करना और सबका आदर करना।
0: अरे वाह वंशिका,
2: मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाओ दर्शिता।

0: ले गए।
1: बात रचिता, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो।
0: सच में ये तो बहुत अच्छा गीत था।
1: चलो सुने एक और प्यारे से गीत।

0: कैसा लगा दर्शिता गीत?
1: बहुत ही अच्छा।
0: मोक्ष तुम्हें कैसा लगा?
2: बहुत ही अच्छा।
0: अब समय हो गया है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
3: बाय बाय।

अभी हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 386.2।

0: आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। वहीं शाम 5:30 आप सुन सकते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। ग्राम संसार इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 और 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत। गजल और कव्वाली का आप आनंद उठा सकते हैं शाम 7:30। कवि गोष्ठी रात्रि 8:00 और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 10:00 किया जाएगा और आपकी फरमाइश, ये फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 11:10 पर किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम सॉन्ग।
1: नमस्कार, स्वरांजलि कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक किस्सा नौटंकी सुनवाएंगे। यह किस्सा है राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती का। कलाकार हैं शिवराम और साथी। इसे सजाएंगे संगीत से हारमोनियम पर मास्टर हरिबाबू, नगाड़े पर रशीद, ढोलक पर प्रेम कुमार नागर और बेंजो पर मास्टर चुन्ना।

ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरा सिंहासन कैसे हिल रहा है। अच्छा, पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद 99 यज्ञ करके सौवां यज्ञ करने जा रहे हैं, और अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो मेरे सिंहासन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुझे मुनिवर विश्वामित्र जी का आह्वान करना चाहिए।

0: असर ही नहीं।
1: ऐसा नहीं हो सकता राजन।
0: अब बचे कैसे मुनिवर और मेरी आबरू, ये फिकर है मुझे

0: संत से आपको भय लग रहा है?
1: महाराज
0: आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं, आपको भय कैसा?
1: मुनिराज मेरी इस चिंता का निवारण कीजिए।
0: निवारण?

0: राजा इंद्र
1: जी महाराज,
0: आप हमको तीन वरदान दो।
1: जी महाराज,
0: एक बारह का और एक नाग का, शरभ का, और पंडित तो हम हैं ही, मैं देख लूंगा उसको, लगा के समस्त शक्ति को उसे मैं आजमाऊंगा, अटल भक्ति से सत उसका डिगाऊंगा।

0: लिए। और मेरी नौकरी लग गई है महाराज हरिचंद के सत्य के बगीचा में। और भैया वो बगीचा की तरफ चलना चाहिए और बगीचा की देखभाल करनी चाहिए। मालिन आ रही होगी रोटी लेके, मालन रोटी लेके आ रहा, बहुत लेट है गई है मालन, दोपहर है, मालन अभी तक आई ना है। इतने मालिन आवे इतने मैं भैया सो ले थोड़ी देर,
1: आज तो मुझे भी बहुत देर हो गई है, ऐसा ना हो कि मालिन मेरे मुँह में झगड़ा हो जाए। भूखो सो रहे हो बेचारो, बहुत देर हो गई है, जल्दी चलना चाहिए। माली तो सो रहे है, बगीचा तो सब रोई उजर गो है। ओ माली, क्या हाल हो रहा पूरे बगीचे का, समझाते समझाते हार गई हूँ मैं तो।

0: माने ने तू आ गई का?
1: आ गई किधर ने फोन लगती तरह से?
0: पूरा सगरो बगीचा उजरो पर है। माने ने वो पता लग गो। ये बार हाँ ना उजा रहा सगरो बाग।
1: वही तो बता रहे
0: हैं। हाँ ला। मेरे लठिया ला।
2: सगरो बाग को नमस्कार।

भयो भारी है। आज एक सुगर ने आए उजारी सिगरेट।

और तोड़ दई नरम कन्हैया, हाल ये मेरो कर दो। अरे मेरी मैया, अरे मेरी मैया, अरे मैया मैं मरवा।

0: शिकार के लिए जाएंगे और उस बाराह को देखेंगे जिसने हमारे बगीचे का नुकसान किया है। जाओ अपनी चिकित्सा करवाओ।
1: महाराज के जीवन के जय जयकार हो। महाराज सुबह के 4 बज गए। महाराज
2: नारायण नारायण हरिश्चंद्र मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। 12 समझ के अब मुझे यहीं बैठ जाना चाहिए, यहीं चलता।

0: महाराज ऋषिराज मेरा शिकार, यदि यहाँ होके आपने देखा हो तो बताइए कृपया किस दिशा में गया है।
1: राजन, आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपका बारा मैंने देखा है या नहीं देखा?
0: जी महाराज,
1: हम तपस्या से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें क्या मालूम कौन कहाँ गया, किधर गया, कैसे गया। लेकिन फिर भी आपका नाम?
0: दास का नाम हरिश्चंद्र है।
1: अरे 2 घंटे

हुआ मेरा आगमन।

个灯，我的妈。

0: मुझ पर है कौन शह जो प्रभु के पसंद आई, श्रीमान बस उसी का संकल्प लो कराई।
1: हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, संकल्प कर थोड़े से दाम की।
0: ये आपकी इच्छा है, चाहे सो मांग लीजिए, कुंजी लगाम ही का संकल्प बोल दीजिए। प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो।
1: जैसे कि यज्ञ जब तक सब राम नाम में है, वैसा ही तेरा वैभव सब कुंजी लगाम में।
0: प्रभु ये आपकी इच्छा है, जो आप मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, संकल्प कराइए आप।
1: करिए। राजन जैसा मैंने सुना था वैसा माया पाया तो अब आचार्य भूपुवर देव दक्षिणा मो।
0: हाँ प्रभु, आपने जो संकल्प कराया है, आचार्य की दक्षिणा होती है, जहां संकल्प किया जाता है वहां यजमान दक्षिणा देते हैं, आप आचार्य हैं। जैसे मन माना लिया मांग आपने दान, तैसे ही मांगो दक्षिणा दूं सेहत सम्मान।
1: तो दीजिए दीजिए, दक्षिणा में 60 भार सोना है और ऐसे महादान में कमती ना जरा होना है।
0: 60 भार सोना लीजिए लीजिए, मैं दूं 60 भार सोना है, चला बतला दूं खजाने का एक खोना है।
1: ऐसा खोना किसका खोना, कहां का खोना? वह मालूम तू दानी नहीं घमंडी है, महा झूठा प्रताप की पाखंडी है, जब बेच चुका हमको कुंजी लगाम तारी है। बता मक्का।

से ये पाप हो गया ऋषिराज, क्योंकि मैंने राजपाट का आपको संकल्प देके पूरा राजपाट दे दिया मैंने, पहले तो मेरे पास बचा ही क्या है, ये मुझसे भूल हुई महाराज।

0: मुनिराज अयोध्या नगरी आप पधारे और वहां मेरी महारानी है, उनसे कहूंगा मैं, और वो भी सत्यवती है।
1: चलिए राजन, आप कहते हैं तो हम चलते हैं।
0: आइए।
2: प्रणाम माँ।
3: खुश रहो बेटा रोहतास। मुझे बड़ी चिंता है।
4: क्या है माँ?
3: तुम्हारे पिताजी अभी तक शिकार से नहीं लौटे हैं।
4: हे माँ,
3: बहुत देर हो गई।
4: चिंता मत कीजिए, पिताजी आते ही होंगे।
5: ये रहा

0: मेरा संकल्प करा लिया राजपाट धनधाम का।
1: तो दे दीजिए महाराज।
2: दे दीजिए।
0: मेरे पास न एक छा दाम, किस तरह पूरा करूं परण को। ये सतवादी में सत को छोड़ूं तो मेरे लगे दाग पुरखन को।

भी नाश होता हमारा धर्म। प्यारे गुंचे दहल उस यतन को बता, किस यतन से अदा होवे।

मेरे दर से अगर विप्र निर्मुख गया तो मरू मार के गल में ते गए दुदम। ना दिखाने का मुंह अपना।

0: राजकुमार।
1: पिताजी
0: तुम्हारा क्या विचार है बेटा?
1: पिताजी खरी जो

0: तो बिकना ही पड़ेगा हम तीनों को। चलो महाराज बड़े क्रोधी हैं।
1: राजन बहुत समय लगा दिया, कहिए बहुत समय लगा दिया राजन।
0: महाराज
1: क्या प्रबंध हुआ मेरी दक्षिणा का?
0: महारानी वासुके ये हमारी अर्ज है स्वामी, बेच हमको चुका लो सारा कर्ज अपना स्वामी।
1: कैसे
0: महाराज? और हमारे पास कुछ है ही नहीं, राजपाट तो आपने संकल्प करा लिया, 60,000 भार सोना हम कहां से देंगे महाराज? हम तीनों प्राणी हैं, बिकने के लिए तैयार हैं।
1: राजन जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है, सब जमी पर तेरा ही तो अधिकार है। बता कहां बेचू, किस जगह बेचू?
0: हां महाराज एक स्थान है।
1: क्या?
0: बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी, वही बेचो करें जा राज शंकर शंभु कैलाशी।

0: रंग तेरी बुद्धि को बलहारी, चलो बेचूंगा काशी में करो चलने की तैयारी। ये वस्त्र उतारिए, ये मुकुट उतारिए, ऐसे कैसे तैयार होके आए हो? इन पे सब अधिकार मेरा है, आपका कुछ नहीं।
1: मुनिराज, अयोध्यापुरी को हम प्रणाम कर लें, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, अयोध्यापुरी का हमें अन्न जल खाया है, ये हमारी माँ से ज्यादा है, हम इसको प्रणाम कर लें। प्रभु
0: कर लो राजन, प्रणाम करो, जल्दी चलना।
1: तू बच बचियो निश दिवस पूरी अयोध्या धाम, सब विद

सत्य धर्म को कोई मत छोड़ो, अपने सत्य धर्म को कोई मत छोड़ो। कहे इंद्र मन ज्ञानी नर्तन पर

0: आपका व्याकुल बदन देखा नहीं जा रहा मेरे से, थोड़ा सा जल लेके आए, मैं जल पी लो। आप
1: हम जल पी ले? क्या कह रहे प्रभु, हमने तो संकल्प लिया है जब तक आपका कर्ज ना चुक जाए हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे।
0: मैं क्रोधी हूँ, कट्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ आप जल पी लो। नहीं
2: बस महाराज हेरो कृपा दृष्टि से बस कहो आप हमसे न जल पान की मति ठहरो प्रभु और मति ठहरो प्रभु मुझे भारी फिकर आपके।

0: अब इसने तो पानी पिया नहीं, लेकिन अब मुझे तारा को बात में लगाना चाहिए और उसको पानी पिलाना चाहिए। इनमें से कोई भी पानी पी लेता है मेरा काम बन जाएगा। नारायण नारायण। बेटी तारा
1: कहिए।

0: बेटी तारा आपके पति ने पानी पी लिया है, थोड़ा सा नीर आप भी पी लीजिए बेटी।
1: मेरे पति ने जल पी लिया?
0: हाँ।
1: ठहरिए महाराज, मैं पूछ लेती हूँ। स्वामी, क्या आपने जल पी लिया?
2: नहीं, हमने जल नहीं पिया।
1: अब नहीं जान ये सत्य ठिकाना चाहे, मानो मानो न दुझ की हजारी बलम, पानी पीवे ना हम और मरना।

0: महाराज आप डरे नहीं।
1: बेटा रोहतास वो छोटा बालक है, व्याकुल बदन है, वो मेरी बातों में आ जाएगा।
0: क्या बात है महाराज?
1: बेटा कुप से बड़ा ठंडा नीर भर के लाया हूँ मैं, बेटा थोड़ा नीर पी लीजिए।
0: महाराज आपको ज्यादा दया आती है हमारी।
1: अरे बेटा।

0: नहीं पीना पता।
1: ऐसा है राजा हरिश्चंद, इस तरीके से तो नहीं पहुंच पाओगे, मैं अपनी योग माया से तुम्हें पहुंचा देता हूं, आप अपने नेत्र बंद कर लें।
2: महाराज
1: जिसका ग्राहक आएगा मैं उसी को बेचूंगा।
2: आपसे मैं विनती कर रहा हूं महाराज, मेरे माता और पिता से पहले मुझे बेचना।
1: जिसका ग्राहक आएगा उसे बेचूंगा।
3: चलो काशी के वासियों, सत से बंधे हुए 3 प्राणी लेकर के आया हूं, जिस किसी को भी चाहिए वो अपने खरीद ले।
4: भैया बासी के काशियों, मैं मारवाड़ को सेठ हूं और मो दुकान लगानी है, मैं बाजार की तरफ चल रहा हूं अब। अरे मैं हूं मारवाड़ को, मैं बाणिया बंबई शहर सू।

थारी लोटा लायो और एका नामे करी दुकनिया ओ एका नामे करी दुकनिया घंटा सेठ कहायो।

0: कौन मुंह रखा गया यहाँ पे, मेरी दुकान लग रही है, ये कहाँ से आ गया, कौन है? नारायण नारायण
1: महाराज दंडोत।
0: मुंह रख, मेरी यहाँ दुकान लग रही, तूने अपनी दुकान लग, हटा इस दुकान को।
1: यहाँ बाजार में मेरी दुकान लग पर ना बता महाराज जी
0: है?
1: तुम्हारी काय की दुकान है, तुम कहाँ बेचोगे?
0: हाँ ये बात है, ए, मैं लाया हूँ एक मोटियार।
1: ओहो एक मोटियार।
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा।
0: एक बिंदड़ी।
1: ओहो एक बिंदड़ी।
0: हाँ
1: अरे
0: एक टावर।
1: एक टावर।
0: हाँ, बच्चा
1: महाराज नो तो बता मो, ये कौन से देश में अकाल पड़ गो?
0: अबे मूरख, ये अकाल नहीं पड़ गया, सत के बंधे हुए हैं तीन।
1: ओ सत के बंधे हुए हैं।
0: मुझे मेरी दुकान लगाने दे।
1: तो दे महाराज, मेरे बगैर तो ना बिकेंगे।
0: तो दलाल है क्या?
1: और मेरी दलाली चले।
0: दलाल है?
1: हाँ देख, मैं महाराज सही बताऊं।
0: क्या दलाली लेगा?
1: एक रुपया में 17 आना लूंगा।
0: एक रुपया में 16 आना होते, इसको एक रुपया एक पैसा कहाँ से लाके दूं? चल आवाज लगा।
1: आवाज लगाऊं?
0: आवाज लगा।
1: काशी के वासियों, एक साधु महात्मा तीन प्राणी लाया, एक मोटियार है यानी आदमी, और एक औरत है यानी का बीतनी, और एक टावर है, जा कहू जरूरत हो भैया ले लियो। ये काशी नंगदी है, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर नंगदी है। मैं यहीं रहता हूं और धर्म मेरा नाम है, मगर मैं कालू के रूप में यहां आया हुआ हूं। तो धर्म और सत्य इनको भी मुझे देखना है। क्यों ये
2: हल्ला गुल्ला किस बात का हो रहा है?
1: कोई नहीं ये हल्ला गुल्ला का है, बताऊं?
2: हाँ बताओ।
1: एक काशी विश्वनाथ जी के मंदिर पे
2: अच्छा
1: एक माधु सातमा आया है।
2: अच्छा साधु महात्मा कहो।
1: हाँ, साधु महात्मा आया
2: जी।
1: और तीन प्राणी लाया, एक मोटियार है आदमी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और एक बींदनी है।
2: अच्छा बींदनी
1: और एक छोटा बालक है।
2: अच्छा अच्छा।
1: कालू मैं तो सलाह दे रहा हूँ भैया, तू है वो बुड्ढो।
2: सेठ जी मेरा काम है, काशी नगरी में सेवा करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू पोंछा सब काम करता हूँ, मगर अब मैं बुढ़ा हो गया।
1: हाँ भैया बुढ़ा है,
2: अब मुझसे काम नहीं होता। कोई मेरे लायक सौदा है आपके पास?
1: तेरे वाला तो बहुत जोर का सौदा है।
2: मेरा काम कर लेगा?
1: मेरे काम है सबड़े करेगा।
2: तो दिखाओ फिर मुझे।
1: दिखाओ?
2: हाँ दिखाओ। आ जाओ चलो। महाराज प्रणाम। मैंने सुना है कि आप कुछ सौदा बेच रहे हैं महाराज।
0: हाँ।
2: कोई हमारे लायक सौदा है?
0: हाँ आपके लायक है, एक आदमी है हरिया, आपको इनके साथ जाना है।
3: माया प्रभु की है, पल में कुछ पल में कुछ।
2: मैं आपको खरीद लूं तो कितना ऋण मुझे देना पड़ेगा महाराज?
0: 20 भार।
2: 20 भार सोना? कुछ कम नहीं होना?
0: कुछ कम नहीं होना।
2: ठीक है मुझे मंजूर है, मैं 20 भार सोना देता हूँ
1: महाराज।
4: महाराज आपको शर्म आनी चाहिए, एक पतिव्रता औरत को गणका के यहाँ बेच रहे हो।
0: किस बात की शर्म आनी? मेरा काम है कोई भी।

0: इसको कहां से पकड़ लाया तू? हमें तो 40 बार से मतलब है, कोई भी ले लो।
1: रखूं बेटी के समय मुझे गंगा की कसम है, जो इसका लाल पिरोना उसको भी दो हमें भार 40 संभालो सोना।
2: तो साथियों, ये था स्वरांजलि कार्यक्रम में राजा हरिश्चंद्र तारा।

0: पार्वती का किस्सा नौटंकी। शिवराम जी भगवान विष्णु इंद्रदेव की भूमिका में थे, रानी तारामती की भूमिका निभाई रानी लता ने, राजा हरिश्चंद्र के रूप में थे ताराचंद प्रेमी, सेठ माली का रोल अदा किया कमल कटिला ने, हुकुम ने पंडित की भूमिका निभाई, कल्लूक रोल में थे मटूल, ऋषि विश्वामित्र की भूमिका की गुड्डू ने, मालिन के रूप में थी तमन्ना और बालक रोहताश की भूमिका निभाई धारा ने। इस किस्से को सुरों से सजाया हारमोनियम पर मास्टर हरि ने, नगाड़े पर रशीद, ढोलक पर प्रेम कुमार नागर और बेंजो पर मास्टर चुन्ना। प्रस्तुति सहयोग रहा दिनेश मीणा और विशाल कुमार का। कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल और इसे आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पराशर ने। और अब अपने दोस्त कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और समुचा सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: अश्विनी भाई, देखिए, लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की संस्कृति, मान्यता और परंपराओं को सहेज कर भी रखते हैं। और साथ ही देखिए भाई, लोकगीतों में एकता और भाईचारा का भी संदेश मिलता है। मेले हों, त्योहार हों, सामूहिक आयोजनों में गाए जाने वाले लोकगीत समाज के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुनील भाई आपने कि भाई लोक रंजनी जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता भी, आपस में दूसरे के साथ लाता भी है, क्योंकि लोग ज़रूर अपना रेडियो सेट खोल कर जुड़ गए होंगे कि भाई लोक रंजनी कार्यक्रम आज में क्या कौन कौन से लोकगीतों का समावेश रहेगा, क्योंकि लोकगीत अपने आप में ही एक देखिए ना एक खुशबू लिए होता है कि जब जहाँ पर मिट्टी की महक है और गांव में सौंधी सौंधी खुशबू आती है, फुहार हो, खेतों में लहराती फसल हो, चौपाल बस्ती ढोलक हो, और हर मौसम में मन नई उमंग देता है, और वहाँ वहीं कहीं ना कहीं लोकगीत जो होते हैं हमारी थकान को कम करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। लोकगीत अपने अपने आप को हमें भी गांव की मिट्टी और अपने बचपन की याद दिलाता है।
0: बिल्कुल, और साथ ही देखिए, ये जीवन चक्र का प्रतिबिंब भी है। जन्म से लेकर विवाह, मृत्यु, फसल की कटाई, विभिन्न ऋतुओं, होली, त्योहारों, और कोई भी जो लोकगीत है वो अपने आप में एक तरह से जीवन चक्र का प्रतिबिंब,
1: और कहीं ना कहीं परंपराओं से जुड़ाव भी महसूस करते हैं हम लोग। जब हम लोक रंजन कार्यक्रम सुनते हैं तो बातें और भी करते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं, सविता शर्मा की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: हमसे बलम की ऐसी बिगड़ी, ये लोकगीत सुना सविता शर्मा से। और सुनी भाई देखिए, हम बात कर रहे थे कि देखिए लोकगीत तो जो हैं वो हमारी संस्कृति को संजोए रखते हैं। इसके साथ ही लोकगीतों में जो है कि इतिहास का ज्ञान, यानी जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको कई लोकगीत ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं और ऐसे स्थानीय जो वीर योद्धाओं की गाथाओं पर आधारित होते हैं तो उसका ज्ञान भी वो देते हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ना, और साथ साथ में जो भी हमारे जो गीत हैं वो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं से जुड़े जुड़े हुए हैं, और वो हमारे हमारे परंपराओं की पहचान भी बताते हैं। और कहीं ना कहीं तीज त्योहार, मेले, खलियान, खेत खलियान का भी जिक्र हमारे इन लोकगीतों में होता है, क्योंकि संसारिक चीज़ें हमारी जो जो निकल कर आते हैं, जो गीत निकल कर आते हैं, जो लोकगीत निकल कर आते हैं, वो हमारे समाज में से निकल के आते हैं। चाहे वो विवाह का गीत हो, या त्योहारों का गीत हो, या शिक्षा का गीत हो, चाहे चाहे वो मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो जो अब हमको आपस में जोड़ते हों।
0: और सबसे बड़ी बात सुनी भाई देखिए, इन लोकगीतों की जो भाषा है वो बिल्कुल सरल और क्षेत्रीय भाषा होती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बबीता चौधरी से सुन लेते हैं ये लोकगीत।

सविता शर्मा ने ये गीत, बबीता चौधरी की आवाज़ में हमने ये लोकगीत सुना, और यही खासियत है हमारे लोक रंजनी कार्यक्रम की। और अब चलते चलते एक और लोकगीत सुन लेते हैं रचना शर्मा की आवाज़ में।

नन्हे तीन घुंघरू बड़े में बेमिसाल हैं। एक एक एक बेटा थानेदार, दूसरा डॉक्टर, तीसरा मास्टर। बड़ी खूबसूरत लाइन में

0: सुनी भाई, ये तो लोकगीत सुना रचना शर्मा से, और रचना शर्मा के गाइस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है
3: शिवांश।
2: और शिवांश, सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप 2026 के। चार सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं, कैसे रहेंगे मुकाबले आइए सुनते हैं।

0: वर्ल्ड कप जैसे जैसे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता है, मैदान पर हर मुकाबले की मायने भी बदलने लगते हैं। यहाँ एक छोटी सी चूक पूरे सफर पर भारी पड़ सकती है, तो एक शानदार पल किसी टीम को इतिहास के और करीब ले जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भी कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिला। एक ओर नॉर्वे के सामने थी इंग्लैंड की चुनौती, तो दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से हुआ। सेमीफाइनल में जगह बनाने की इस जंग में किसने दबाव को जीत में बदला और किसका सफर यही थम गया, आइए बात करते हैं इन दोनों मुकाबलों की और जानते हैं खास झलकियां। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया। फुल टाइम में स्कोर 1-1 से बराबर रहने की वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया, जिसमें मौजूदा चैंपियन ने 2 गोल दागकर मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। स्विट्जरलैंड को दूसरे हाफ में रेड कार्ड मिला, जिसके बाद वे 10 खिलाड़ियों के साथ खेले और मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए। हालांकि एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही उनकी डिफेंस लाइन टूट गई और अर्जेंटीना ने 2 गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अर्जेंटीना की तरफ से एल्वारेस और मार्टिनेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किए, जबकि मैच के 10वें मिनट में ही एलिस्टर ने हेडर से गेंद को गोल में पहुंचाकर स्कोर 1-0 कर दिया था। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेलिंगम के शानदार 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम के बाद 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में चौथी बार खेलने के लिए तैयार है, जहां उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। बेलिंगम और कप्तान हैरी केन ने वर्ल्ड कप 2026 में 6-6 गोल किए हैं। यह पहली बार है जब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के एक ही एडिशन में कम से कम 5-5 गोल किए हैं। इसके साथ ही टूर्नामेंट के 4 सेमीफाइनलिस्ट के नाम सामने आ गए हैं। एक सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 1990 के बाद पहला ऐसा मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप की सभी 4 सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन हैं। पहला सेमीफाइनल फ्रांस बनाम स्पेन भारतीय समय के अनुसार बुधवार 15 जुलाई को रात 12:30 पर शुरू होगा। वही दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना बनाम इंग्लैंड गुरुवार 16 जुलाई को रात 12:30 पर खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप के इन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के साथ अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का सफर यही खत्म हुआ, जबकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब मुकाबला सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के और करीब पहुंचने का है। फ्रांस और स्पेन के बीच एक बड़ी टक्कर होगी, तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले पर भी दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजर टिकी होंगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, फुटबॉल का रोमांच भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इन चारों टीमों के खेल और उनकी रणनीति के बारे में हमने बात की।

0: भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान तरुण रॉय से।
1: अब आगे का जो है चारों में आप कुछ भी नहीं तय कर सकते। चारों ऐसी टीम है जो कि फुल्ली दावेदार थी जो ये पहुंचेंगी और ये डेफिनेटली इन्हीं में से कोई वर्ल्ड कप जीतेगा। तो अभी तो यही है, जो चारों अच्छी टीम आ गई है और जैसे इंग्लैंड है 1966 के बाद से पहुंचा है, वो तो चाहेगी जो मैं इस बार पहुंचू वो इस बार जीते। अदरवाइज अब जब के चार बार वो पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, तो उनके लिए भी बहुत वो है, टीम अच्छी है। सेम वैसे है आपका अर्जेंटीना, मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है ये, और वो भी ये जरूर चाहेगा तो मेरा लास्ट वर्ल्ड कप मैं भी ये जीत के जाऊं। और इसमें एडवांटेज उनको बहुत है, मैक्सिमम क्राउड जो है उनका है, उनका मैच भी सेमीफाइनल है अटलांटा में, अटलांटा से मतलब काफी मतलब वहां से जो अर्जेंटीना से मैक्सिमम आ सकते हैं वहां पे और आएंगे डेफिनेटली। मेरे हिसाब से 75% तो पब्लिक होने की होगी वहां पे, वो एक एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन वो खुद एक है मेसी मींस मैजिक, वो अगर मैजिक दिखाए आज वो मैजिक नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है सेमीफाइनल में दिख जाए। दूसरी तरफ फिर फ्रांस है, फ्रांस आपको पता ही है एमबेपे के साथ अब सिर्फ अकेला नहीं रहा, अब साथी जो है उनके बहुत ही अच्छे खेलने लगे हैं, जिससे कि अभी लग रहा है जो हाँ ये क्लैश जो होगा उनका तो डेफिनेटली बहुत। स्पेन है ही, दोनों यूरोपियन साइड है, स्पेन 2010 में जो गेम दिखाया था अभी वही वाला गेम टिकी टाका वाला दिखा रहे हैं, सेम गेम आ गया है। दोनों आपस में जानते हैं सबको कैसे खेलते हैं, एक ही क्लब में खेलते हैं, चाहे वो प्रीमियर लीग हो चाहे यूरोपियन में किसी भी क्लब में हो। तो मुझे लगता है अच्छा क्लैश बहुत अच्छा दिखेगा और ये किसको पहले कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है जो भी टीम फाइनल में आएगी वो भी एक बहुत अच्छी टीम होगी।
0: तब दो सेमीफाइनल मुकाबले होने हैं और उसमें एक तरफ होंगे फ्रांस और स्पेन और दूसरे मुकाबले में होंगे अर्जेंटीना और इंग्लैंड। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि फ्रांस और स्पेन वाला जो वर्ल्ड कप का मुकाबला है सेमीफाइनल, ये शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मुकाबला हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो वन ऑफ द समझ लो आप फाइनल मैच है, वो फाइनल मैच देख रहे हैं आप और गेम भी मेरे को लगता है उसी स्टैंडर्ड का होगा। और डेफिनेटली फ्रांस स्पेन काफी बार आपस में खेले हुए हैं और यहाँ दिखेगा जो हमें जो क्वालिटी ऑफ यूरोपियन सॉकर कितना इम्प्रूव किया, क्यों ना यहाँ पूरा टेक्टिकल पार्ट यहाँ पे दिखेगा, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी दिखेगा। आजकल जो हाइड्रेशन के लिए ब्रेक दे रहे हैं वहां पे मैंने मैक्सिमम देखे, ऐसी टीमें जब पहले 20-22 मिनट्स में नहीं खेल पा रहे वो हाइड्रेशन 3 मिनट का जो ब्रेक मिल रहा है उसके बाद चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो कोच उसके बाद जो स्ट्रेटेजी दे रहा है उस स्ट्रेटेजी में आपके गेम उसको पलट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें चेंज मिलेगा, सेकेंड हाफ में आके भी चेंज मिलेगा। तो ऐसा नहीं है किसने एक गोल मार दिया या दो गोल से जीत रही है, तो कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो 3-2 से जीत ना जाए, ये भी हो सकता है।
0: तो आपके हिसाब से दो फाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं?
1: मेरे हिसाब से अभी तक मतलब जैसे मैंने कहा ये अनएक्सपेक्टेडेबल आप बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जो इस बार अर्जेंटीना और स्पेन का फिर से ये मुकाबला फाइनल हो सकता है।

0: जो टीम अच्छा खेलेगी वही इस फाइनल में पहुंचेगी, ये कहना है पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान तरुण रॉय का। और फुटबॉल की फील्ड से अब आपको लिए चलते हैं शूटिंग रेंज पर, तो क्या कुछ खास है आइए सुनते हैं।
1: इटली के लोनाटो में शनिवार को हुए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में नीरू ढांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला। ये ISSF वर्ल्ड कप में नीरू ढांडा का पहला व्यक्तिगत पदक था और उनके करियर का कुल मिलाकर दूसरा पदक था। इससे पहले इस साल अलमाटी लेग में नीरू ने विवान कुमार के साथ मिलकर मिक्स ट्रैप में कांस्य पदक जीता था। दिलचस्प बात यह है कि इटली में नीरू की जीत से पहले इस साल शॉटगन इवेंट में भारत का ये एकमात्र ISSF वर्ल्ड कप मेडल था। क्वालिफायर में 125 में से 121 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंचने के बाद नीरू ने 8 महिला खिलाड़ियों के फाइनल में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। भारतीय शूटर ने बड़ी आसानी से शीर्ष 3 में जगह बनाई और पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने के लिए उन्हें फ्रांस की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपियन कैरोल से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। फाइनल राउंड में जब आखिरी 2 शॉट बचे थे तब

0: और कैरोल दोनों 25-25 पॉइंट्स पर बराबरी पर थे। फ्रांसीसी खिलाड़ी से चूक हो गई, लेकिन नीरो ने संयम बनाए रखा और कड़े मुकाबले में जीत अपने नाम किया। इस जीत के बाद नीरो ढांडा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: फाइनल में जीतने के लिए एक ही मोटिव था कि गोल्ड ही जीत के जाना है, और पूरा फोकस, लोग यहाँ 100% देने आए थे, लेकिन मेरे को 200% देना था, तब मैं गोल्ड जीतूंगी। तो मैं इसी माइंडसेट से आई थी और मैंने पूरा अपना 200% दिया है। और थैंक यू NIRI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पेशली थैंक यू साई को, थैंक यू OGQ, भोपाल शूटिंग एकेडमी, इंडियन आर्मी, स्पॉन्सर्स, ऑल इंडिया सपोर्ट, थैंक यू सो मच। ये तो मेरे को, मतलब मैं पिछले 3 बार से मिस कर रही थी मेडल को, फाइनल में आके बीब से बाहर हो रही थी कभी फर्स्ट, तो अब की बार मेरे को यही चैलेंज था कि मुझे अपना सबसे ऊपर बीब नंबर रखना है और मैं फाइट करूं। बीब नंबर से मैं बाहर नहीं आऊं, और कोई भी हो सकता है लेकिन मैं बीब नंबर से बाहर नहीं आऊंगी, तो मेरे को फाइट करना है अपने आप को क्वालिफिकेशन से लेके कमिटमेंट के साथ, फर्स्ट टारगेट से क्वालिफिकेशन के फाइनल के एंड शॉट तक कमिटमेंट के साथ शूट किया मैंने कि मैं बेस्ट हूँ।
2: शूटिंग रेंज के बाद अब आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एक बार फिर अपना मुकाबला हार गई इंग्लैंड के साथ। जो पांचवा T20 मुकाबला खेला गया उसमें भारतीय क्रिकेट टीम केवल 201 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 257 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, एक बहुत बड़ा मेहमत टोटल उन्होंने यहां पर क्रिएट किया। और उसके बाद भारतीय टीम को कहा कि आप 258 रन बनाइए और मुकाबला जीत लीजिए, लेकिन भारतीय टीम ऐसा नहीं कर पाई। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत की संजू सैमसन ने, उन्होंने 27 रन का योगदान दिया। अभिषेक शर्मा ने 3, ईशान किशन ने 56, श्रेयस अय्यर ने 28, तिलक वर्मा ने 53, शिवम दुबे 14, सूर्यांश शेगड़े ने 7, अक्षर पटेल 3, अर्शदीप सिंह 4 और प्रसिद्ध कृष्णा केवल 1 रन का योगदान टीम के लिए दे सके। और निर्धारित 20 ओवर्स में 201 रन ही भारतीय टीम बना सकी। और ये इस हार के बाद भारतीय टीम सीरीज में अपने सभी मुकाबले हार गई, लेकिन एक मुकाबला वो वर्षा के कारण बाधित था जो पूरा नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर बहुत ही खराब सीरीज रही शिवांश ये भारतीय टीम के लिए।
0: जी बिल्कुल, काफी खराब रही।
2: अब आगे जो मुकाबले होने हैं तो कुछ उसमें उम्मीद है कि शायद कुछ चेंजेस हों, और चेंजेस ये हैं कि प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई, जो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, उनको रिप्लेस किया गया है। और राणा को बताया जा रहा है कि थोड़ा उनको राइट लेग में, उनको कुछ मांसपेशियों में खिंचाव है जो उनको तीसरे मुकाबले में लगा था उसमें उनको चोट लग गई थी। और वहीं चक्रवर्ती को भी डिस्कम्फर्ट फील किया है, उनको उनके हाथ की कुछ मसल्स हैं और उनके जो हैमस्ट्रिंग का मसल्स है, यानी कि मांसपेशियों में जकड़न अकड़न की वजह से हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को फिलहाल आराम दिया गया है और उनकी जगह टीम में बने रहेंगे प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई। वहीं अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से यह है कि भारतीय महिलाएं बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही हैं, और इस समय जो सूरत हाल है वो ये है कि दूसरी पारी में भारतीय महिलाएं 250 रन बना चुकी हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड के खिलाफ उनका ये टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरे दिन का खेल अभी चल रहा है, और भारतीय टीम 365 रन की लीड ले चुकी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यस्तिका भाटिया बहुत अच्छे से बिल्कुल देख परख कर बल्लेबाजी कर रही हैं और 91 रन उन्होंने बना लिए हैं। और वहीं हरमनप्रीत कौर आउट हो गई, उन्होंने 16 रन बनाए। जेमी रॉड्रिगेस ने 3 रन बनाए। स्मृति मंदाना ने आउट होने से पहले 70 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 33 रन का योगदान दिया और दीप्ति शर्मा इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं शिकंजा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अब और भी मजबूत होता जा रहा है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के ऊपर। और क्रांति गौड ने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, और क्रांति गौड वो पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है, भारतीय महिला खिलाड़ी, जो लॉर्ड्स में जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर उनका नाम दर्ज हो गया है, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि यदि लॉर्ड्स में अधिक मुकाबले, अधिक टेस्ट मैच

0: खेले जाएंगे, तभी वहां पर हमारे खिलाड़ियों के नाम भी आएंगे। तो इस उपलब्धि के बाद क्या कहा क्रांति गौड़ ने, आइए सुनते हैं।
1: कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि फर्स्ट नेम मेरा है, देन मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है ये। अभी थॉट्स तो ऐसा, सारे प्लेयर्स का एक ड्रीम होता है कि 5 विकेट्स और देन फर्स्ट टाइम हमारा लॉर्ड्स में मैच हुआ है, तो एक ही थिंग्स था कि 5 विकेट लेना और बोर्ड में नाम लिखाना करके, तो बस एक ही था कि देन विकेट्स लेना है टीम के लिए, टीम को भी जिताना है, तो बस सोच तो एक ही थी। क्योंकि देखा जाए सारे बॉलर्स की, अगर सारे बॉलर्स को देखा जाए तो सारे बॉलर्स एक ही बात सोचते हैं कि देन हम टीम को विकेट्स निकाल के दें, तो बस एक ही थिंग्स था कि बस विकेट निकाल के देना है हमें।
0: बहुत अच्छी बात बोली क्रांति ने कि सभी बॉलर्स यही सोचते हैं कि हमें टीम को जिताना है, विकेट लेने हैं, और टीम अगर हम विकेट लेंगे तो टीम जीत भी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसहार्टन हो रहे हैं, थोड़ा दिल टूटा हुआ है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का। मैच के बाद क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
2: डेफिनेटली हर्ट्स, बट आई फील दैट इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एज अ कैप्टन एंड ऑल्सो फॉर अदर प्लेयर्स हु हैव प्लेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। And it's, when I say great learning, it's all about how you turn up for the tournament. You can't just have that mindset that you will come to England and you will win the series. You need to work hard, you need to be focused, and which we were as a team, but I personally feel that they played exceptional cricket throughout in all three departments. So probably, you see, the results also went in their favor because they were comprehensive in all three departments. Yeah. So if you're in number one, I feel you've been doing something great for the team and also personally. And thinking about the World Cup, it's 2 years from now. It's everything that's happening around right now is the preparation to the World Cup. So the earlier and the quicker we learn, it's beneficial for the team environment and also for the players who are coming in new.
0: कुछ संकेत अवश्य दिए हैं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कि कुछ बदलाव होने वाले हैं। और अब बात करते हैं टेनिस की, जहां पर विंबलडन में बहुत ही अच्छे मुकाबले खेले गए। क्या क्या हुआ आइए सुनते हैं।
3: विंबलडन का फाइनल वीकेंड यानी 2 हफ्तों की मेहनत, दबाव और उम्मीदों के बाद वो मुकाम जहां सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, नई कहानियां भी सामने आती हैं। इस बार सेंटर कोर्ट पर विमेंस सिंगल का खिताब चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा के नाम रहा, जिन्होंने एक उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में अपनी ही देश की कैरोलिना को हराकर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। लेकिन विंबलडन 2026 का रोमांच अभी बाकी है। आज विमेंस डबल्स में हान्यू और क्रिस्टीना की जोड़ी गैब्रियल और लुइसा का सामना करेगी, जबकि मेन सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन सिनर के सामने अलेक्जेंडर की चुनौती होगी। शुरुआत करते हैं विमेन सिंगल फाइनल से, जहां जीत आसान नहीं थी और मुकाबला आखिरी सेट तक गया। 21 साल की लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना को 6-2, 5-7 और 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। नोस्कोवा ने पहला सेट आसानी से अपने नाम किया और दूसरे सेट में भी 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन कैरोलिना ने शानदार वापसी करते हुए लगातार गेम्स जीतकर मुकाबलों को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया। 5 चैंपियनशिप पॉइंट्स गंवाने के बाद भी नोस्कोवा ने अपना संयम वापस पाया और तीसरा सेट 6-3 से जीतकर विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तो आइए जानते हैं नोस्कोवा ने इस जीत के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: It feels incredible today, and all these matches have been so tough, so physically or mentally tough today especially. You know, it's never easy to get the last point. Caro, you really made me work for it. I will not forget you this one, but yeah, like you said, we're friends. I'm so glad that I could play my first Grand Slam final with you. I think we made a history today.
3: आपको ये भी बता दें कि ये पहला ऑल चेक विमेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स फाइनल भी था। अब विमेंस डबल्स फाइनल में चाइना की हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना की जोड़ी का सामना कनाडा की गैब्रियला और ब्राजील की लुइसा से होगा। हान्यू और क्रिस्टीना ने सेमीफाइनल में जियांग और यी फान को सीधे सेट्स में हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब खिताबी मुकाबले में दोनों जोड़ियों के बीच तालमेल, नेट प्ले और दबाव के अहम मौकों पर संयम बड़ी भूमिका निभाएगा। मेन सिंगल्स फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन सिनर और एलेक्जेंडर आमने सामने होंगे। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक को सीधे सेट्स में हराया, जबकि एलेक्जेंडर ने ब्रिटिश

0: खिलाड़ी आर्थर की शानदार रन को रोककर फाइनल में जगह बनाई। हेड टू हेड में सिनर 10-4 से आगे हैं और पिछले 9 भिड़ंत भी जीत चुके हैं। ऐसे में अलेक्जेंडर के सामने न सिर्फ विंबलडन टाइटल जीतने की चुनौती होगी बल्कि सिनर के खिलाफ अपनी लंबी हार का सिलसिला तोड़ने की भी है। तो आइए जानते हैं फाइनल मैच के पहले अलेक्जेंडर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: It's amazing. This Grand Slam has always been the one that I struggle with the most, and now all of a sudden I'm in the final of Wimbledon. So I'm incredibly, incredibly happy. Incredibly, yeah, proud as well. I think of the team, of everybody who was involved. But we got one more match to go on Sunday, and that's what the focus is on. Yeah, it was okay, I guess. It was amazing. I mean, to be honest, I have to give credit to first of all Arthur, unbelievable player. I think he's going to be a senior citizen on our tour, because I think he's going to play on this tour for 15 plus years and is going to have great results. I think this was just the beginning of his career, and I really think that he's going to do amazing things in this sport.
0: तो श्रोताओं आइए जानते हैं सिनर ने क्या कहा फाइनल मैच के पहले, आइए सुनते हैं।
2: Yeah, very happy being back in the finals here. Very tough match today, but it was a good performance from my side, so I'm very happy. In less exchanges, less rhythm. This we know because of the surface, you know, being that fast, being also quite warm. It's gonna be, you know, good for big server, and he is definitely a big server. But in any case, look, I tried to do my best on Sunday. It feels good again being back in a Grand Slam final. It's good for me, and then I just try to do my best. Whatever happened in the past between me and him, it happened. You know, in between he won a Grand Slam in Paris, which gave him a lot of confidence. We can see the level he's producing here, so. We all hope for a good match, and then we see how it goes.
3: और अब सुनते हैं हमारे सहयोगी सिमरन की खास रिपोर्ट संडे ऑन साइकिल।
4: साइकिल के हर पहिए के साथ बढ़ते कदम, बेहतर स्वास्थ्य और फिट भारत की ओर बढ़ता विश्वास। स्वस्थ शरीर, सक्रिय जीवन शैली और फिट भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक और प्रेरणादायक कदम रहा संडे ऑन साइकिल का 81वां संस्करण। इस बार कार्यक्रम की थीम रही फिट इंडिया विद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि चाहे पेशा कोई भी हो, फिटनेस हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, युवा खिलाड़ी, फिटनेस प्रेमी और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक साइकिल रैली में भाग लिया। कार्यक्रम की विशेष अतिथि रही भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और सिल्वर मेडलिस्ट सुमन देवी थोडोम, जिन्होंने खेल और फिटनेस के महत्व पर अपने अनुभव साझा किए और युवाओं को नियमित व्यायाम और खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
5: मेरा नाम सुमन देवी थोडोम है, मैं एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। ये फिट इंडिया बहुत अच्छी चीज हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है, तो ये हमें डेली एक्टिव और अपनी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। मैं हॉकी प्लेयर हूँ और हम लोग तो ग्राउंड पे ही भागते रहते हैं, कभी जिम में, तो और फिट कंडीशनिंग में क्या होता है कि हमारी साइकिलिंग ये होता है, तो ये बहुत जरूरी है। साइकिलिंग हर वे में होता है, हर एथलीट यूज करना पड़ता है।
4: तो आप एज अ डिफेंडर हॉकी टीम में है, तो कितनी चुनौतीपूर्ण ये पोजिशन है और आप कैसे मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हैं?
5: हम लोग को ये है कि दी के अंदर बहुत अपनी माइंड को बहुत काम रहेगा, हमें हॉकी खेलना पड़ता है और आगे वाला प्लेयर हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि टीम गेम होता है तो एक अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत जरूरी है।
4: तो आपने सिल्वर मेडल भी जीता है हॉकी टूर्नामेंट में, गोल्ड मेडल भी आप जीत चुकी हैं, तो और आपने कमबैक भी किया है, तो किस तरीके से आप खुद को मेंटली भी और फिजिकली भी कैसे रूटीन को आप अपने फिट रखती हैं?
5: मैम, हॉकी ऐसा चीज है मेरी लाइफ के लिए, मतलब मतलब हॉकी ने सब कुछ दिया, तो मैं अपनी हेल्थ को और मैं अपनी मेंटल को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखती हूँ कि इसने सब कुछ दिया हुआ है तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। तो मुझे अपनी डेली बेस में जो भी प्रैक्टिस हो रहा है, मेरा जो अपनी वीकनेस है मैं उस पे काम करती हूँ, अपनी फिटनेस पे काम करती हूँ। CWG में हॉकी इंक्लूड नहीं है, तो उस खबर को सुनकर आपको कैसा लग रहा है? मैम दुख की बात है, CWG में इस बार हॉकी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आने वाले CWG में हॉकी आ जाए, तो आप

0: क्या उन महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो घर पर होती हैं या फिर ज्यादा जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, फिर जो काम करती हैं, खुद को समय नहीं दे पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ, उनकी फैमिली से बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बच्चे को ना रोकिए। जो भी बच्चे जो पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहती है, उनसे बात कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। फैमिली बहुत जरूरी चीज होता है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले सपोर्टर फैमिली होता है। तो फैमिली जितना सपोर्ट करे उतना हम लोग इंडिया आगे बढ़ सकती है। हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज है, ये जो साइकिलिंग की स्कीम निकाली है संडे संडे को, तो ये हमारे लिए हेल्दी लाइफ का एक बेस है। ये बहुत जरूरी है ये चीज करना, और हमारी माइंड को बहुत फिट रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों से कि आप अपने लिए कम से कम 20 मिनट निकाल के कोई भी एक्टिविटी, या कुछ से जॉगिंग नहीं कर सकती, कुछ खेल नहीं सकती, तो आप कम से कम वॉकिंग कर सकते हो, तो ये अपने लिए है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग हेल्दी रहे, हेल्दी रहेंगे तो हमारे स्ट्रॉन्ग इंडिया को भी फॉर्म करें।
1: खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव ने फिट इंडिया की इस मुहिम का महत्व बताया।
2: ये एक ऐसी संकल्पना है भारत सरकार की कि वर्तमान में जो लाइफ स्टाइल बॉर्न डिजीजेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं आम लोगों में, क्योंकि जो फिटनेस एक्टिविटी है उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सोचना था कि एक मूवमेंट शुरू किया जाए, लोगों को फिटनेस एक्टिविटी की ओर लेके आया जाए, हिस्सा लेती है।
0: सर ये 81वां एडिशन है, तो अब तक आपने कितना क्या प्रभाव देखा इस मूवमेंट का?
2: जब हम लोगों ने शुरू किया था तो बहुत ही कम लोग इसमें दिखे। समय के साथ जब हम लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा तो धीरे धीरे बहुत सारा उत्साह इसमें आ गया। हम बीच बीच में फन स्ट्रीट का कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें पूरी स्ट्रीट ब्लॉक करके पूरा गेम जोन एक पूरा बना दिया जाता है, और साइकिलिंग के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं लोग। तो अभी तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, पूरे देश में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। एक यदि आपको उदाहरण दूं तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो कि 3 जून को पड़ता है, परंतु वो वर्किंग डे होने की वजह से हम लोगों ने 7 जून को उसको मनाया। पूरे देश में 4 लाख लोगों ने एक ही दिन में एक ही साथ राइड किए, और दिल्ली में करीब 15,000 लोग उपस्थित हुए थे कार्यक्रम में, और साइकिल का कार्यक्रम हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि छुट्टी के दिन सुबह सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक यहाँ आ जाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो जनता में ये मैसेज निश्चित रूप से गया है कि यदि स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। वो त्याग एक्चुअली त्याग नहीं है, क्योंकि वो गेन है आपका। इट्स नॉट सैक्रिफाइस, इट्स एक्चुअली गेन। नेशनल स्पोर्ट्स डे आएगा 29 अगस्त को, पूरा देशव्यापी कार्यक्रम होगा और हम इसको 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं। तो ये अत्यावश्यक है कि हम ये शो करें वर्ल्ड को कि भारत एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है।
1: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संबित कुमार ने भी इस मुहिम से जुड़ने पर अपने भाव रखे।
3: दिस टाइम वी आर द पार्टनर्स ऑफ दिस बाइसाइकल ऑन संडे ऑन 12 जुलाई, और हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिभागी है, अच्छे से पार्टिसिपेट करके उसका लाभ उठा रहे हैं, और फिट इंडिया का हर एक मूवमेंट में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
0: सर ये थीम जो है, क्या मोटिव है चार्टर्ड अकाउंटेंट को डेडिकेट करने के?
3: एज ए नेशन बिल्डर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज विद द नेशन, और इनको आपके स्वस्थ भारत के कंट्रीब्यूशन के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे है। ये मूवमेंट अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है। इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और यहाँ पे एक एक एक्टिविटीज में आपको अच्छे से कंट्रीब्यूट करना मतलब हमारा कर्तव्य भी है, हम आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। आकाशवाणी जरिए के मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति फिट इंडिया मूवमेंट में शामिल हो और अपने आप को स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, और आप प्रोफेशनल लाइफ में करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है।
1: और
4: अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है ये मानना है कई सारे पार्टिसिपेंट्स का, जो खेलो जो संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लेने आए थे। और अब हम आपको बता दें कि भारतीय तीरंदाजी टीम लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, खट्टी मीठी खबरें आ रही हैं। पहले जिस तरह से प्रतिका प्रदीप का कांस्य पदक आया और अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगी कीर्ति, किस तरह से चल रहा है इस समय शिवांश?
5: जी बिल्कुल, हमारी भारतीय खिलाड़ी कीर्ति आर्चरी में सेमीफाइनल में हार गई और अब वो कांस्य पदक के लिए खेलेंगी,
4: और अगर वो जीत जाती तो निश्चित तौर पर स्वर्ण या रजत पदक उनका पक्का हो जाता। इससे पहले मिश्रित टीम कांस्य पदक में धीरज बोम्ब देवरा और कीर्ति शर्मा की भारतीय जोड़ी इटली से 3 पास से हार गई थी और उन्हें कोई पदक नहीं मिला था। वहीं दूसरी ओर महिला टीम रजत पदक स्वर्ण पदक के मैच में कोलंबिया से 228-232 से हारने के बाद भारतीय टीकरी ज्योति सुरेखा वेनम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तीनी पार्थी ने रजत पदक जीता। तो कुल मिलाकर अच्छी खबरें आई हैं तीरंदाजी के क्षेत्र से। और वहीं एशियन

0: अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिक्स्ड रिले में अस्तिका प्रधान, संद्रमोल साबू, सेतु मिश्रा और श्रवणी सांगले की चौकड़ी ने 0.10 सेकंड से पछाड़ कर ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो खैर, हमारे खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस खेलों के मैदान पर दे रहे हैं, हम भी आप तक उनकी खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब स्टूडियो घड़ी में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर
1: और शिवांश रक्षित को दीजिए अनुमति,
0: और हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान को भी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान और दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास और चौथा मेघालय पाइन एप्पल फेस्ट 2026। 7 जुलाई मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान और दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने शुभकामनाएं देते हुए कहा,
1: मैं आज इस मंच से सभी दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं, ग्रीन ड्राइव पोर्टल उस पर जाइए, वृक्षारोपण के लिए अपना स्लॉट बुक करिए, अपने आसपास की स्कूलों में, अपनी कॉलोनियों में, मंदिरों में, सोसाइटियों में, जहां पर भी भूमि उपलब्ध है, वृक्ष बोकर हरी दिल्ली का संकल्प हम साकार करें। ये वृक्ष रथ जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, वो आपको पोर्टल पर जाते ही मुफ्त में वृक्ष का पौधा देने का काम करेंगे और नर्सरी लोकेटर की सुविधा आपको पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूँ। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रिज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा और ये आने वाले दिनों में काम करेगा।
0: 10 जुलाई शुक्रवार को INA दिल्ली हाट परिसर में 10 से 12 जुलाई तक चलने वाले चौथे मेघालय पाइन एप्पल फेस्ट 2026 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड के संगमा ने कहा,
2: दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से हम लोगों ने ये पाइनएप्पल फेस्टिवल यहाँ दिल्ली में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और जो लोग पिछले 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमने हर साल इस पाइनएप्पल फेस्टिवल को और इसे हम कैसे आगे जाके इसे और बेहतर कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की और मैं चाहूंगा कि इसे हम लोग और पॉपुलराइज करें और यहाँ पे सिर्फ हमारे मेघालय के प्रोडक्ट्स ही नहीं, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे।
0: चौथे पाइन एप्पल का उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में केंद्रीय दूरसंचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा,
3: मेघालय की एक एक रोमांचिक क्षमता, चाहे वो अनानस हो, चाहे लैकेडोंग टर्मरिक हो, चाहे हमारे नौजवानों की, गायकों की क्षमता, जिसका स्वयं परिचय मुझे मिला जब मैं मेघालय में मेरा प्रवास हुआ था। वास्तविक तौर से मेघालय देश के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरियों में

0: हमारा एक हीरा और एक पन्ना है. The focus on pineapple in Meghalaya, the way the state of Meghalaya has integrated with the farmers. We heard Rubina ji's story today on this month, and there are multiple Rubina Sangmas across the length and breadth of my Meghalayan state, which houses tremendous capability, diversity, whether in her nature, with the living root tree bridges, the Meghalayan caves, whether in her natural resources, whether it be pineapple, her turmeric, her ginger, whether it be in her people, that have a tremendous capability for entrepreneurship. The capability of cultivating pineapple has grown by leaps and bounds in the last decade in Meghalaya. 12,000 hectares in every sector of the state, from the East Garo Hills to Ribhoy to Khasi to Jantia Hills, all are full of pineapple farming, close to 12,000 hectares, 1.4 lakh metric tons of production. And what I have really appreciated in this enterprise is the way the government has worked with all our farmers and our farmer producing organizations, our FPOs, whether it is our MLAM program, whether it is our CM Farm program, Meghalaya's organic mission, setting a target of 1 lakh hectares to be under cultivation in the next couple of years, affecting close to the livelihood of close to 90,000 farmers across the state. And I see this across every aspect, the people-to-people connection, the people-to-people contact that the state of Meghalaya is pursuing across every single dimension. And therefore the donor ministry, in line with the Prime Minister's vision, that the Ashtalakshmi has to herald a new dawn for India. In these 8 states, close to 4.5 crore population, a huge demographic dividend, 80% of the population below the age of 30, very high literacy rates, above 93%, they pose the potential to be the engines of growth of Viksit Bharat 2047.
1: इस आयोजन में श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत की. उन्होंने बताया,
2: मेघालय का अनानास उत्सव का चौथा संस्करण की शुरुआत मुख्यमंत्री जी और हमने साथ में मिलकर की है. प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल, उसी अवधारणा का क्रियान्वयन इस अनानास त्योहार के आधार पर किया जा रहा है. हमने अपने किसानों की बात सुनी, रुबीना सांगमा जी ने अपनी एक एक कहानी हमको सुनाई और कैसे प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के आधार पर, मुख्यमंत्री जी के योजनाओं के आधार पर, चाहे सीएम फार्म हो, एमलैम्प हो, इन योजनाओं के आधार पर सामान्य मानवी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उत्साहवर्धन दिया जाता है. आज कई लखपति दीदियों के साथ मेरी मुलाकात हुई, जिनके जीवन में एक अस्मरणीय परिवर्तन इन योजनाओं के आधार पर आ चुका है. आज 2 से 3 लाख रुपए प्रति माह हमारी दीदियां कमा रही, और यही एक क्रांति के आधार पर विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा. आज मैं मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे आयोजनों से जहाँ एक तरफ व्यापार बढ़ता है, वहीं मेघालय का नाम विश्व पटल पर पहुँचाने की हर क्षमता को हम एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं. फोर्थ एडिशन ऑफ द पाइनएप्पल फेस्टिवल हैज बीन रिमार्केबल, इट विल बी हिस्टोरिक, जस्ट लाइक द स्वीटनेस ऑफ आर पाइनएप्पल फ्रूट, द अरोमा ऑफ आर पाइनएप्पल फ्रूट, द स्वीटनेस एंड अरोमा ऑफ माई स्टेट ऑफ मेघालय विल वॉफ्ट थ्रू द सेंसेस of every single individual that walks through these stalls. I wish this festival all success. Well, we've exported close to about 100 metric tons of pineapple already. It has gone to multiple countries across the world. We are looking at putting in place processing centers that will enhance the value addition to the pineapple product. We have seen a lot of that value addition in these stalls, whether it's through the juices, whether it is through the pulp, whether it is through the ice cream, whether it's through different products. And that is what's going to enhance the capability of our organic farmers to be able to grow beyond the shores of India to far-reaching international shores.
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंग

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई, देखिए पिछले दिनों काफी धूल भरी आंधी और हवा तेज चली
1: जी।
0: और ये देखिए जो धूल भरी आंधी जो आती है ये मानव स्वास्थ्य के लिए साथ ही कृषि और पर्यावरण के लिए भी इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को यानी आज के दिन रेत और धूल भरी आंधियों के निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है
1: जी।
0: और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 जुलाई को अधिक तौर पर रेत और धूल भरी आंधी निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था
1: जी।
0: तभी थे देखिए जो यह दिन विश्व स्तर पर लोगों को इन प्राकृतिक और मानवीय कारकों से प्रेरित आपदाओं के बारे में शिक्षित करने और इनसे निपटने के लिए टिकाऊ भूमि और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए आंकड़े जो बताते हैं कि भाई हर वर्ष करीब 150 देश इससे प्रभावित होते हैं। इस तूफानों के कारण जो उत्पन्न जो महीन कण हैं वो सांस संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और त्वचा से संबंधित जो समस्याएं पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए ना, ये जो रेत और धूल भरी आंधियां केवल रेगिस्तानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, भूमि संरक्षण, सूखा, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, प्रकृति साधनों के असंतुलित उपयोग के कारण इनकी तीव्रता और आवृत्ति के क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है। इन आंधियों का सबसे बड़ा अधिक जो प्रभाव है वो किसानों को, पशुपालकों को, ग्रामीण समुदायों पर पड़ता है। तेज धूल भरी आंधी रेत फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। पौधों की पत्तियों पर धूल जमने से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकृति जो जो जो को प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो सकता है। कई बार नई जो बोई हुई फसलें होती है वो भी खराब हो जाती है क्योंकि धूल इतनी जम जाती है पत्तियों के, प्रकाश संश्लेषण वो नहीं कर पाती है। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो फसलें कमजोर पड़ जाएंगी और उत्पादन हमें कम कम मिलेगा।
0: तो भाई देखिए इस बारे में जागरूकता जरूरी है। और साथ ही देखिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस भी मना रहे हैं। इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के जो समुदायों और व्यक्तियों के बीच चुनौतियों के समय सकारात्मक और एकता का बेहतर परिचय की आशा को बढ़ावा देता है। और यह दिन याद दिलाता है कि युद्ध, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी जो चुनौतियां के बीच आशा एक सक्रिय शक्ति है। यह लोगों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। आशा हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाती है, नए अवसर खोजने और बेहतर भविष्य के लिए भी कार्य करने की शक्ति देती है। और वहीं पर जो हमारी खेती स्वयं आशा पर निर्भर सबसे बड़ा प्रतीक है। किसानों के बीज बोते समय विश्व और उम्मीदों के साथ साथ भविष्य की फसलों का जो सपना देखता है। और मौसम की चुनौतियों हों या प्रकृति आपदाएं, किसान अपनी मेहनत और आशा के बल पर फिर से खेत में उतरता है और यही आशा भारत की कृषि और ग्रामीण जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
0: बिल्कुल। और देखिए मैं इस दिन जागरूकता अभियान स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्तरों पर जो मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा और सेमिनार जो आयोजित किए जाते हैं, साथ ही देखिए भाई जो सहानुभूति और दयालुता लोगों को छोटे छोटे दयालुता के जो काम करने और आपस में मतभेद बुलाकर सुचारू रूप से रहने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अश्विनी भाई,
1: तो कार्यक्रम में हमारी और भी होती रहेंगी लेकिन आज हमारा जो कार्यक्रम रहता है वो है पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम है। ये फरमाइशी कार्यक्रम है जो हमारे भाई हमें फरमाइश भेजते हैं। और सबसे पहला जो फरमाइश जो हमारे भाइयों ने की है वो बलराम बंसल को सुनना चाहा है। उसके लिए हमारे पत्र हम आपके कुछ आप देख रहे हैं आपके हाथ में है, तो पहला पत्र आप ही पढ़ दीजिए सुनील भाई।
0: बिल्कुल भाई, देखिए बलराम बंसल को जो सुनने के लिए काफी हमें इस फरमाइश मिली है, ये जो पहली फरमाइश मिली है ये कभी रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से हमें मिली है। और इसको भेजने वाले देख

0: देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और तुषार देव तामूरिया।
1: बिल्कुल, ये हमारे पुराने श्रोता हैं और लगातार हमें फरमाइश करते हैं। जी
0: और जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो गुलाम रोड नया शहर पंजाब से मिली है, और इसको भेजने वाले हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनका समस्त परिवार।
1: जी, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से पत्र मिला है। ये है सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और इनका पूरा परिवार है। और वहीं पर एक और पत्र शामिल करते जिन्होंने सुनना चाहा है बलराम बंसल को। ये पत्र हमें चंडीगढ़ से भेजा है। इसी तरह राम अनेजा और बिमला अनेजा का पत्र है ये।
0: बिल्कुल, इसी क्रम में एक फरमाइश और भी हमें सोनी भाई मिली है, वो मिली है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ की, और ये फरमाइश हमें मिली है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा के।
1: ये गांव चौधरीवास हरियाणा से पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहे बलराम बंसल को। मांगेराम सतूर, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश और उनका पूरा परिवार। और ये है कनेरा मोहल्ला पटियाला से पत्र मिला है मुकेश बाता, नीलम बाता, करण बाता, हार्दिक बाता और उनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमें मिली है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र की। साथ ही हमें फरमाइश और भी मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा।
1: जी, एक और पत्र मिला है, यह छत्तीसगढ़ से पराली से पत्र में लिखते हैं नितेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद देवगन और ये है पुराना पुना है राम देवगन, कृष्ण देवगन, उनका पूरा परिवार। और ये पत्र मिला है हमें वांडी रोड मंडी डवाली से पत्र लिखते हैं ये जिन्होंने सुनना चाहा है बलराम बंसल को। राजेंद्र जी हैं ये, मोहित और तानी और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और इसको भेजने वाले ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर भाई और उनका समस्त परिवार।
1: छत्तीसगढ़ हादसा नंबर नंबर 2 से कमलेश राहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू, उनका पूरा परिवार। और ये है नांदेड़ नांदेड़ तला इतला महाराष्ट्र से पत्र लिखते हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम और राखी दुगेशी जायसवाल, उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है बेर वाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नयन जाखड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से। हनुमानगढ़ टाउन से फरमाइश मिली सुल्तान सिंह, कृष्णा, मुकेश, रामचंद्र और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: दुर्गा कलोनी हांसी से पत्र लिखते हैं इन्होंने सुनना चाहे बलराम बंसल को। राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्लू बब्बू, उनका पूरा परिवार। ये है गाँव चौलसा बागपत उत्तर प्रदेश से पत्र लिखते हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपर ढींगिया और उनका पूरा परिवार।
0: बलराम बंसल को ही सुनना चाहते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से शरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गांव लोहड़ा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापति, प्यारे पोते उनकी भुवनेश्वरी देवी, उनका समस्त परिवार।
1: जी,
0: साथ ही फरमाइश मिली है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन जी की।
1: ये पिजनौरी जिला जिला जालौन उत्तर प्रदेश से पत्र मिला सतेंद्र कुमार, आदर्श, अलौकिक और उनका पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये कलानौर हरियाणा से है। ये है नींद्रदास शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से, उसको भेजने वाले मोहम्मद सईद अब्बासी, निगित, परवीन अब्बासी और उनका समस्त परिवार।
1: भोला कॉलोनी गंडोरदास जिला करनाल हरियाणा से पत्र में लिखते हैं ये है विजेंद्र कुमार जयान, कांता रानी, गुंजन, साहिल, वानी जयान और इनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, ये मिली है भाई संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और ये फरमाइश मिली है चौक गोराया जालंधर से।
1: जी, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा, क्षमा, शवि, मधुबाला की चिट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से।
1: जी,
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है भाई रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, उसको भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना और उनका समस्त परिवार।
1: पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से पत्र मिला है जिन्होंने सुनना चाहे बलराम बंसल को। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक और उनका पूरा परिवार। और छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से है ये राष्ट्रीयपाल गजबेजिया, राधिका गजबेजिया, तमन्ना गजबेजिया और उनका पूरा परिवार।
0: तो तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बलराम बंसल से रागनी और किस्सा रहे।

0: द्वारा जो आम आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की गई, अटल पेंशन योजना, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो आयकर दाता ना हो, 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटेड जो पेंशन प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए वही देखिए, जो जो
1: अंशदान है जो
0: अंशदान अंशदान तो है ही अश्विनी भाई,
1: जी
0: जो गारंटी में जो प्रतिमाह 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक किसके जो उसके अंशदान के
1: पेंशन
0: हिसाब से और उसकी
1: जी
0: आयु के हिसाब से ही वो ये चुन सकता है।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही देखिए भाई, जो उसके परिवार में अगर मान लो किसी वजह से जो
1: पेंशन
0: आवेदक है
1: धारक की
0: उसकी
1: जी
0: मृत्यु हो जाती है, तो भाई उसके परिवार के लिए भी ये पेंशन सुरक्षा रहती है।
1: बिल्कुल
0: और पात्रता की अगर बात करें तो देखिए, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता होना अनिवार्य है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल छोटी छोटी अगर अगर आप इन सभी जो सरकार द्वारा चले गए स्कीमों का फायदा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसे का लाभ जरूर मिलेगा, चाहे चाहे उसका अंशदान छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या आप कोशिश करें कि 18 से 40 की उम्र में रहते रहते ही इस योजना का लाभ उठाएं, और अपना अगर हो सके तो आप ज़्यादा ही अंशदान करें जिससे पेंशन आपको भविष्य में अच्छे मिल पाए, और अगर अगर पैसे रहेंगे तो जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, और इन योजनाओं का आप जरूर लाभ उठाएं।
0: आप स्वयं भी लाभ उठाएं और दूसरे जो भाई जिनको इस बारे में जानकारी नहीं उनको भी अवश्य जानकारी दें।
1: बिल्कुल
0: अश्विनी भाई, अब आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो है जयवीर भाटी, और जयवीर भाटी को सुनने के लिए जो पहली जो फरमाइश मिली है चक 5 MD पत रोड से,
1: जी
0: इसको भेजने वाले मंगल, श्रीमती रोशनी, अंकुर और उनका समस्त परिवार।
1: जी और जी, और ये पत्र में मिला है GTB मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से। ये सुनना चाहते हैं हमारे जयवीर भाटी को। ये है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना और आफिसा और रजिया सुल्तान, और ये है मोहम्मद जावेद अंसारी और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मेरी है जमानिया गाजीपुर से, इसको भेजने वाले सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति।
1: गौरणी तल्ले वाला उत्तराखंड उत्तराखंड से पत्र मिला है। ये नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है दतरंगी से, छत्तीसगढ़ से, और भेजने वाले हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और उनका समस्त परिवार।
1: जी शार्दुल शहर राजस्थान से पत्र मिला है, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और उनका पूरा परिवार।
0: जयवीर भाटी को ही सुनना
1: जी
0: चाहते
1: जी बिल्कुल
0: हैं, जटवाड़िया गाजियाबाद से शीशपाल अकेला।
1: जी
0: साथ ही हमें फरमाइश मिले गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, राजेंद्र कुमार मलकीत को, आरती रानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: जिला अम्बाला से पत्र में लिखते हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिले रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुण वर्मा की।
1: जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से पत्र मिला है हमें, ये है विक्रम कंडवासरा, सचिन कंडवासरा, सतीश, योगेश और उनका पूरा परिवार।
0: और ये फरमाइश हमें मिली रामगढ़ कैंट से, मोहन महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब की।
1: जी ये है दादू बाबू रोड झारखंड से पत्र लिखते हैं मोहम्मद यासीन अंजा और बाबू अहमद, फिक्री नवाज, बेबी चाह और शादिया और उनका पूरा परिवार। वहीं पर नूर महल महलौल सीतामणि से पत्र हमें लिखते हैं, ये है मुर्शद जहानाज और शाजिया शाहीनाज और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है नगर निगम वार्ड 28 से मिली है सीतामढ़ी से, और इसको भेजने वाले अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
1: जनकपुरी सहारनपुर से पत्र भी लिखते हैं जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा, विलियम डिकोस्टा, जिन्होंने सुनना चाहे जयपुर भाटी को।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से, सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और उनके समस्त परिवार की तरफ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं जयवीर भाटी से ये रागनी।

0: तो ये तो सुना जयपुर भाटी की आवाज़ में। और अब भाइयों ने फरमाइश की है सनोज सनोज को, तो उसके लिए पत्र हमें मिले हुए हैं। ये पत्र पढ़ देते हैं। ये है पहला पत्र, नरविला महाराष्ट्र से मिला है। PS नेहवाकर, निब्रा नेहवाकर, विशाल नेहवाकर। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं। ये है गांव दुहालपुर, उत्तर प्रदेश से, ज़िला मुरादाबाद है। मुकेश कुमार कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, मानवी, तन्वी, मोहिनी, ऋतिक और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, रज्जाक मोहम्मद समीम।

0: और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित राय की। इसी क्रम में एक और फरमाइश हमें मिली है ये कुमारी छत्तीसगढ़ से बलराम दामिनी डोमेश और उनके समस्त परिवार की
1: बिलाईगढ़
0: तरफ से।
1: छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवगन और कौशल्या देवगन, हेमलता देवगन का पूरा परिवार।
0: और फरमाइश हमें काफी और भी मिली है सोनी भाई, जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। अभी सभी भाइयों की पसंद पर सुन लेते हैं सनोज कुमार से ये रागनी।
1: जी।

अश्मी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी सनोज से, और सनोज की गाइस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हानियू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हानियू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: असमी भाई कार्यक्रम
1: जी
0: लेकर हाजिर हैं। देखिए, मानसून एक तरह से पूरे भारत में आ चुकी है
1: जी
0: और भाई ऐसे में जो खरीफ की फसलें लगा रखी हैं भाइयों ने, उसमें भाई खरपतवार काफी हो जाते हैं। तो खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार भाई निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य करें। इससे देखिए भाई खरपतवार द्वारा जो फसलों को कम हानि होगी तथा जल की बचत होगी और साथ ही भाई जड़ों का विकास अच्छा होगा। जिन किसान भाइयों ने भाई धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो भाई तैयार खेत में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस मौसम में किसान भाई देखें मक्का की फसल लगा सकते हैं, साथ ही इस समय जो चारे के लिए ज्वार की बुआई उपयुक्त मानी जाती है।
1: वहीं पर धान की आप पौधशाला में भी यदि पौध का रंग पीला पड़ रहा है तो इसे लोहा तत्व की कमी मान सकते हैं। पौधों की ऊपरी पत्तियों यदि पीली और नीचे से हरी हो रही हैं तो लोहा तत्व की कमी दर्शाता है, इसके लिए आप उपचार जरूर करें।
0: बिल्कुल। और जो भाई देखिए सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इस समय मिर्च बैंगन व फूल गोभी जो सितंबर में तैयार होने वाली किस्में की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है भाई समय। और किसान पौधशाला में जो कीट अवरोधी दवाओं का भी छिड़काव करें। साथ ही जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो जो वर्षाकालीन फसल की बुआई करें, इसमें लौकी की जो उन्नत किस्में उसमें पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा आदि ले सकते हैं।
1: वहीं पर अगर मिर्च के खेत में विषाणु रोगों के से ग्रसित पौध को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें, उसे उपरांत इसमें जो भी इसके लायक जो दवाइयां होती हैं इसे मिलाकर खेत में छिड़क दें और फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.5 मिलीलीटर क्लोरोफाइट फॉक्स 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढों को पानी से भर दें ताकि दीमक और सफ़ेद लट से बचाव हो सके और पौधे किसी प्रमाणित सूत्र से ही खरीदें।
0: और भाई साथ ही देखिए अगर मिट्टी की जांच ना कराई हो तो अपने खेत की मिट्टी की जांच भी अवश्य करा लें, जिससे कि पता चल जाए कि भाई खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी हिसाब से आप पोषक तत्व डालें तो आपका जो पैसा भी बचेगा और भाई जो फसल उत्पादन है वो भी अधिक होगा। इस तरह से भाई छोटी छोटी बातों का आपने मौसम के आधार पर ध्यान रखना है जिससे कि आप भरपूर उत्पादन ले पाए। सुनी भाई बातचीत भाइयों से और भी करेंगे, पत्रोत्तर कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम है तो भाई का पत्र भी शामिल करेंगे। आपके हाथ में पत्र भी दिखाई दे रहा है और सबसे पहले सुन लेते हैं ब्रह्मपाल नगर से ये उपदेश
1: जी।

0: बलराम ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये उपदेश सुना आपने, और इसके लिए फरमाइश हमारे श्रोता ने की थी। ये राव करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और एक और पत्र मिला आद ये गांव ग्राम पंचायत तला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बाल बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली थी भाई जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजिमा बेगम और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और ये फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ढाणा नारसन भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया, ऋतिक चिंडालिया और केला देवी की।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से यह है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र है, गांव कुमाड़ा हेड़ा सहारनपुर से लिखते हैं। यह है शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और उनका पूरा
1: साथ ही
0: परिवार।
1: हमें फरमाइश मिली MLB रोड गाजियाबाद से, अब MLB रोड ग्वालियर से भाई सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से फरमाइश मिली है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी, वंश और भूपेश की।
0: आदर्श नगर मालूर पंजाब से पत्र मिला हमने, इन्होंने फरमाइश की थी। राज शर्मा, मनीषा शर्मा, योगेश शर्मा और मेडी शर्मा, सौरभ शर्मा उनका पूरा परिवार। और शिवराज सिंह नगर डबाली देशमुख से ये पत्र मिला, राजेश राजेश और इंदिरा ताई और उनका पूरा परिवार। ये खांडी बुलंद ढाना से पत्र मिला है, ये है दीपाली राम धाड़े और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिया खातून और उनके समस्त परिवार की तरफ से। डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम और उनके समस्त परिवार की तरफ से। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है मंटू शर्मा की, गांव सरेड़ा तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से।
0: और ये पत्र मिला है डुमराव बिहार से, ये डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम आदि अंसारी। और ये समीरपुर बक्सर से पत्र मिला है, राज SD अंसारी, खातून अंसारी, उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और डिंपल की, और ये फरमाइश हमें मिली नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से।
0: मोहली पंजाब से भी पत्र मिला है, ये है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और उनका पूरा परिवार। और अब ये पत्र शामिल कर लेते हैं। ये पत्र हमें भेजा है मनोज कुमार ने, गांव शामली UP से है। ये पूछना चाहते हैं कि अब मानसून लगातार मतलब अब आ ही रहा है देश के अंदर, कहीं कहीं हर जगह पे मानसून आ चुका है, तो क्या मैं इस समय मूंग की खेती कर सकता हूँ? और अगर मैं कर सकता हूँ तो इसके लिए कौन कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? इसके लिए बीज दर कितनी मात्रा में लेना लेना होगा और उन्नत किस्में कौन कौन सी रहेंगी जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, और कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे फसल उत्पादन हमें अच्छा मिल सके?
1: भाई देखिए मनोज भाई, जून जुलाई का महीना यानी मानसून शुरू होने पर मूंग की बुआई अच्छी मानी जाती है। और जहाँ तक मिट्टी की आपने बात की, तो देखिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त और अच्छी मानी जाती है। और साथ ही भाई देखिए खेत की तो तैयारी अच्छी तरह से आपको करनी चाहिए, 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें और पाटा लगा कर खेत को समतल कर लें ताकि जो नमी है वो बनी रहे। और बीज दर की अगर आपने बात की है, तो देखिए जायद की जो फसल के लिए, जो मूंग की फसल के लिए भाई लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सबसे उचित माना जाता है। उन्नत किस्मों की अगर बात करें, तो देखिए मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, पूषा विशाल, पूषा विराट, IPM 02, MH 421, ये सभी किस्में 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, और MH 1762, पूषा 95 31, ये भी भाई 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जहाँ से भी आप बीज लें तो भाई उपचारित बीज लें, और बीज उपचारित ना हो तो भाई उपचारित अवश्य कर लें। जहाँ तक पंक्ति से यानी कतारों से कतार की दूरी की अगर बात करें, तो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर सबसे उचित मानी जाती है। बीज की गहराई की बात करें, तो बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना सबसे उचित माना जाता है। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद भाई देखिए पहली निराई गुड़ाई अवश्य करें, और जिससे कि भाई खरपतवार नियंत्रण हो सके। जहाँ तक सिंचाई की बात है मनोज भाई, तो देखिए बारिश के मौसम में मूंग को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि बारिश लंबे समय तक न हो और भाई फूल आने समय जो फूल

0: भाई उपचारित बीज आप लगाएंगे तो आप ले पाएंगे मूंग फसल से भरपूर उत्पादन।
1: तो अब बातें तो हो गई, आप सुन लेते हैं देवेंद्र सिंह की आवाज में ये उपदेश।

0: सुन रही है तो भाइयों ने देवेंद्र सिंह से सुन रहा हूँ उपदेश। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें
1: जी,
0: कल 5:10 पर आनंद ले सकेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का
1: जी।
0: 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जानकारी देंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए ई कॉमर्स के अवसर। और योजना की अगर बात करें तो योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में जानकारी देंगे
1: जी।
0: 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे जलवायु परिवर्तन एवं खरीफ फसलों की सुरक्षा। साथ ही वही जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में और जो हरियाणा की चुनिंदा जो मंडियां हैं उनके बाजार भाव के बारे में भी जानकारी देंगे। और देखिए भाई, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि भाई हम आपको देश के खेती संबंधी और ग्रामीण विकास संबंधी नई नई जानकारी, और इसके बावजूद भी यदि कोई आपकी समस्या रह जाती तो हर रविवार को हम देते हैं कार्यक्रम कृषि पत्रोत्तर के साथ आपके जो चिट्ठियों के जवाब। तो इसके लिए भाई जरूरी है पता, साथ ही आपके कोई शिकायत सुझाव हो तो भाई हम अवश्य लिखें। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है
1: जी, आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी है feedback@fnh कैपिटल में लिखें @gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप उसका सुझाव दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम संसार हो, कृषि जगत हो, या चाहे लोक रंजनी हो, या किसान की बात हो, या फिर उन्नत किसान हो, अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इन कार्यक्रम में तो आप इस पते पर हमें पत्र लिख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमने आपको बताया ही है।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं गजलों और कव्वालियों का। कार्यक्रम सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से इस कव्वाली को।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में अभी इसी कव्वाली का आनंद ले रहे थे। और ये पेश है अर्थ फिल्म से जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: और इसी के साथ गजल और कव्वालियों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
1: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि इससे मेट्रो विस्तार, बारापुरा एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अनेक जनहितकारी परियोजनाएं अब तेज गति से साकार होंगी। उन्होंने आगे बताया कि पूंजीगत व्यय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिल्ली सरकार को 756 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान कर केंद्र सरकार ने विकास के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और दिल्ली के सामर्थ्य पर अपना अटूट विश्वास भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से दिल्ली के विकास को एक नई शक्ति मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से संशोधित प्रधानमंत्री अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास और उत्थान योजना पीएम उदय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि यह राशि आधुनिक भू सर्वे, जिला स्तर पर पीएम उदय प्रकोष्ठों के गठन और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाए।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग दिल्ली के सभी 13 जिलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीएम उदय प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। इसके अलावा राजधानी की 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भू अभिलेखों का अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए वर्ष 2026-27 में पहले चरण के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में शहरी विकास कोष से इस राशि को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता मिलने से दिल्ली के लाखों निवासियों को संपत्ति अधिकारों से जुड़े लाभ शीघ्र और सुगमता से मिल सकेंगे। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम करने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज गुरुग्राम में नवीन न्यायिक न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस भवन को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिससे न्याय मिलने की गति में तेजी आएगी।
3: इस प्रांगण में न्याय और न्याय की जो भावनाएं हैं वो हमेशा जीवित और जागृत रहेंगी। ये आवश्यक है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी उतने ही संवेदनशील हों, कानून के प्रति सजग हों और लोगों के अधिकारों के प्रति भी वो संवेदनशील हों।
2: इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन संविधान की मर्यादा, न्यायपालिका पर जनता के विश्वास और आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रतीक है।
4: यह भूमि ज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप, वैश्विक निवेश और आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत केंद्र बना है। आज उसी विरासत की धरती पर न्याय का यह आधुनिक टावर ऑफ जस्टिस राष्ट्र को समर्पित हो रहा है।

0: वहीं केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: इस न्यायालय परिसर का उद्घाटन होने से लोगों को समयबद्ध और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। सकलीन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने आरोपियों के कब्जे से फर्जी पंजीकरण दस्तावेजों वाले और इंजन तथा चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ किए गए 12 लग्जरी वाहन भी बरामद किए हैं।
3: पुलिस ने बताया कि ये गिरोह दिल्ली, पंजाब और राजस्थान तक फैला हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की लग्जरी गाड़ियां 4 से 5 लाख रुपए में खरीदते थे। इसके बाद वो वाहनों के इंजन और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार करते और इन वाहनों को असली बताकर पंजाब और राजस्थान में बेच देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और चोरी के अन्य वाहनों का पता लगाने और इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए जाँच जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
2: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश का रोक लगाने के लिए टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मंडल की ओर से नियमित रूप से चलाए जा रहे ऐसे अभियानों के अंतर्गत यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दिल्ली मंडल ने कल आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने के कुल 111 मामले पकड़े गए। अभियान के दौरान 1,11,700 रुपये का रेलवे राजस्व भी वसूला गया। दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उनके शीघ्र तथा प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनसेवा, संवाद और समाधान के संकल्प के साथ दिल्ली सरकार राजधानी के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने आवास पर दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के प्रति जन जागरूकता को लेकर भाजपा के रोहिणी जिलाध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि बैठक में SIR की प्रक्रिया, पात्र मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। कार्यालय ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका एस जानकी का कल मैसूरू में निधन हो गया। उनकी उम्र 88 वर्ष थी। एस जानकी के संगीत सफर पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: 6 दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें दक्षिण भारत की नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था। उन्होंने इलैयाराजा, MS विश्वनाथन, KV महादेवन और AR रहमान सहित अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और कई पीढ़ियों की अभिनेत्रियों की आवाज बनी। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 33 राज्य

0: फिल्म पुरस्कार भी मिले। अपने लंबे करियर में शास्त्रीय, रोमांटिक, लोक, हास्य और भावपूर्ण गीतों को समान सहजता से स्वर दिए। यार बिना चैन कहाँ रे, दिल में हो तुम, सिंगारा विलाना देवा, सकल कला वल्लवन, नगुवा नयन और चिन्नदा मल्लिगे हुए जैसे गीत उनकी मधुर और भावपूर्ण गायकी के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: एस जानकी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जानकी अम्मा की गायकी ने कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस जानकी का निधन संगीत जगत और देश के सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विभिन्न भाषाओं में एस जानकी के गीत पीढ़ियों तक लोकप्रिय रहे और उन्होंने अद्वितीय गरिमा और बहुमुखी प्रतिभा के साथ हर भावना को अभिव्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकी अम्मा के निधन से भारत की संगीत विरासत को अपूर्णीय क्षति हुई है। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस दौरान कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। एशियाई चैंपियन और रजत पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम का सदस्य रही सुमन देवी ने कहा कि फिटनेस स्वस्थ जीवन का आधार है। सुमन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट ने हर किसी को फिटनेस के प्रति जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
2: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ न कुछ वर्कआउट करते रहे।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ाने को लेकर चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा, तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राजधानी की 28 महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रूपये प्रावधान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से पीएम उदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 81वें संस्करण का आयोजन हुआ। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: यह आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त।
9: नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त और मेरे साथ में देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर आदेश त्यागी जी। आदेश त्यागी जी जब बोलेंगे तो उनके शब्द अपने आप बोलेंगे। दूसरे नंबर पर देश के बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार, जमीन से लेकर बहुत ऊपर तक साहित्य के लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाले मेरे भाई डॉक्टर प्रवीण आर्य जी, और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक

0: आदरणीय ज्योति उपाध्याय जी। इस संगोष्ठी के पहली कवित्री के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को।
1: बहुत आभार सर आपका। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय आज आप सभी के बीच प्रेम के भाव लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रेम लिखती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए
0: जी,
1: निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। तो प्रेम के इस सुंदर भाव को मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ।
0: जी, स्वागत है।
1: जोड़ती हूँ आप सभी से।
0: जी, स्वागत है।

0: बहुत सुंदर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पा लेना नहीं, प्रेम का अर्थ तो किसी में खो जाना होता है।
1: जी।
0: तो अपने श्री श्याम के प्रेम में खोइए राधिका, अपने मन के भावों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए क्या कहती है, सुनिएगा।
1: जी, स्वागत।

0: हर बार करते
1: क्या बात,
0: हैं,
1: क्या बात,
0: नहीं एक
1: सुंदर
0: बार
1: सुंदर
0: की है
1: सुंदर,
0: बात, ये हर
1: बार
0: बार
1: करते
0: करते
1: हैं। सही कहा,
0: हैं।
1: बहुत सुंदर,
0: बहुत आभार।
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: देखिए,
1: सुंदर।
0: जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम
1: जी
0: गाती
1: जी
0: हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ और प्रेम ही सुनाती हूँ।
1: जी
0: प्रेम के गीत से आप सभी को जोड़कर
1: स्वागत है, स्वागत
0: मैं
1: जी
0: अपना काव्य पाठ
1: जी जी
0: से विराम दूंगी। उससे पूर्व मैं कहना चाहती हूँ कि गम मिले तो बहुत ना गुजारा हुआ, गम मिले तो बहुत ना गुजारा
1: गुजारा
0: हुआ,
1: हुआ।
0: साथ तेरा कभी ना गवारा हुआ। हम तुझे चाहते ही रहे टूटकर,
1: अरे वाह,
0: हम तुझे चाहते ही रहे टूटकर, पर कभी तू सनम ना हमारा हुआ।
1: बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया।
0: इन्हीं भावों के साथ कहती हूँ
1: जी।

0: क्या बात, क्या बात,
1: भूले रीती बातें सारी, साथ अगर हम चले बने फिर अपना एक जहां प्यारा, दुनिया के

0: क्या बात,
1: क्या
0: बहुत बढ़िया, बहुत
2: बढ़िया,
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: साथियों, अभी आप डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को सुन रहे थे। आपने उनको सारे रंगों और सारे रसों में सुना। हर व्यक्तित्व की अपनी विधा है। हमने ज्योति उपाध्याय जी के इस संगोष्ठी के कुछ क्षणों में कई सारी विधाओं का रसापान किया। मैं सीधा सीधा देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर की तरफ आना चाहूंगा। हस्ताक्षर का अपना एक पौधा है और एक अपना स्थान है। आप कल्पना कीजिए कि एक जो व्यक्तित्व शस्त्र के साथ शास्त्र उठाकर चलता हो, जिसके हाथ में जीवन पर बंदूक रही हो, उन हाथों में कलम उठाता हो, ऐसे बहुत ही महनीय साहित्यकार और देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय आदेश त्यागी जी को मैं इस संगोष्ठी के दूसरे कवि क्रम में आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर आदेश,
0: बहुत आभार चंद्र जी, बहुत आभार,
3: स्वागत सर।
0: देखिये, आप भी प्रेम की कवित्री हैं और मैं भी ताजिंदगी इश्क से वाबस्ता रहा हूँ
3: जी।
0: इश्क ही जिंदगी में उड़ा बिछाया है और अपने अनुभव से कहता हूँ कि जहन में बस ये बात रखिएगा
3: जी,
0: जहन में
3: बस ये बात,
0: बस ये बात रखिएगा, इश्क से एहतियात रखिएगा।
3: बढ़िया बढ़िया बढ़िया,
0: जहन में बस ये बात रखिएगा, इश्क से एहतियात रखिएगा। और बहुत सी बातें होती हैं, इस तरह से चलती रहती हैं, गिले शिकवे भी हैं। मेरा शिकवा इंडिविजुअली किसी से नहीं है, जाति तौर से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात तो मुझे कहनी पड़ती है कि बहुत से लोग समझ नहीं पाए
3: जी,
0: पढ़ नहीं पाए मुझे। वजह क्या थी कि पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात। पढ़ते कैसे तुम मुझे,
3: मुश्किल थे हालात,
0: मुश्किल थे हालात, तुमको आदत लफ्ज की,
4: अरे वाह,
0: मैं खालिश जज्बात।
1: बहुत बढ़िया
0: कि जमाने से जमाने सा गुजरता जा रहा हूँ मैं, जमाने से जमाने सा गुजरता जा रहा हूँ
3: मैं, बढ़िया,
0: कोई बीता हुआ लम्हा सा बनता जा रहा हूँ। और सुनो सुनो, लिख कर कहीं रख लो मुझे अपनी किताबों में, सुनो लिख कर कहीं रख लो मुझे अपनी किताबों में, तुम्हारी याद की जद से निकलता जा रहा
1: हूँ। बहुत बहुत
3: बहुत
1: खूबसूरत।
0: और याद की बात तो इस तरह से कि अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, दाद की फरियाद की तादाद हो जाऊंगा मैं, अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगा मैं, दाद की फरियाद की तादाद हो जाऊंगा मैं, और घर भुलाने की मुझे ये कोशिशें जारी रही, तुमको एक दिन मुंह जबाने याद हो
3: गया। बहुत सुंदर।
0: घर भुलाने की मुझे ये कोशिशें जारी रही, तुमको एक दिन मुंह जबानी याद हो जाऊंगा मैं। मैं अपने हाथ में घड़ी नहीं बांधता। इसका कारण क्या है कि उमूमन बात तो वैसे भी आती नहीं सब तक, उमूमन बात तो वैसे भी आती नहीं लब तक, पहुंचती तुम तलक कैसे कि जब पहुंची नहीं सब तक।
3: बढ़िया,
0: हमारा हाथ, हमारा हाथ तुमने जिस घड़ी छोड़ा था बस तब से, हमारा हाथ तुमने जिस घड़ी छोड़ा था बस तब से, कभी फिर हाथ में हमने घड़ी बांधी नहीं तब।
1: बहुत शानदार।
0: चाय शुगर है तो नहीं, लेकिन चीने नहीं मिलाता हूँ। कारण क्या है कि तुम्हारे हिजर का लुत्फ यूं उठाता हूँ, तुम्हारे हिजर का लुत्फ यूं उठाता हूँ, तुम्हारी कुर्सी पर आकर मैं बैठ जाता हूँ, और तुम्हारे शीरी लबों ने छुई थी ये प्याली, तुम्हारे शीरी लबों ने छुई थी ये प्याली, मैं तब से चाय में शक्कर नहीं मिला।
1: बहुत खूबसूरत।
0: और चश्मा लगाने की वजह है, कहा किसने मैं पढ़ने के लिए चश्मा लगाता हूँ, कहा किसने मैं पढ़ने के लिए चश्मा
3: लगाता हूँ,
0: ये ऐसा राज है जिसको मैं सबसे ही छुपाता हूँ। मेरी आंखों के कागज पर तेरी तस्वीर छाया है, छपी हुई है, मेरी आंखों के कागज पर तेरी तस्वीर छाया है, उसे महफूज रखने के लिए शीशा चढ़ाता हूँ।
1: बहुत बढ़िया सर।
0: और देखिए कि शब्द वही हैं, भाव वही हैं। एक साधारण व्यक्ति और एक कवि में अंतर क्या है
3: जी?
0: जो चीज गद्य में आपको साधारण लगती है वो पद्य में थोड़ी सी आपको अलंकृत लगती है।
3: जी, जी।
0: बात वही है।
3: जी जी।
0: देखिए किस तरह से कि तुम इस ओर नहीं तकते, तुम इस ओर नहीं तकते और हम तकते नहीं थकते। तुम इस ओर नहीं तकते,
3: तुम इस ओर नहीं तकते
0: और हम तकते नहीं थकते। कितना कितना कितना सोचते हैं तुमको, कितना सोचते हैं तुमको, तुम ये सोच नहीं सकते।
1: बहुत खूबसूरत।
0: जहाँ ना पहुंची रवि वहां पहुंचे कवि, यही कारण है
3: जी
0: कि दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, हैरा होता है वही जिससे कहें। कि दास्तां के कहीं जो हिस्से कहें, हैरा होता है वही जिससे कहें। और सब निकलते हैं तेरे दीवाने, सब सब निकलते हैं तेरे दीवाने, सब निकलते हैं तेरे दीवाने, तेरे किससे कहें तो किससे कहें।
3: बढ़िया।
0: तेरे किससे कहें तो किससे कहें।
2: एक शब्द दो दो बार के, दो बार
0: कि जिसके होने से मेरी हस्ती थी, जिसके होने से मेरी हस्ती थी,
3: मेरी हस्ती थी,
0: जो मेरे दिल के पास रहती थी, जिसके होने से मेरी हस्ती थी, जो मेरे दिल के पास रहती थी, दुख है वो भी मुझे नहीं समझी। दुख है वो भी मुझे नहीं समझी, मैं समझता था वो समझती थी।
3: अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
1: वाह वाह।
0: मैं समझता था वो समझती थी। और
3: जी जी,
0: बाकी ये है कि हम तो बचपन के बिगड़े हुए आदमी हैं। हमने तो इश्क को ये उड़ा बिछाया, हमने तो हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या। हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या, बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या। कि हम थे बचपन के बिगड़े, सुधरते भी क्या, बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या, और उम्र भर दुनियादारी ना आई हमें। उम्र भर दुनियादारी ना आई हमें, इश्क भी अगर ना करते तो करते भी।
2: वाह वाह
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है,
0: बढ़िया बहुत,
1: क्या बात,
3: बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: देखिए जो शायरी जानते हैं
3: जी,
0: जो श्रोता हमारे आकाशवाणी के कुछ ऐसे हैं जो जिनको सुनना तो अच्छा लगता है लेकिन वो शायरी की जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते नहीं है। उनको बताइए कि शेर जो होता है, शेर में दो पंक्तियां होती हैं, तो जो पहली पंक्ति होती है उसे उला मिश्रा कहते हैं, उला कहते हैं साधारण भाषा में, दूसरा सानी मिश्रा होता है, सानी कह देते हैं। सानी के दो मतलब होते हैं, दूसरा एक तो ये मतलब है
3: जी,
0: और एक हमारा जो मिश्रा दूसरा सानी, इसको भी सानी कहते हैं। और सानी का मतलब होता है जिसके जो है जो उपमा है, ठीक है ना, कि वो उसकी उपमा है, तो वो उसका सानी है। लेकिन कुछ लोग अनुपमेय होते हैं, अनुपमा है, तो अनुपमेय भी लोग होते हैं। उसको देखिए,
3: स्वागत है सर।
0: कि हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनकर हैरानी हो, हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनकर हैरानी हो, या कुछ की नजरों में ऐसा कह देना नादानी हो, तेरा नाम लिखा उला में, पहले मिसरे में, कि तेरा नाम लिखा उला में, तब से शेर अधूरा है।

0: तेरा नाम लिखा उला में, तब से शेर अधूरा है, अब तुझ लासानी का कोई सानी हो तो सानी।
1: बढ़िया
2: सुंदर सर।
0: अब किसी अनुपमेय के उपमा हो तो तभी तो दूसरा सीन। अब तुझ लासानी का कोई सानी हो तो सानी हो।
2: बहुत सुंदर।
0: एक देखें कि जो है वो करते किसी से क्या गिला, करते किसी से क्या गिला, था कौन किससे कम, करते किसी से क्या गिला, था कौन किससे कम, कब वक्त के थपेड़ों ने ही लेने दिया दम। करते किसी से क्या गिला, था कौन किससे कम, कब वक्त के थपेड़ों ने भी लेने दिया दम। और बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर, कि बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर, करते न गम डिलीट तो हो जाते हैं।
2: बढ़िया
0: बफरिंग में घूमता रहा खुशियों का फोल्डर,
3: बफरिंग
0: करते ना गम डिलीट तो हो जाते हैं हम।
2: सुंदर,
1: बहुत खूबसूरत।
2: अभी हम देश के उम्दा साहित्यकार ये कहें कि महनीय शायर डॉक्टर आदेश त्यागी जी को सुन रहे थे, बेहतरीन शायरी सुनी। अब मैं उस शख्सियत को आपके सामने लाना चाहता हूँ इस संगोष्ठी में तीसरे कवि के रूप में, जिसने देश और दुनिया में कविता इस पद के माध्यम से हिंदी भाषा में एक अलग पौध खड़ी की। व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं अगले क्रम में बिना किसी भूमिका के डॉक्टर प्रवीण आर्य जी का आमंत्रित कर रहा हूँ।
1: स्वागत।
2: डॉक्टर प्रवीण आर्य जी आए और अपने उसी अंदाज बयां में अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर प्रवीण आर्य जी।
4: सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। मेरा आज का दिन आनंददायक बन गया है जब इतनी खास काव्य गोष्ठी में डॉक्टर आदेश त्यागी जी, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी और संचालक महोदय भी उत्कृष्ट श्रेणी के कवि हैं, उनके बीच में मैं आज काव्य पाठ पुनः कर रहा हूँ। कुछ रुबाइयों के साथ प्रारंभ करता हूँ।
5: लो चलन बद चलन हो गया।
0: बहुत मारक मिश्रा है आप प्रवीण जी।

0: लो चलन बद चलन हो गया
1: जी,
0: प्यार ममता भरा आंगना, प्यार ममता भरा आंगना, आज सद भवन
1: हो गया।
2: क्या उपमा, क्या उपमा,
0: चलन
2: अनुपमेय उपमा,
0: बत चलन हो गया। जितने आपकी पंक्ति मारक क्षमता मैंने देखी आदेश जी,
2: आज के आप स्वयं बहुत मारक कह रहे हैं।
0: आज की जो वर्तमान परिदृश्य है
2: जी,
0: और आज की जो जीवन शैली है, रात कैसे कटे क्या कहे।

0: बहुत सुंदर है,
1: लो
0: बहुत सुंदर,
1: चलन बद चलन हो गया।
0: बहुत सुंदर,
1: बहुत
0: बहुत
1: सुंदर।
0: सुंदर।
1: आँख से पूछ आँसू रहे क्यों वतन
0: बहुत
1: बेवतन
0: सुंदर,
1: हो
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, बहुत
1: गया,
0: सुंदर,
1: क्यों
0: वतन
1: वतन
0: लाजवाब हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
1: बेवतन
0: शानदार जी,
1: हो
0: शानदार। आर्य जी,
1: गया।
0: बहुत सुंदर।
1: मैं भी वंदे मातरम को मूल गीत की भावना के साथ कुछ नया लिखने का प्रयास करूं।
0: जी जी
1: बिल्कुल, गीत
0: स्वागत है,
1: नया है,
2: मातृभूमि की
0: स्वागत।
2: वंदना
0: हाँ
2: जैसी भी करें
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: तो नई कोशिश है, कुछ गुण दोष हो सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है प्रवीण जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद। वंदे

0: क्या
1: वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा शीश हिमालय मुकुट सुशोभित सागर पांव पखार रहा चीर अटक से कटक तलक धरती का रूप सवार रहा भारत माता जग विख्याता भारत माता जग विख्याता अद्वितीय अनुपम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
2: शानदार शानदार
1: वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सूरज की पहली किरणें नित जिसको मा

0: आते, हर दिन नव उत्सव ले आते, छा छा छे
1: क्या बढ़िया बढ़िया
0: मौसम। वंदे
1: बढ़िया
0: मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम,
1: बढ़िया बहुत
0: वंदे
1: सुंदर
0: मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे, चार वेद छह शास्त्र उपनिषद मानव का निर्माण करे,
1: शानदार शानदार
0: रामायण गीता गायत्री जन जन का कल्याण
1: कल्याण करे। बढ़िया
0: करे,
1: बढ़िया बढ़िया
0: सबसे सम आदर पाते हैं, सबसे सम आदर पाते हैं सारे पथ धर्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम,
1: बहुत सुंदर
0: वंदे
1: बहुत सुंदर
0: मातरम
1: बहुत सुंदर
0: वंदे मातरम वंदे मातरम।
1: बहुत सुंदर
0: द्वेष घृणा से दूर परस्पर प्यार भरा व्यवहार करे, श्रद्धावानी धर्म हमारे माँ की जय जयकार
1: क्या
0: करे,
1: बात है,
0: इसके हित ही जीने मरने की ले आज कसम। वंदे
1: बहुत सुंदर बहुत
0: मातरम
1: सुंदर
0: वंदे
1: बहुत सुंदर
0: मातरम वंदे
1: वंदे
0: मातरम,
1: मातरम
0: वंदे मातरम वंदे
1: वंदे
0: मातरम वंदे
1: मातरम।
0: मातरम। आप सभी का
1: बहुत
0: धन्यवाद।
2: बहुत
1: सुंदर
2: बहुत सुंदर बहुत
1: बहुत
2: सुंदर
1: बहुत
2: बहुत
1: सुंदर
2: सुंदर
1: सुंदर
2: पंडित जी, जो अब तक हमको पढ़ाते रहे, इस संगोष्ठी का संचालन करते रहे, आदरणीय डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, अब उनका समय है कि वो हम सबको वह बताएं वह सुनाएं जो उन्होंने देखकर समझकर अनुभव से हम अपनी कविताओं में उकेरा है। चार मिसरों से इन्हें बुलाता हूं कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, कि हाथों में मेरे बाल कर जो रख दिया दिया, मन तब से मंत्र मंत्र है तन है दिया दिया, और जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, जो मांगता तो मांगता भी क्या मैं उससे तब, कुछ बोलने से पहले जिसने कह दिया दिया
0: आहा,
2: क्या
0: दिया।
2: बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: आदरणीय चंद्रमणि जी,
2: क्या बात है,
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद,
2: स्वागत है सर।
1: साथियों, जिस मंच पर देश के तीन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पढ़ लिए हूँ, आदरणीय डॉक्टर आगेश त्यागी जी
0: जी, आप भी मान्य
1: आदरणीय डॉक्टर प्रेम आर्य जी और आदरणीय ज्योतिपाध्याय जी, मैं चाहता हूँ कि बहुत सुंदर पढ़ा तो मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ
0: जी।
1: मैं अपनी एतुकांत कविता की कुछ लाइन पढ़ता हूँ।
0: स्वागत कविता लिखते हैं, स्वागत है आप भावों के।
1: अब मेरा मन संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है,
0: आहा,
1: अब मेरा मन
0: संपूर्ण
1: संपूर्ण विराम ले लेना चाहता है, अंदर से इच्छाएं बहुत कुछ कहती सी प्रतीत हो रही हैं, पता नहीं क्यों। अब अंदर से जीवन पथ पर आगे बढ़ने बढ़ाने की प्रक्रिया का समय सावधान कर रहा है।
0: क्या बात है,
1: मुझे लग रहा है मेरे मन के अंदर कोई बैठा है जो मेरे मन को निरंतर निर्देशित कर रहा है कि दुनियादारी की दौड़ से अब विराम ले लिया जाए, खासकर संग्रह और संचय जैसी चीजों से।
0: क्या बात क्या बात क्या बात।
1: अब संग्रह और संचय जैसी चीजों से अब मुझे मन में लगता है कि जो कुछ हम सभी के पास है वह बहुत है। ज्यादा संचय ज्यादा संग्रह भला अब तुम्हारे किस काम का।
0: वाह,
1: जो उसको सकारात्मक प्रयोग भोग करेंगे वह भी तो भविष्य में अपने माफिक कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे।
2: क्या बात है सर,
0: क्या बात।

0: आखिर हम सभी सीमित समय के मेहमान होने के बावजूद भी इतने सारे संग्रह के पीछे पड़े हैं, जबकि हमारी शारीरिक मानसिक स्थिति अब जवाब देने लगी है। वह बार बार हमें संकेत कर रही है। कई बार जब मैं एकांत में चिंतन में बैठता हूँ तो मेरे मन के कोने में महसूस होता है कि जितना जीवन का हिस्सा जिया हमने, अब उसका बहुत कम हिस्सा ही तो जीने के लिए हमारे पास शेष बचा है।
1: बहुत अच्छा, बहुत
2: सत्य, क्या बात है।
0: अब यह सने सने आभास होने लगा है, फिर भी हम सभी देख रहे हैं चारों तरफ वातावरण की आपाधापी, थोड़ा और और थोड़ा।
1: बहुत अच्छे चंद्रमा जी, बहुत अच्छे,
0: धन्यवाद सर।
1: आग्रह है कि कम से कम एक ऐसी कविता और पढ़ें।
0: धन्यवाद सर। एक और छोटी सी एतुकांत कविता है कि कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में, कभी सोचा तुमने कितने अवशेष बचे हैं हमारे जीवन में, हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के।
1: क्या बात है।
0: हम कितने अवशेषों को सहज कर रख पाए हैं अपने पूर्वजों के, हम बस पीढ़ी दर पीढ़ी हुंकार भरते हैं अपने आप में ही बिना किसी खोज के।
1: क्या बात है।
0: हम बहुत कुछ खोजते हैं दूसरों के इतिहास में हमेशा से, पता नहीं क्यों हम अपने आप को घोषित कर देते हैं बहुत ज्यादा व्यवहारिक, बहुत ज्यादा आदर्शवादी, बहुत ज्यादा बहुत कुछ कुछ।
1: सही बात।
0: लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो दूसरों के इतिहास को बारीकी से खोजते हैं, उनके इतिहास में बिंदुवार जाना चाहते हैं, तह तक जाकर, कभी वे स्वयं अपने इतिहास के बारे में भी आत्मसात करें, अवलोकन करें, खोजें अपना भी उसी तरह स्वयं का इतिहास, करें तुलनात्मक अध्ययन अपने इतिहास से सामने वाले का। हम सभी आदतन कभी ना कभी दूसरों के इतिहास को बिंदुवार खोजने में अभ्यस्त हो जाते हैं। शायद हमें लगता है कि दूसरों का इतिहास खोजना बहुत आसान है, जैसे दूसरों के बारे में बोलना, बयां करना
1: बहुत आसान।
2: सही बात।
0: लेकिन जब अपने इतिहास को पढ़ते समय स्वयं के बारे में परत दर परत खुलती हैं नकारात्मक रूप में, तो हम अपने आप में मौन साध लेते हैं। फिर हम अपने स्वयं के इतिहास का अवलोकन आत्मसात नहीं करते, हम खुद स्वयं के इतिहास की चर्चा करते हुए मौन मुख हो जाते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे।
0: साथियों, आज की संगोष्ठी में हमारे साथ, मैं पुनः कहूंगा कि देश के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मौजूद थे। साथियों, आपको ये गोष्ठी पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
1: बहुत आभार।
3: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर आदेश त्यागी, डॉक्टर प्रवीण आर्य, डॉक्टर ज्योति उपाध्याय और डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेजाब से, आवाज है नितिन मुकेश और अलका याग्निक की।

भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी।

0: और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
4: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
5: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन ही बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय

तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील है। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और विंबलडन टेनिस में आला दर्जे के येनिक सिनर और दूसरे दर्जे के एलेक्जेंडर ज़वेरोव के दरमियान मर्दों के सिंगल्स का फाइनल लंदन में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर खत्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। भारत ने इस मदद पर ओमान के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के जारी वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उसने एक बार फिर कहा है कि सिफारती हल के लिए जारी मुजाकिरात जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल किया जा सके। अमरीका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुली है जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। अमरीका ने यह ऐलान ईरान के पासदारान इनकलाब IRGC की तरफ से आबनाए हुरमुज को मजीद कोई नोटिस जारी किए जाने तक बंद करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के बाद किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहे जाने के बाद दिया गया है कि आबनाए हुरमुज कमर्शियल जहाजों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा कि समंदर में जहाजों की आमदोरफ्त आबनाए हुरमुज के रास्ते जारी है और अमरीकी फौजें बकौल उसके ईरानी जारहियत हिरासानी धमकियों और मनमाने ऐलानात के बावजूद आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। उसने जोर देकर कहा कि ईरान आबनाए हुरमुज को कंट्रोल नहीं करता और महफूज राहदारी वाले रास्ते खुले हैं। वियतनाम के फूकोक जजीरे के करीब तेज रफ्तार कश्ती पलटने के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों का जज्द खाकी आज हो ची मिन सिटी पहुंच गया है। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जरूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद महलूकीन के जज्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। सफारतखाने ने कहा कि वो कौंसिल खाना और वियतनाम के हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि जज्द खाकी की वतन वापसी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। सफारतखाने ने बताया कि महफूज निकाले गए 17 भारतीय सयाहों में से 16 सयाह को भारत लाया जा रहा है, जबकि एक सयाह जिसकी हालत संगीन बनी हुई है फूकोक के एक अस्पताल में जेर इलाज है। इस दौरान वियतनाम के सदर ली मिन होंग ने हादसे की जांच का हुक्म जारी किया है और हुक्काम को हिदायत दी है कि कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। आज मुल्क भर में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का एहतमाम किया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी तीन दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्वान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जनभवन के अफसरान और मुलाजमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से बुजरा और अवामी नुमाइंदों ने NGO अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40,29,00,000 पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے شہر گاندھی نگر

समय की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ, मसावात, तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वज़ीर आज़म को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए राब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरिये के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, अख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी अमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का मुख्तसर बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी साथी थे। उनकी उम्र 71 साल रही। सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान ग्राहम अमरीका की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम आवाज के तौर पर उभरे थे। अमरीका, बरतानिया और एक दर्जन दीगर मगरबी और एशियाई ममालिक ने आज दो बार जोर देकर कहा है कि बहिरे चीन में चीन के वसी दावे 2016 के सालिसी के फैसले की बुनियाद पर गैर कानूनी हैं। 14 ममालिक की तरफ से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो मुतनाज़ा आबी हदूद में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले इकदाम को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। दूसरी जानब 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने एक अलहदा बयान जारी करते हुए इस फैसले को तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए एक तारीखी फैसला करार दिया है। यह बयान 12 जुलाई 2016 को दहेग में कायम करदा ट्रिब्यूनल के सालिसी के फैसले के जिम्न में आए हैं, जिसमें कहा गया था कि यह तारीखी फैसला फरीकैन को हतमी और कानूनी तौर पर पाबंद बनाता है। ताहम चीन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसकी पाबंदी लाजिम नहीं है। चीन ने इस बात का इरादा किया कि बीजिंग इसे तस्लीम नहीं करता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने की वजह से 40 अफराद हलाक हो गए। बहुत सी जानें जमीनी तोदे खिसकने की वजह से जाया हुई हैं और बखिया ज्यादातर अमवात पानी में डूबने या सैलाब में बह जाने और दरियाओं की तुगयानी के सबब हुई हैं। अफगानिस्तान के ज़राअत, पाशी और मवेशियों के उमूर के वजीर अताउल्ला उमरी ने आज भारत का अपना 6 रोजा दौरा मुकम्मल किया। वजारत खारजा के मुताबिक अफगान वजीर के साथ एक आला सतही वफद भी था। गुज़श्ता साल अक्टूबर के बाद से अफगानिस्तान की तरफ से वजारती सतह का भारत का यह चौथा दौरा था, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी की अक्कासी करता है। इस दौरे में अफगानिस्तान के वजीर ने भारत के ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। दोनों फरीकों ने बाहमी ताल्लुकात ने ज़राअत, आबपाशी, ज़रई तहकीक, सलाहियत साजी, ज़रई तजारत में तआवुन को फरोग देने पर तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक फर्जी तस्वीर से इनकार किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि एथेनॉल की आमजिश वाले पेट्रोल से गाड़ियों के ईंधन की टंकी में खराबियां आ सकती हैं।
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने इस दावे को झूठा करार दिया है। ब्यूरो ने कहा है कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने वजाहत की है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से सप्लाई किया गया E20 पेट्रोल भारतीय मेयारात के ब्यूरो की तरफ से मुकर्रर किए गए पैमाने के मुताबिक है। वजारत ने कहा कि एथनॉल और पेट्रोल मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में जम हो जाते हैं और ये अलग नहीं होते और न ही किसी तरह की अलग अलग परतें बनाते हैं।

0: has performed throughout the country in various prestigious concerts.
1: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
0: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Sathlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drutteental, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drutteental.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: Yah karyakram Akashvani ke Dharwad kendra mein रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी धारवाड़ एंड रिलेट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे।

दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पर्यावरण संरक्षण संकल्प इवेंट इन न्यू दिल्ली टुडे, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एम्फसाइज्ड दैट प्लांटिंग ट्रीज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर.
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा,
2: एज टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, द क्लाइमेट क्राइसिस विल ओनली डीपन. एस्टिमेट सजेस्ट दैट इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्यूज, क्लाइमेट चेंज कुड रिड्यूस ग्लोबल जीडीपी बाय एज मच एज 20% बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी. द रिजल्टिंग इकोनॉमिक क्राइसिस कुड बी सो सीवियर दैट रिकवरिंग फ्रॉम इट वुड बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. देयरफॉर इफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कंटिन्यू एट द करंट पेस बाय द ईयर 2050, द अर्थ विल फेस सीरियस एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस.
1: चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.
0: Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav also flagged off the plantation drive in Indore, which targets to plant 21 lakh saplings across the state. The government has refuted a fake image circulating on social media claiming that ethanol-blended petrol can cause problems in a vehicle's fuel tank. The Press Information Bureau's fact-check unit has termed the claim as false. It said the Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that E20 petrol supplied by oil marketing companies conforms to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards. Former Qatar Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one day national mourning tomorrow as a mark of respect for Father Amir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Amir of Qatar. In the historic one-off women's test at Lord's Cricket Ground in London, England were 130 for 6 in their second innings on day 3 when reports last came in. Earlier, India declared their second innings at 341 for 7, setting a huge target of 457 for the hosts. Yastika Bhatia became the first female test centurion at Lord's, scoring 113 runs. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर. ये वक्त है आपकी और हमारी मुलाकात का और बहाना है आपकी फरमाइश कार्यक्रम का. आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत, और तलत से राबता कायम करने के लिए, अपनी बात अपनी फरमाइश पहुंचाने के लिए आपको चाहिए एक ईमेल एड्रेस. तो जनाब आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए. हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com, ipradiodelhi@gmail.com.

किसी ना किसी से कभी ना कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है, और अगर आपको ये मालूम हो जाए कि वो कहीं किसी वजह से परेशान है, तो आपके दिल की बेचैनी आपको जरूर दस्तक दे देती है कि कहीं आपका कोई खास परेशान है। भले वो आपको अपनी परेशानी ना बताए, छुपा ले, लेकिन हाँ, आपका दिल ये गवाही जरूर दे देता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। यही वो राबता होता है, यही वो रास्ता होता है जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, और यही जुड़ाव जो है वो इंसान के लिए दूसरे इंसान की अहमियत को बढ़ा देता है। ऐसे ही आपकी अहमियत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। आप हमें सुनते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी राय हमसे शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप इस चीज को कायम रखने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com।

आज मेरी कोशिश है कि आपको कुछ ऐसे गीत भी सुनवाऊं जो आपने कभी कभार सुने होंगे या फिर हो सकता है कि नहीं सुने होंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी, अनुरोध है कि आप भी कुछ ऐसे गीत, पुराने गीत ज़रूर हमें भेजिए जो आप सुनना चाहते हैं, जो कभी सुने थे और आज फिर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा

जी बिल्कुल, जिसके नैना लग जाते हैं वो नदिया के पार और पहाड़ों की चोटियों पर और न जाने कहाँ कहाँ वो अपना डेरा जमा लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और नैनों की जो तलाश है ना, वो कहीं ना कहीं बस भटकती रहती है जब तक कि वो उस चीज का दीदार ना हो जाए। और मेरी भी नजरें ऐसे ही भटक रही थी, लेकिन मुझे दीदार हो गया है आपके बहुत सारे मैसेजेस का। तो पूरी कोशिश है कि आप सभी की फरमाइश मैं पूरी करूं, और एक बहुत अच्छा सा अंदाज मुझे नजर आया फरमाइश को पूरा करवाने का भी, और अच्छा लगा मुझे उनका तरीका कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात भी कह दी और अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचा दी है। और ये हैं जनाब किशन वंजानी जी, और आपने कहा है कि आज का कार्यक्रम अच्छा आपको अच्छा लग रहा है, और आपने कहा है कि मैं तो अपने दोस्तों के लिए यही कहूंगा कि एहसान मेरा मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तो मैं समझ गई कि आपका इशारा किस तरफ है। उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे और आप अपनी पसंद का गीत भी सुनेंगे, लेकिन आपने कहाँ से हमें मैसेज किया है ये लिखा नहीं है इस मैसेज में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और अब एक आवश्यक सूचना।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मैसेजेस की झड़ी लगी हुई है, ऐसे ही बहुत खूबसूरत सा मैसेज हमारे पास आया है दिल्ली के कृष्णा नगर से, और ये मैसेज करने वाली हैं नंदिनी चतुर्वेदी और शौर्य चतुर्वेदी। आपने जिस गीत की फरमाइश की है नंदिनी और शौर्य, उम्मीद है कि हम आपकी फरमाइश जरूर जरूर पूरी करेंगे, और ये भी आशा करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे।

रूठने का मजा तभी है कि जब मनाने वाले में वो शिद्दत नजर आए कि वो बहुत अच्छी तरह से आपको मना लेगा। कहीं पर भी ये लगे कि सिर्फ काम चलाओ बात होगी तो वहां रूठने का मजा भी नहीं आता है। हमारे पास मैसेज आया है नारायण खर्चे जी का, आप हमें वंदना नगर इंदौर से मैसेज कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, और इसके साथ साथ हमें टीडी मल्होत्रा ने मैसेज किया है चंडीगढ़ से, गगनदीप थांडी जी ने हमें मैसेज किया है, और आपका इतना स्नेह मिला, बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप जी। सिद्धार्थ गोंडाने जी ने हमें मैसेज किया है, और मैसेज हमारे पास अनिल जैन का भी आया है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनिल जी आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आप मेरठ से हमें मैसेज कर रहे हैं, मालियान से माफ कीजिएगा, और आपके साथ हैं जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीव्यम जैन, और इसके साथ साथ अनिल कुमार गौहानकर जी ने हमें मैसेज किया है, राजेश वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमारे पास आया है कैथल से, और आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो बहुत जबरदस्त

दस्तगीत है, जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा हैं, और आपने हमें इस गीत की फरमाइश की है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश को हम पूरा करें। रोजी डेकोस्ट्रा ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ साथ कमल का हमारे पास मैसेज आ गया है, नंद किशोर घाटे ने हमें मैसेज किया है, और राजकुमार डूडी ने हमें मैसेज किया है हिसार से। आपके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र। अकरम हुसैन प्रिंस ने सीतामढ़ी बिहार से मैसेज किया है। सुदर्शन शाह का मैसेज हम तक पहुंच चुका है, और अब सुनते हैं एक वो गीत जो आपकी फरमाइश है।

सभी की माकूल आशाएं पूरी हो जाएं और मुनासिब आशाएं पूरी हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैसेज हम लेते हैं, हमारे पास हिमकेश्वर साहू जी का मैसेज आ गया है। लक्ष्मण जगताप ने हमें मैसेज किया है काष्टी से, समता नगर का।

काश्ती से हमें मैसेज किया है, ये नाम मैंने पहली बार सुना है काश्ती। आपके साथ हैं लक्ष्मण जी और श्रेया शिंदे और मानसी शिंदे। सत्येंद्र चंसौलिया ने हमें मैसेज किया है, आप हमें पजौनिया जिला जालौन से मैसेज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और आपने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल कर लें। संजय ढींगिया जी ने हमें मैसेज किया है बागपत उत्तर प्रदेश से, आपके साथ है नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। राजेश वर्मा ने हमें मैसेज किया है, और जनाब 11:10 वाला ये कार्यक्रम है, ये वो कार्यक्रम नहीं है जिसमें आपने मैसेज कर दिया है। सतीश अनेजा ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ साथ कमल बालूजा का मैसेज हमारे पास आया है, और हमारे पास आया है मैसेज पी एस नौहानकर जी का, और इसके साथ साथ मोहम्मद कमर ने हमें मैसेज किया है, आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मजहर ने हमें मैसेज किया है और आप कह रहे हैं कि अपनी पसंद का कोई भी गीत प्ले कर दें। आर कुमार ने हमें मैसेज किया है पंजाब से, आपके साथ है मिंटू टॉमस। और एस एम जावेद का हमारे पास मैसेज आया है, आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है, आपके साथ हैं जावेद, अंजुम और शगुफ्ता। इसके साथ एस के साहू ने हमें मैसेज पुटिया कला दुर्ग से किया है। मुकेश भट्टा जी का मैसेज हम तक पहुंच चुका है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, और राजपाल शर्मा ने हमें मैसेज किया है। फागुराम यादव संबलपुर से, कांकेर से हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। बिट्टू गगनेजा जी का हमारे पास मैसेज आया है, और आज आपने बिल्कुल सही टाइम पर राम राम जी कहा है, कोई भी गीत आपने कह दिया है। और जलालाबाद वेस्ट से हमें आप मैसेज कर रहे हैं, सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा आपके साथ हैं। के साथ साथ हमारे पास जो मैसेज है वो है बोधराज खोरवाल जी का, और आपकी गीत की फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। रियासत हुसैन ने भी हमें जसपुर उत्तराखंड से मैसेज किया है, तो अब सुनते हैं ये गीत जिसकी फरमाइश हम तक पहुंची है आपके जरिए।

और ये गीत फिल्म सुजाता का सुनील दत्त और नूतन जी पर फिल्माया हुआ, और पूरा गीत ये टेलीफोन पर ही है, ब्लैक कलर का रिसीवर है, पूरा गीत मेरी आंखों के सामने इस वक्त आ गया है। और इसकी फरमाइश हमें भेजी थी इंद्रभान सिंह ने, आप हमें चिरमरी कुरासिया से मैसेज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप कार्यक्रम सुन रहे होंगे। सोमदत्त का मैसेज हमारे पास आया है जिला पटियाला से, और आपके साथ हैं कौरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। इसके साथ साथ हाजी मजहर ने हमें मैसेज किया है, और दिग्दर्शन गौड़ का हमारे पास मैसेज आया है बाईपास मेरठ से। आपके साथ हैं कविता गौड़ और बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है। शिषपाल वर्धाना जी ने मैसेज किया है और आपको कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। सुनील पाठक जी ने हमें मैसेज किया है और जनाब आप हमें सुबह की राम राम कह रहे हैं। तो जी चलिए, राम राम सही है, बस सुबह नहीं है, रात है। और मैसेज हमारे पास आया है गव्या मल्होत्रा का, इतनी ढेर सारी इतनी प्यारी दुआओं के लिए गव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ मैसेज में हमारे पास आ गए हैं दिलावर खान भी, और आपका मैसेज हम तक पहुंच चुका है। और हर बार की तरह, हर रोज की तरह, इस बार भी कुछ लोग हैं जो दनादन एक के बाद एक बहुत सारे मैसेजेस हमें भेज देते हैं। अरुण कुमार पांड्या जी ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। दारा सिंह ने हमें मैसेज किया है चौटाला हरियाणा से, आपके साथ हैं संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। तो सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत फिल्म है आर पार, और आवाज है गीता दत्त जी की, गाना भी बहुत मजेदार है।

और अब धीरे चलने की तो बारी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वक्त जो है वो फिसला जा रहा है हाथों से। हमारे पास मैसेज आया है मुल्तानी ढांडा पहाड़गंज से, अनिल साहब आपके ये हमने बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी ले लिए हैं, शामिल कर लिए हैं, आप प्लीज़ सुने ज़रूर। और इसके साथ साथ स्वीटी जौड़ा ने हमें मैसेज किया है, कृष्णा पार्क दिल्ली से आपके साथ है सुखविंदर सिंह और सीटी दीवान। मैसेज हमारे पास आया है जाकिर का, और आप हमें मंसूरी से मैसेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सुदर्शन मुखी जी ने हमें मैसेज किया है, और आपके साथ अनीता मुखी और सिमरन मुखी, और भी मैसेज हमारे पास हैं जो हमें शामिल करने हैं। अश्विनी चुग ने हमें मैसेज किया है, और आपको हर एक गीत पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पंचकुला से हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं आशु, अश्विनी और गोविंद चुग। इसके साथ छोटे अंसारी साहब ने हमें मैसेज किया है संभल से, मैं तलत हूँ छोटे अंसारी साहब। और इसके साथ साथ हमारे पास उषा मोहन का भी मैसेज आया है, आपका भी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत।

अब ये इस कार्यक्रम का होगा अंतिम गीत। इसी के साथ मैं यानी तलत लेती हूँ आपसे इजाजत। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में और 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुस जलडोमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुस जलडमरु मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरु मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पौधे लगा

0: पाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए प्रति चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कल अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। साथियों, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। साथियों, ये समय है 12:10 और समय वाकई बहुत ही खूबसूरत है। वो किस वजह से खूबसूरत है? जी हाँ, इस वजह से खूबसूरत है कि आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आज की प्रस्तुति जिनकी होगी, जी हाँ, वो है दिग्गज संगीतकार आनंद मिलिंद। नमस्कार, आदाब, स्नेहिल अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, जहां हम उन सुर साधकों को याद करते हैं जिनकी धुनों ने न जाने कितने दिलों की धड़कनों को संगीत की लय दी। आज की यह महफिल समर्पित है उस संगीतकार जोड़ी को जिन्होंने प्रेम, मासूमियत, दोस्ती, जुदाई और जिंदगी के हर रंग को अपनी मधुर धुनों में पिरो दिया। यह है हिंदी फिल्म संगीत की चर्चित जोड़ी आनंद मिलिंद। जी हाँ दोस्तों, तो आज ये था इनका छोटा सा परिचय और फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन गीत के साथ। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको उस यात्रा पर जहां आनंद मिलिंद ने संघर्ष किया, उनका जीवन परिचय, कुछ सुनी कुछ अनसुनी बातें, अवार्ड से सम्मानित किए गए, तो उसी में ही मिलेंगे फिर इस गीत के बाद।

बेहद खूबसूरत लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। या दोस्तों हम बात कर रहे थे आनंद मिलिंद की। कहते हैं कि धुनें कभी भूली नहीं होती, बस उन्हें सुनने वाले बदल जाते हैं। कुछ सुर ऐसे होते हैं जो हर पीढ़ी को, हर पीढ़ी की धड़कन बन जाते हैं, और आनंद मिलिंद उन्हीं अमर सुरों के मुसाफिर हैं। तो आइए अगले कुछ घंटों में या कुछ समय के लिए, मैं मतलब घंटों में, हम सुनेंगे उनकी सबसे यादगार धुनें, जानेंगे उनके जीवन के अनछुए पहलू, संघर्ष, सफलता, परिवार, सम्मान और कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपने कभी ना सुने हों। तो आइए सुरों का कारवां आगे बढ़ाते हैं और आनंद मिलिंद का परिचय बताते हैं। या दोस्तों आनंद मिलिंद दो सगे भाई हैं। उनके पिता थे प्रसिद्ध संगीतकार चित्रगुप्त जी। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक अमर धुनें दी। पिता के संगीत संस्कार दोनों भाइयों को बचपन से ही घर में हर समय रियाज, धुनें और संगीत की चर्चा होती थी। यही वातावरण आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पूंजी बना। एक और गीत सुनवाते हैं, फिर उसके बारे में और भी खूबसूरत जानकारियां।

24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है शुरू का सफरनामा। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे आनंद मिलिंद की, साथियों अब बात करते हैं उनके संघर्ष और शुरुआत की। संगीत की दुनिया में प्रवेश आसान नहीं था, संगीत की दुनिया में प्रवेश आसान नहीं था, आसान नहीं था, लेकिन लेकिन पिता के नाम के बावजूद उन्हें स्वयं को साबित करना पड़ा। 1980 के दशक में उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरुआत की, लेकिन वास्तविक पहचान मिली सन 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फिल्म का संगीत ऐसा लोकप्रिय हुआ कि पूरा देश उनकी धुनों को उनकी धुनों का दीवाना बन गया और उसके बाद सफलता का स्वर्णिम दौर। वाकई बहुत ही खूबसूरत। और उससे पहले हम गाने प्ले करने से पहले, इस फिल्म का संगीत ऐसा लोकप्रिय हुआ कि पूरा देश उनकी धुनों का दीवाना बन गया। सफलता का स्वर्णिम दौर था 1990 का दशक, लगभग आनंद मिलिंद के नाम रहा। उन्होंने रोमांटिक धुनों को नई पहचान दी। उनकी धुनें सरल थी लेकिन सीधे दिल तक पहुंचती थी। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम जैसे गायकों की आवाज में उनके गीत अमर हो गए। तो साथियों, एक और गीत सुनवाते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जी हाँ दोस्तों, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फेवरेट खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। साथियों बढ़ते हैं कुछ और मुख्य जो जानकारी थी। जैसे कि हमने पहले बताया है कि प्रमुख फिल्में जो हैं इनकी, तो वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है। कहते हैं मधुर और यादगार धुनें, भारतीय मेलोडी का सुंदर प्रयोग, सरल लेकिन असरदार ऑर्केस्ट्रेशन, प्रेम गीतों में भावनाओं की गहराई भी। उनके गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। और इनकी मुख्य फिल्में जो हैं वो हैं कयामत से कयामत तक, जिसका भी गीत आपने सुना था, और उसके बाद फिल्म दिल, बेटा, अनाड़ी, राजा बाबू, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, दीवाना, मस्ताना, लाडला, हसीना मान जाएगी, बोल राधा बोल इत्यादि कुछ फिल्में। साथियों वाकई कुछ सदाबहार गीत भी हैं, जैसे कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐ मेरे हम सफर, मुझे नींद ना आए, धक धक करने लगा, कोई ना कोई चाहिए, फूलों सा चेहरा तेरा, गोरे गोरे मुखड़े पे, मैं तुझसे ऐसे मिलूं, तुमसे मिलने को दिल करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीतों को संगीत दिया है, वाकई बहुत ही लाजवाब। तो अब एक और गीत आ रहा है आपके पास, बहुत ही प्यारा और बेहद खूबसूरत गीत है फिल्म अनाड़ी से। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे साथियों। जैसे कि हमने इतने सारी फिल्मों के नाम आपको बताए हैं, जैसे कि फूलों सा चेहरा तेरा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल है, मैं तुमसे ऐसे मिलूं, तुमसे मिलने को दिल करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत है साथियों। कयामत से कयामत तक के संगीत ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। उन्हें अनेक लोकप्रिय संगीत पुरस्कार के लिए नामांकित प्राप्त हुए और फिल्म उद्योग में उनकी अलग पहचान बनी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही करोड़ों श्रोताओं का प्यार। कुछ अनसुनी के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि पापा कहते हैं कि धुन सुनकर निर्माता और निर्देशक तुरंत समझ गए थे कि यह गीत युवाओं का एक एंथम बनने वाला है। आनंद मिलिंद रिकॉर्डिंग के दौरान छोटी छोटी बारीकियों पर घंटों मेहनत करते थे ताकि हर धुन सहज और दिल को छू लेने वाली बने। वे अपने पिता चित्रगुप्त को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते थे। व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में, आखिरकार उनका जीवन कैसा रहा और फिल्मों में उनका योगदान किस प्रकार से रहा, तो वो भी आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल हम सुन रहे हैं एक बहुत ही मस्ती भरा खूबसूरत डांस मूव करता हुआ शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई कितना सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। लाजवाब से मतलब हुई कि डांस मूव, गोविंदा ने जो अदाकारी की है डांस करते हुए, वाकई बहुत ही शानदार रही थी। साथियों, यदि हम बात करें उनकी आनंद और मिलिंद की, तो वाकई बहुत ही प्यारी जोड़ी रही है। व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करें तो दोनों भाई आज भी संगीत से जुड़े हुए हैं और समय समय पर विभिन्न संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तथ्य हैं उनके, आनंद मिलिंद दोनों अभी भी इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके जीवन परिचय वाकई बहुत ही शानदार रहा है। और कार्यक्रम के दौरान कहने योग्य शायरी अगर हम बात करें तो कुछ धुनें हवा में घुल जाती हैं, कुछ धुनें हवा में घुल जाती हैं, कुछ दिल की धड़कन बन जाती हैं। जो संगीत वक्त की कसौटी पर अमर हो जाए, उसे ही दुनिया आनंद मिलिंद की पहचान कहती है। सिरों की बारिश हो दिल महक उठता है, सिरों की बारिश हो तो दिल महक उठता है, यादों का मौसम फिर चहक उठता है। जिस धुन में मोहब्बत की खुशबू बस जाए, वही गीत सदियों तक धड़कता है। या दोस्तों, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत आप सुनवा रहे हैं। और साथियों, समय ज़्यादा नहीं होता है हमारे पास, केवल 50 मिनट का समय हमारे पास होता है, जिसमें हम आप सभी साथियों को बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनवाते हैं और साथ में उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो भी हम साझा करते हैं आप सभी श्रोता साथियों के लिए, है ना। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, उसके बाद छोड़े जाएंगे बेहतरीन सुंदर खूबसूरत गीत के साथ अंतिम चरण में।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आपसे सुना था फिल्म साजन से। बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी ये। साथियों, ये तो हम 2 घंटे 3 घंटे का कार्यक्रम भी कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होता है जब हम आकाशवाणी में होते हैं, है ना? क्योंकि बस इतना सा ही समय होता है। हालांकि ये प्रोग्राम अगर पूरा हो तो कम से कम 2 ढाई घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में ही जो जानकारियां होती हैं, जो गीत हम प्ले कर रहे हैं, तो बस इतनी ही इजाजत होती है समय के अनुसार। साथियों, आज के शुरू के इस खूबसूरत सफर में हमने जाना कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं की सबसे मधुर भाषा है। आनंद मिलन की धुनों ने प्रेम को आवाज दी, रिश्तों को एहसास दिया, और हिंदी फिल्म संगीत को ऐसी मधुरता दी जो आज भी हर पीढ़ी के दिल में जीवित है। सुर कभी बिछड़ते नहीं, बस यादों में बस जाते हैं। जो दिलों को छू लेते हैं वे फनकार हमेशा अमर हो जाते हैं। इसे खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट ललित कुमार को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे सुरों का सफरनामा में किसी और महान संगीत साधक की अनसुनी और सुनहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि चाहें तो आप हमारे लिए या फिर आकाशवाणी के लिए कुछ संदेश यदि आपके मन में उपज रहे हैं या कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। छोड़े जा रहे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम खूबसूरत रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेटा से, बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, 1 बजने को है, अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास

0: वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देश भर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। ये आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ सम्पन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents

है गीत सुनहरे, यानी कि बिल्कुल खरा सच्चा सोने के तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि जितने भी पुराने गीत जो होते हैं, जो हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाएं होती हैं। गीत ऐसे होते हैं जो अपने आप पर महसूस किया जाता जा सकता है, जैसे चाहे वो माँ का गाना हो, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो किसी और का हो, चाहे वो देश के लिए हो, बहन के लिए हो, हर प्रकार के गीत प्रसारित किए जाते हैं आपके अपने आकाशवाणी में। तो साथियों, आज वाकई बहुत ही अच्छा लगता है हमें जब इस गोल्डन एरा के गीत हम जब प्ले करते हैं, तो वाकई हमारा दिल भी खुश हो जाता है। ऐसे ऐसे गीत सुनने को मिलते हैं जो हम भी नहीं सुन पाते हैं, लेकिन हाँ, आकाशवाणी है ना हमारे पास और आपके साथ। तो आज मैं हूं आपके साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, KL सहगल की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना हूँ। जी हाँ, दीवाना हूँ टाइटल है इस गीत का, और फिल्म जिंदगी से बेहतरीन रचना KL सहगल की आवाज में बेहतरीन रचना है। और ये फिल्म जिंदगी 1940 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाए हैं पंकज मल्लिक ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत आ रहा है आपके पास बहुत ही प्यारा और बहुत

सुंदर गीत हैं और फिल्म हमराज से बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, माफ कीजिएगा लगन पिक्चर है, लगन और हमराज, हमराज माफ कीजिएगा, यहाँ हमारी लाज, हमारी लाज टाइटल है इस गीत का, लेकिन फिल्म का नाम है लगान और लगन, और संगीत कानन, आवाज कानन देवी की है, और लगन फिल्म 1941 प्रदर्शित फिल्म रही है, और संगीतकार हैं आरसी बोराल। तो आइए सुनते हैं एक अनोखी और बेहतरीन खूबसूरत रचना।

देखो ये बातें छोड़ो, मेरा तुम्हारा नाता इतना ही है कि तुम गुरु हो, मैं चेली हूँ।

बहुत ही मधुर बेहद खूबसूरत गीत हमरी लाज बचाओ। साथियों एक और गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर है ये गीत भी, वो चले झटक के, बहुत ही खूबसूरत रचना है फिल्म हमराही से। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है, मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज में शानदार गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है। तो आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही मीठा, बहुत ही खूबसूरत, रोमांटिक, लाजवाब खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, वाकई बहुत ही शानदार। एक और गीत आ रहा है साथियों, वो दिन याद करो, फिल्म हमराही से ही है, जो 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है। मोहम्मद रफी साहब एक बार फिर से आ रहे हैं आपके पास, आपके साथ सुंदर खूबसूरत जज्बातों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत के साथ। तो सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन रचना।

है गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत के साथ। आज मची है धूम फिल्म दर्द से। जी हाँ, फिल्म दर्द 1947 प्रदर्शित फिल्म रही है। उमा देवी की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना है। गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद साहब का। तो आइए सुनते हैं बेहतरीन रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, अनसुना लाजवाब बेहतरीन रचना। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। सन 1949 प्रदर्शित फिल्म है महल। जी हाँ, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। आएगा आएगा आएगा आने वाला, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।

वाकई वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आएगा आने वाला, बहुत ही प्यारा मधुर खूबसूरत रचना लता मंगेशकर की आवाज में बेहतरीन गीत। साथियों एक बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है, रात का समा है और रात भी भीगी भीगी सी है। जी हाँ, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है तो कहीं रिमझिम फुहार है। वाकई बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिल्म है, फिल्म चोरी चोरी। जी हाँ दोस्तों, इसी इसी फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत गीत आ रहा है, ये रात भीगी भीगी, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शानदार रचना। फिल्म चोरी चोरी 1956 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शैलेंद्र के हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है। आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत लाजवाब अनमोल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शानदार रचना। साथियों, एक ऐसा गीत आ रहा है, रात का समय है और ऐसे में क्या किया जाए, कुछ साथी परिवार के सो रहे होंगे तो कुछ जागे हुए होंगे। जी हाँ, हमारे साथी बहुत ही प्यारे साथी हैं और रात भर भी जाकर अपना गीत संगीत का आनंद लेने में माहिर हैं। अच्छा लगता है जब सभी साथी, यूं तो रात के अंधेरे में इंसान सो ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसे खास साथी होते हैं जो हमेशा गीत संगीत का इंतजार करते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश भी करते हैं। साथियों, ऐसी एक सखी हैं, एक साथी हैं हमारी, बहुत ही प्यारी सखी हैं और आज एक ऐसा गीत सुनवा रहे हैं जो वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। रात का समय है और ऐसे में ये सुंदर खूबसूरत रचना वाकई मन मोह लेती है। आइए सुनवाते हैं हमारी सखी का, यानी कि हमारे साथी का सुंदर खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन अनमोल रचना। साथियों, ये रचना बता देते हैं कि आखिरकार ये किस फिल्म का गीत है। जी हां, गीत फिल्म का तो नाम इसमें हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गीत वाकई बहुत ही सुंदर है और बेहद खूबसूरत है। आइए सुनते हैं हमारे साथी की पसंद का बहुत ही प्यारा लाजवाब गीत।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, मधुर और बेहद खूबसूरत गीत। साथियों, ये बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार लाजवाब गीत, ये मेरी भी पसंद है। इस गीत को वाकई बहुत ही प्यारा गीत है। महान गायिका लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी इस खूबसूरत गीत को। जी हाँ, बहुत ही प्यारे। और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने, यानी कि उन दोनों जोड़ी ने। इसके बोल वाकई बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत ही शानदार। एक तरफ तो प्यार, मोहब्बत, अपनापन और उनकी याद। जी हाँ, नींद में, नींद तो रहती थी लेकिन अब सावरियां रह रहे हैं। इतने सुंदर शब्दों का उपयोग जो हुआ है वाकई बहुत ही कमाल। ऐसे गीत बहुत ही कम सुनाई देते हैं। आपको ये गीत कैसा लगा तो हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर और अंतिम पड़ाव पर। ये फिल्म 1966 में प्रदर्शित हुई थी। ये जो फिल्म है आसरा, जी हाँ आसरा फिल्म। इसी फिल्म के अभी जो आपने गीत सुना था बहुत ही प्यारा था। और समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी 2 बजने में लगभग 7 मिनट बाकी हैं और हम देख रहे हैं कि आखिरकार कौन सा गीत अब सुनवाया जाए अंतिम पड़ाव में। तो फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। जी हाँ, रात का सन्नाटा और ऐसे में यह गीत वाकई बहुत ही सुंदर। सुनवाते हैं ये शानदार गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत, बहुत ही शानदार। साथियों, समय 2 बजने को है। अब छोटा सा एक गीत और हम सुनवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है, और उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतर्गत एक शानदार खूबसूरत रचना। गीत सुनहरे कार्यक्रम बस अंतिम पड़ाव पर है, छोड़े जा रहे हैं इस गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: साथियों, इसी सुंदर खूबसूरत धुन और गीत के साथ आज का गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। 2 बजने को हैं, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों के बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नई सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चीन की गुओ हानियो और फ्रांस की क्रिस्टिना मिलाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely coordinating with the Vietnamese authorities and assured all possible assistance to facilitate the early transportation to the mortal remains of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27 lakh 89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksha Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
3: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
4: चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: Former Qatar

वाकई दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत ये रात खुश नसीब है। वाकई बहुत ही अनमोल बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीतों का जो समावेश बन रहा है, बहुत ही रोमांटिक, खूबसूरत और कुछ मजाक के अंदाज में भी शानदार रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म आप आई बहार आई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि

0: भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विम्बल्डन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crores 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
2: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
1: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. External Affairs Ministry has said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar.

0: श्रोताओं, ये गजल अभी आपने पंकज उदास साहब की आवाज में सुनी। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के अवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं?

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी भूपेन हजारिका साहब की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल भूपेन हजारिका साहब की ही आवाज में।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद गजलों और गीतों का कार्यक्रम, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गजलों का जिक्र हो और जगजीत सिंह साहब का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। आइए सुनते हैं अगली गजल जगजीत सिंह साहब की आवाज में।

खुदा होता न था कुछ तो खुदा।

श्रोताओं कहते हैं कि गजल गायकी में कुछ गायिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी ही एक गायिका हैं मशहूर गजल गायिका चित्रा सिंह। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये मधुर सी गजल।

श्रोताओं, ये मधुर सी गजल अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में। उम्मीद है ये गजल आपको बहुत पसंद आई होगी। आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये अगली गजल।

श्रोताओं, इसी के साथ घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि गजलों और गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आइए चलते चलते आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल हरिहरन की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:53 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। सुबह 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। और उसके बाद सुबह ठीक 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर समय होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन।

0: तन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 115। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 7:05 पर सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी सुन सकेंगे। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचार के कार्यक्रम समाचार प्रभात का। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचारों गो मॉर्निंग न्यूज का आनंद उठा सकते हैं। 8:30 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार और 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा का। सुबह 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम अवर गेस्ट का और सुबह 9:30 यानी 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद बाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में

0: give their suggestions to the Prime Minister. Suggestions for the upcoming episode will be accepted till the 24th of this month. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. External Affairs Ministry said in a statement that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner claimed the Wimbledon men's singles title by defeating second seed Germany's Alexander Zverev. Sinner also earned his 100th Grand Slam match win, and he is the only Italian man who has reached the milestone. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन।
2: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती है। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर

दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को दो या तीन बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।